मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज दिन रविवार, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम पेपर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। रिले करते हैं अब दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे।

0: दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केन्द्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेब और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जगजीत सिंह के स्वर में अभी आपने सुना हरि भजन। लीजिए अब सुनिए भक्ति गीत आवाज श्रेया घोषाल की।

भक्ति गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल के स्वर में। आइए वंदना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं कृष्ण भजन, आवाज ऋचा शर्मा की।

ऋचा शर्मा के स्वर में अभी आपने सुना कृष्ण भजन। आइए वंदना कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं पार्वती माँ की आरती महेंद्र कपूर के स्वर में।

अभी आपने सुनी पार्वती माता की आरती महेंद्र कपूर के स्वर में। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

आइए अब आपको बताते हैं आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आज सुबह 11 बजे रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन

अब से कुछ देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। विषय रहेगा पशुओं के परजीवी कीट। श्री रामचरित मानस गान 6:40 पर। गायक स्वर ए हरिहरन और साथियों का। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा। चिंतन 6:50 पर। सुबह 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत सुनेंगे वार्ता बुंदेली लोकगीतों की लुप्त होती विधाएं। वार्ताकार होंगे मनमोहन पांडे। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 7:30 पर।

8:30 पर संग्रहालय से डॉक्टर कृष्णानंद गुप्त से बातचीत। 9:00 लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे स्वदेश यादव। 9:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10:30 पर पत्रों का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय, प्रस्तुति रहेगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा दिन में 2:30 पर। इसमें आप सुनेंगे भजन आयु पांडे और आयुषी पांडे का, साथ ही होगी रोचक जानकारी मछलियों का अद्भुत संसार। शाम 6:30 पर आप पुनः सुनेंगे फिल्म संगीत, 6 बजे भजन संध्या। इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी अनुराधा पौडवाल। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे सहुद्रा कुशवाहा। 7:20 पर ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें आप सुनेंगे धारावाहिक चिट्ठिया देवर भौजाई की, भाग 3, वाचन प्रीति पित्रे, प्रस्तुति होगी शंभुदयाल अहरवार की, साथ ही होगी वार्ता मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बांस मिशन की खेती अनुदान एवं विपणन की जानकारी, वार्ताकार होंगे हर्ष गुप्ता, साथ ही होगी आज की सीख।

दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। आज का विषय पशुओं के परजीवी कीट।
1: पंचो, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं खासतौर से उन पंचन के लाने जो उनके अपने पशुपालक भैया हैं। अपन ने देखो हुए कि अपने पशुन पे परजीवी कीट ज्यादा आक्रमण करते हैं और भैया जे पशुन को खून चूस लेते हैं और संगे संगे अपन ने देखो हुए कि जे अपने पशुन में अनेक प्रकार की बीमारी सोई फैलावे में मदद करते हैं। इनका अपन जानत हुआ को पंच भैया किल्ली कात है, मक्खी है, माइट है, जुआ है, तो इन सबसे अपने पशुन का सुरक्षित रखवो अपनो परम कर्तव्य। अपन इनसे अपने पशु

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिवजी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु

शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर ए हरिहरन और साथियों का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब आपको सुनवाते हैं चिंतन।
1: वर्तमान युग में समाचार पत्रों, टीवी में हम आए दिन हिंसक घटनाओं के बारे में पढ़ते और देखते रहते हैं। पिछले दिनों राजधानी नई दिल्ली में सामान देर से पहुंचने पर गुस्साई एक महिला और उसके भाई ने डिलीवरी लाने वाले लड़के को चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज घटना ने हमारे मानवीय स्वभाव की बदलती दिशा के चिंताजनक रुख को सामने रखा है। हर उम्र हर वर्ग में उग्र और हिंसात्मक रुख व्यवहार बढ़ रहा है। मानवीय समझ और धैर्य के मामले में हमारा व्यवहार बहुत तेजी से बदल रहा है। क्षण भर के आवेश में लोग उस इंसान पर भी प्राणघातक हमला करने से नहीं चूक रहे हैं जो हमारा अपना है, जिनमें केवल शक के आधार पर आवेश में आकर अपने परायों की जान लेने के अपराध हुए हैं। यही आवेश और अधीरता मौजूदा दौर की जीवन शैली में तेजी से हमारे व्यवहार का हिस्सा बन

0: रहे हैं। निसंदेह इन घटनाओं की बढ़ती संख्या बताती है कि अब नैतिकता के कोई मापदंड नहीं बचे हैं। लगता है कि अब समाज और परिवेश में आपसी भरोसे का संकट पैदा हो गया है। कहीं बदला लेने की भावना तो कहीं सबक सिखाने की सोच। पल भर के आवेश में जान लेने के मामले अब आम हो गए हैं। आयु, लिंग और स्थान के भेद के परे क्रोध सामान्य व्यक्ति को जघन्य अपराध करने की राह पर धकेलने लगा है। अधीरता, अविश्वास ने लोगों में क्रोध और हिंसा का विकार भर दिया है, जो पूरे सामाजिक ताने बाने को भयावह बना रहा है। समाज का ये बदला मिजाज बताता है कि हालिया वर्षों में दुनिया भर में हिंसक अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। सामाजिक सह अस्तित्व वाले हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये आज के दौर में एक हैरान और परेशान करने वाला सच है कि सड़क पर वाहन चलाने के दौरान हुए विवाद के चलते लोग निर्दयता पूर्वक सामने वाले की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। ये एक चिंतनीय समस्या है। मानव स्वभाव में आ रहा है ये बदलाव, हमें विखंडन की राह पर ही ले जा रहा है। इसी व्यवहार की वजह से हमारी पारिवारिक व्यवस्था भी टूट रही है। व्यक्तिगत रिश्तों में भरोसा नहीं बचा है। संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद होते रहते हैं। समाज में असुरक्षा और भय का माहौल भी बढ़ रहा है। ये कैसी विडंबना है कि बीते कुछ सालों में समाज में सुख सुविधाएं बढ़ी हैं और जागरूकता भी आई है। शिक्षा के प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है और हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। सोचा जाए तो हमें आदर्श स्थिति की ओर बढ़ना चाहिए था। आपसी जुड़ाव, समझ और सहिष्णुता बढ़नी चाहिए थी, परंतु दुखद स्थिति है कि ठीक इससे उल्टा हो रहा है। हर स्तर पर लोगों में असंतोष और अधीरता की भावना पनप रही है। ऐसे में इन घटनाओं का बढ़ना मानसिक रुग्णता की निशानी है, जिसके चलते आक्रोश, नकारात्मकता और बेरहमी भी हमारे स्वभाव में घुसपैठ कर रही है। हमें अपने आप को बदलना होगा, मन को शांत रखना तथा समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसके लिए ध्यान, योग आदि महत्वपूर्ण उपाय हैं। एक दूजे का दुख दर्द समझना तथा सहिष्णुता का गुण जागृत करना होगा। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर ऐसे मानवीय विकारों पर काबू पाने की कोशिश हर स्तर पर होनी चाहिए, ताकि समाज में होने वाली दुखद घटनाओं को रोका जा सके। समाज में हिंसा का बढ़ता प्रभाव बच्चों पर भी गलत असर डाल रहा है। बच्चों में बढ़ती हिंसा पर समाज चिंतित जरूर नजर आता है, मगर समस्या की जड़ तक जाने का प्रयास नहीं करता। यदि समाज में बढ़ती जा रही हिंसा को रोकना है तो ये एक दो लोगों के प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए पूरे समाज को आगे आना होगा और समाज में आ रही नकारात्मकता को दूर करना होगा। सभी के जीने योग्य माहौल बनाना होगा। इस कार्य में समय लगेगा, पर जब शुरुआत ही नहीं होगी तो बदलाव की कामना ही बेमानी है। हम समाज में फैले द्वेष के लिए दूसरों को दोष देकर जब तक अपनी कमियों को छिपाते रहेंगे, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। आज हिंसा गली चौराहों से घरों तक पहुंच चुकी है। पति पत्नी और घर के दूसरे सदस्यों के बीच कभी कभी एक रूपता नहीं दिखती। साधारण सी बात पर शुरू हुआ विचारों का आदान प्रदान कब बहस और कटुता में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थिति में धैर्य की आवश्यकता होती है। शांतिपूर्वक एक दूसरे के विचारों को समझते हुए सुलभ मार्ग को अपनाना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अनुप्रसारित करते हैं अब दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे

0: क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदायु किमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू लेयुंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues.

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आगामी वर्षों में प्रदेश शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जताया विश्वास। आज से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान, 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य। और राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप ने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात

0: एक करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य और राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप ने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सेशल्स के 3 दिन की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे।
1: नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमाइनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कल प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया।
2: 16 क्लस्टर का निर्माण करते हुए हमने इंदौर का तेजस इंडस्ट्रियल पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, धार का अमजेरा क्लस्टर, 14 नए क्लस्टर भी बनाने जा रहे हैं ओडीओपी के माध्यम से भी। जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में के जीआई टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 जीआई टैग मिले। हमारे लिए आने वाली जीआईएस भी भोपाल में ही होने वाली है, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है।
0: इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़, विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृहत उद्योगों के लिए 1274 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में सुश्री पटेल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में अब लगभग 1,84,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो रोगियों के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य कर रहे हैं।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत आज से 30 जून तक 5 वर्ष तक की आयु के प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियोरोधी वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कल 29 एवं

30 जून को घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। झाबुआ जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जिला चिकित्सालय में अभियान का शुभारंभ करेंगी। जिले में 2,13,504 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद पिलाने का लक्ष्य है। रायसेन जिले में लगभग 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जीआई टैग वाले रीवा सुंदरजा आमों की पहली वाणिज्यिक निर्यात खेप संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गई है। इसमें 1 मीट्रिक टन आम शामिल थे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से वैश्विक बाजारों में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले कई महीनों से एपिडा ने मध्य प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग, निर्यातकों, किसान उत्पादकों, संगठनों, पैकिंग हाउस संचालकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ मिलकर इस उत्कृष्ट किस्म के आम के निर्यात के लिए संपर्क स्थापित करने का काम किया है। राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप सिंह ने भुवनेश्वर में 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कल पुरुष शॉट पुट स्पर्धा में 20.40 मीटर की प्रभावशाली थ्रो करते हुए रजत पदक अर्जित किया। समरदीप सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर एशियाई खेल 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन मानक भी प्राप्त कर लिया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने समरदीप सिंह को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। मां शारदा की नगरी की धरोहर और विश्वविख्यात मैहर वाद्य वृंद को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। मैहर बैंड की इस अनूठी संगीत परंपरा को जीवंत रखने और आगामी पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा शासकीय संगीत महाविद्यालय मैहर के माध्यम से एक गुरूकुल की स्थापना भी की जा रही है। इस गुरूकुल के पद्धति से प्रशिक्षित होकर युवा कलाकार मैहर बैंड के अनूठे संगीत रागों और इसकी गौरवशाली गुरू शिष्य परंपरा को और अधिक समृद्ध कर सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल रात बैतूल जिले के प्रवास के दौरान प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू में ग्रामीण शानु मंगल भुसुमकर के निवास पर रात्रि भोजन किया। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कल सतना जिले के चित्रकूट में सदगुरू नेत्र चिकित्सालय में आयोजित समारोह में सदगुरू आई केयर एजुकेशन अकादमी का शुभारंभ किया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने कल दमोह जिले के नाहटा स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय में विशेष जनसुनवाई आयोजित कर क्षेत्र के नागरिकों की समस्याएं सुनी। प्रदेश पुलिस का 15 दिवसीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 झाबुआ में चल रहा है, जिसके सभी थाना क्षेत्रों में साइबर जागरूकता रथ और रक्षा सखी टीम लोगों को जागरूक कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आगामी 20 वर्षों में प्रदेश शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जताया विश्वास। आज से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान, 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य। और राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप सिंह ने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता, बुंदेली लोकगीतों की लुप्त होती विधाएं। वार्ताकार है मनमोहन पांडे।
1: वर्तमान वातावरण ने बुंदेली लोकगीतों की विधाओं को अपूर्णनीय क्षति पहुंचाई है।

बुंदेली लोकगीतों की विधाएं जैसे गारी, बनरा, कार्तिक, सावन, राछरो, बिलवारी, दादरे, भजन, भक्तें, फाग, कहरवा, लेद, सोहर, कजरी, देवारी, चैती, बधाई आदि विधाओं पर मैं संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाल रहा हूँ। गारी विवाह होत्सव में गाई जाने वाली सर्वकालिक लोकप्रिय विधा है, यथा सखी देख लो बूढ़ो बर बावरो निहंग, सखी देख लो बैल पे सवार हाथ डमरू करतार, अरे शीस पे भुजंग जटन बहती है गंग, कछु नशा की उमंग लिए प्याला भर भंग, सखी देख लो सखी देख लो बारोबर बूढ़ो निहंग, सखी देख लो। भक्ते कुंवर कार्तिक तथा चैत्र की नवरात्रि तथा बालक बालिकाओं को चेचक की बीमारी से उबरने के फलस्वरूप महिलाएं देवी पूजा के लिए दंड भरती महामाई की मड़िया में जाती हैं। जैसे उमे चलो मनु मेरो दर सुख

माय। दादरे असार सावन भादों तथा विवाह उत्सव में वर्षा कालीन गोष्ठियों में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं।

चोट फाग। इसके छह प्रकार हैं, चौकड़िया, झूला, छंद्याऊ इत्यादि। छंद्याऊ फाग इसमें सहरे, दोहा आदि जोड़े जाते हैं।

अरिछिन भर में आकन से ऊट भई का। गोला आज गजब को टूटो, उम्र भर को जोड़ा फूटो, बिदना ऐसो लूटल लूटो का बात खंगी। घर घर बार पुरा के सुनतन, भर भर देत तरैया। अरे संपट स्वाहा घर को कर दो, काहे राम करैया। सावन सावन सावन और भादों में गाए जाते हैं। सावन झूला, रात्रे, राखी आदि का भाव लिए रहते हैं। ले गई मोरे महाराज चिंगरी को रस मुंदरी।

श्री कृष्णा चुका दे दाम हिचिंगरी को रस मुंदरी ले गई। कार्तिक कुमार के अंत में कार्तिक तथा अगन में महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण की पूजा के लिए महिलाओं द्वारा गाया जाता है। गिर

महलिया बिजनिया राजा हम करें महाराज। बिलवारी कृषक मजदूरों द्वारा खेती नींदने तथा फसल काटने कृषि कार्य करने पर समूह रूप से गाई जाती है।

बेबे की गारी जुल्फन में उलझ रहो लाल मेरो चित राम रसिया रे जब से छवि ने रख परी भूलत ना गरी गरी नैदन में झूल रही झूलत है नित राम रसिया रे आगे गारी बरसाने चले डलिया सजाय कचेरन घन श्याम बने। ये सभी विधाएं जो है बिल्कुल किनारे पर हैं जो कभी कभी केवल रेडियो पर या कवि सम्मेलनों में गाई जाती है। आगे है होरी मैं तो

0: कुंजी आरी आंगुरी पकड़त कोचा पकड़ो झपट झपट लई सारी आंगुरी पकड़त कोचा पकड़ो झपट पकड़ लई नारी बैद बन आएरी गोकुल के कुंज बिहारी।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता बुंदेली लोकगीतों की लुप्त होती विधाएं। वार्ताकार थे मनमोहन पांडे। मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

आकाश गंगा इस फिल्म में अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल को, संगीत दिया आलोक गांगुली ने। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के स्वर में आनंद बख्शी के गीत को। धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम आपके साथ।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

एम जी हसमत के गीत को अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर के स्वर में। धुन तैयार की राहुल देव बर्मन ने और फिल्म का नाम आवारा बाप। लीजिए अब सुनिए भूपिंदर के स्वर में फिल्म

भूपिंदर के स्वर में अभी आपने सुना एक नया रिश्ता फिल्म का गीत। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं शत्रु फिल्म में अंतरू किशोरी को। संगीत दिया राहुल देव बर्मन ने और गीत आनंद बख्शी का है।

अंदरू किशोर की आवाज में अभी आपने सुना शत्रु फिल्म का गीत। संगीत दिया राहुल देव बर्मन ने और गीत आनंद बख्शी का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडिया वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। रिले करते हैं अब दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक

0: समीक्षा करेंगे और आपसे हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP Zone 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण

0: पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ दो कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में

0: अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री

0: वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नवीं या दसवीं कक्षा का विद्यार्थी था तब मुझे प्रसिद्ध मानव विज्ञान वेत्ता एंड्रू लैंग की एक पुस्तक पढ़ने को मिली। उसमें एक निबंध था फोकलोर, तो और सब बातें तो मैं उस पुस्तक की उस समय नहीं समझ सका, लेकिन उस निबंध ने मुझे आकर्षित कर लिया। बहुत ही अच्छा निबंध था और उसका पहला ही वाक्य था कि एज देयर इज ए साइंस ऑफ आर्कियोलॉजी सो देयर इज ए साइंस ऑफ फोकलोर, यानी जिस तरह पुरातत्व एक विज्ञान है उसी तरह लोक साहित्य या लोक वार्ता भी एक विज्ञान है। इस वाक्य ने मुझे बहुत आकर्षित कर लिया और तब से हिंदी में उस समय ग्राम साहित्य या लोक साहित्य के नाम से जो चर्चा चल रही थी उसके संबंध में मेरा एक दृष्टिकोण बिल्कुल ही वैज्ञानिक हो गया और मैं देखता रहा कि लोक साहित्य को केवल साहित्य की दृष्टि से ही देखा जा रहा है, लेकिन उसका जो समाज शास्त्रीय अथवा भाषा शास्त्रीय पक्ष है उसकी बिल्कुल ही उपेक्षा हो रही है। तब मैंने टीकमगढ़ से जो मधुकर नाम का पत्र उन दिनों निकलता था उसमें इस विषय पर एक लेख लिखा कि लोक साहित्य का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन होने की जरूरत है। उस लेख का शीर्षक था ग्राम साहित्य। वो लेख बहुत पसंद किया गया और मैं समझता हूँ हिंदी में वह पहला निबंध था जिसमें लोक साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया गया। उसके सुयोग संपादक पंडित बनारसी दास जी को तो इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी एक संपादकीय टिप्पणी में उस समय पंडित राम नरेश जी त्रिपाठी, देवेंद्र सत्यार्थी आदि का ध्यान आकृष्ट उस लेख की ओर किया। उसके बाद जब मैं गया टीकमगढ़ पहुंचा तो स्वाभाविक रूप से अपनी उस घटना को, अपनी उस महत्वाकांक्षा को महाराज की जो आर्थिक सहायता मुझे मिल रही थी उससे पूरा करने की मैंने कोशिश की। ये संक्षेप में इतिहास है मेरे लोक साहित्य संबंधी काम का टीकमगढ़ जाकर मैंने जो किया।
1: जी हाँ, तो टीकमगढ़ में मेरा ऐसा अनुमान है कि आप लगभग 6 वर्ष रहे।
0: जी हाँ,
1: तो वहाँ रहकर आपके द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न हुए?
0: असल में महाराज एक अंग्रेजी हिंदी कोश बनाना चाहते थे
1: जी।
0: तो वो कोश का काम तो नहीं चला और 6 महीने महाराज ने उस संबंध की कोई चर्चा नहीं की, तो मैं बड़े संकोच में पड़ गया। तब मैंने उनसे एक दिन कहा कि महाराज मुझे छुट्टी दीजिए, तो उनका जवाब था कि आप जो काम करते हैं मेरा ही तो काम है, क्या मैं आपको रख नहीं सकता। तब वहाँ रह के मैंने, क्योंकि महाराज को स्वयं बड़ा प्रेम था लोक साहित्य से और बुंदेलखंडी से, तो बुंदेलखंड के शब्दों कहावतों आदि के संग्रह की एक वृहत योजना मैंने बनाई जिसे महाराज ने भी बड़ा पसंद किया और महाराज भी उसमें रुचि लेते रहे। खास जो काम था वो एक बुंदेली कोश का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण करना था जिसके लिए राज्य के सभी अध्यापक, सभी पटवारी और सभी कर्मचारी मेरा सहयोग देते रहे महाराज की आज्ञा से
1: जी। तो वहाँ आपने लोकवार्ता पत्रिका का भी संपादन तो किया था?
0: या लोक, तो उसी सिलसिले में वो लोकवार्ता पत्रिका निकाली गई, क्योंकि फोकलोर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया और वो मैंने कुछ खास मतलब से वो बात कही थी कि फोकलोर शब्द से मुझे प्रेम था और उसके वैज्ञानिक अध्ययन से भी मुझे प्रेम हो गया था। और इंग्लैंड से उन दिनों जो फोकलोर नाम की पत्रिका निकलती थी वो भी मेरी देखी हुई थी, तो मेरे मन में आया कि उस तरह की एक संस्था स्थापित की जानी चाहिए कि जिसके ज़रिए से हिंदी के माध्यम से लोक साहित्य संबंधी काम किया जाए। और तब स्वाभाविक रूप से उसके लिए पत्रिका का प्रकाशन भी बड़ा ज़रूरी हो गया। तब मैंने लोक वार्ता परिषद नाम की एक पत्रिका, वो एक संस्था वहाँ स्थापित की और उससे लोकवार्ता नाम की पत्रिका मैंने निकाली। तो उस संस्था के आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य और थोड़ी सी प्रसन्नता भी होगी कि डॉक्टर वेरियर एल्विन जैसे जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान थे लोक साहित्य के और जिन्होंने उस जमाने में बड़ा काम किया लोक साहित्य का, मध्य प्रदेश के लोक साहित्य के संबंध में, वो मेरी उस

0: संस्था के प्रेसिडेंट थे, महाराज तो संरक्षक थे ही और मैं सेक्रेटरी था उस संस्था का, तो उससे बड़ा काम हुआ 3 वर्षों में उस संस्था के जरिए से।
1: तो लोकवार्ता पत्रिका तो बड़ी उपयोगी थी और उस समय तो भारतीय भाषाओं में भी, यानी हिंदी की बात क्या, पूरे भारत में कोई पत्रिका ऐसी नहीं निकलती थी।
0: आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बारे में तो सुनील बाबू ने मुझे लिखा था उसके पहले अंक को पाके कि ये पत्रिका तो हिंदी में अपने ढंग की बिल्कुल ही अद्भुत और बिल्कुल निराली है, ये लिखा था। और उनकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही, बराबर वो लोकवार्ता के लिए लेख लिखते रहे मेरी पत्रिका के लिए।
1: तो इतनी उपयोगी पत्रिका का प्रकाशन बंद कैसे हो गया?
0: कठिनाई यह हुई कि जब मैं 1947 में जब ये सब परिवर्तन हुआ राजनीतिक, तो मैं अपने घर चला आया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने संपूर्णानंद जी को भी पत्र लिखा कि इस तरह की पत्रिका मैं निकालना चाहता हूँ, उसको चालू रखना चाहता हूँ। संपूर्णानंद जी मेरी उस पत्रिका से भली भांति परिचित थे, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनका उत्तर मेरे लिए बहुत उत्साहजनक नहीं था। उन्होंने लिखा कि पत्रकार निकलने दीजिए, तब देखा जाएगा, तो उससे मुझे कुछ प्रोत्साहन नहीं मिला। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की और इस तरह की पत्रिकाएं तो आप जानते हैं बिना राजकीय प्रोत्साहन और संरक्षण के नहीं निकल सकती हैं, कहीं भी निकलना उनका कठिन हो जाता है।
1: तो टीकमगढ़ में जब आप रहे तो किन किन साहित्य सेवियों से आपका संपर्क वहां रहा?
0: टीकमगढ़ में तो मेरे मित्र चौबे जी ही थे जिनसे मेरा बहुत पुराना संपर्क था। बाकी तो कभी कभी लोग आते रहते थे हम लोगों के आमंत्रण पर, उदाहरण के लिए छिटी बाबू भी एक बार वहां पर आए, जैनेन्द्र कुमार तो महीनों वहां रहे, दिव्येंद्र सत्यार्थी जी भी आए। वो एक तरह से समझिए एक साहित्य सेवियों के लिए खुली अतिथिशाला थी, जहाँ लोग आते रहते थे और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती थी जब कभी कोई भी सज्जन वहाँ आ जाते थे।
1: आपकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई हैं उनमें उपन्यास, कहानियां, अनुवाद, बाल साहित्य, समालोचना आदि बहुत चीजें हैं जिनसे आपके व्यापक सृजन क्षेत्र का पता चलता है, लेकिन आगे चल करके सृजन में गतिरोध क्यों आ गया?
0: ये तो बड़ा मुश्किल है। असल में हुआ ये कि मेरी रुचियां बड़ी विभिन्न रही और साहित्य क्षेत्र में मेरा प्रवेश भी बाल साहित्य के निर्माण के उद्देश्य को लेकर हुआ। मैंने शुरू में उसकी बहुत कोशिश की, लेकिन आगे चलकर मुझे अपने मित्रों का या ये समझिए कि प्रकाशकों का सहयोग नहीं मिला। इस संबंध में हिंदी के प्रकाशकों से मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं चाहता था कि मेरे मन की चीज वो छापें, लेकिन वो चाहते थे कि जैसा वो कहें वो मैं लिखूं, ये मेरे लिए संभव नहीं हो सका। सभी प्रकाशक चाहते थे कि मैं उनको उपन्यास लिख कर दूं, मैं चाहता था कि मैं बाल साहित्य पर कुछ अच्छी चीज लिख कर दूं, उसके लिए वो कोई खतरा लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो उससे मुझको थोड़ी सी निराशा हुई और मैं और भी कारण ऐसे रहे कि जिनसे फिर साहित्य सृजन से मुझे कुछ विराग सा हो गया, क्योंकि साहित्य सृजन मेरे लिए एक स्वांतः सुखाह चीज थी और जब उसमें बाधा पड़ी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि मैं उसमें अपना समय नष्ट करूं। मैं साहित्य के क्षेत्र में मैं इस बात का बड़ा हामी रहा हूं कि जो कुछ लिखा जाए वो उपयोगी हो और लोगों के काम का हो। हमेशा ही मैं इस बात की कोशिश करता रहा हूँ कि जो भी साहित्य, चाहे वो कहानी हो चाहे काव्य हो, उसका कहीं ना कहीं कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। वो मेरी जो उद्देश्य वादिता थी वो एक तरह से मेरे मार्ग में थोड़ी सी बाधक बन गई, समझिए।
1: तो ये जो आपकी रचनाएं हैं इनमें से अप्रकाशित भी तो कुछ पड़ी होंगी अभी?
0: अप्रकाशित तो बहुत नोट और बहुत सी अधूरी किताबें पड़ी हुई हैं, लेकिन जो मुख्य चीज है, जो मेरा मुख्य काम है, वो बुंदेली भाषा का कोश है जिस पर मैं अब भी काम करता रहता हूँ कभी कभी, और जो अभी मैं पूरा नहीं मानता हूँ। उसे एकेडमी उसे छापना चाहती थी, लेकिन उनसे

0: जो शर्तें तय हुई थीं उन पर बाद में छापने से उन्होंने इनकार कर दिया और मैंने उस पांडुलिपि को उनसे मंगा लिया वापस। वो अभी मेरे पास पड़ी हुई है जिस पर मैं उठाकर कभी कभी काम करने लगता हूँ। मेरा आज भी ये उद्देश्य है और मेरी एक ये महत्वाकांक्षा है कि वो चीज़ मेरे जीवन काल में छप जाए और अच्छे ढंग से छपे।
1: जी हाँ, ये आपके कोष की चर्चा तो काफी हुई है और ये मेरी भूल ही है कि मैं देख नहीं सका उसे अभी तक। कुछ आप उसके बारे में बताएंगे, उसकी क्या कैसी रूपरेखा, किस ढंग से वो लिखा गया है?
0: आप तो यहाँ पधारे ही हैं मेरे यहाँ, तो मैं कभी उसको दिखा सकता हूँ। उस संबंध में मैंने बहुत वैज्ञानिक ढंग से काम शुरू किया था। अंग्रेजी में एक आज से 100 साल पहले इंग्लिश डायलेक्ट डिक्शनरी बनी थी, उसके निर्माण का इतिहास मैंने पढ़ रखा था। उसके लिए उन लोगों ने करीब 40 साल तक तो सामग्री ही इकट्ठी की, उसके बाद कहीं उसकी पहली जिल्द छपी और वो 6 जिल्दों में वो कोश छपा और संसार का एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ और महान कोश माना जाता है। उसका आदर्श मेरे सामने था। तो जब मैं टीकमगढ़ पहुंचा तो श्रीमान ओरछेश से कहकर मैंने वहाँ के पटवारियों, वहाँ के कर्मचारियों, वहाँ के अध्यापकों से सामग्री के संतुलन में उनसे मदद ली और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि उस काम में मुझे बड़ा सहयोग मिला। लेकिन चूंकि इस तरह के काम में तो ऐसा होता है ना कि तरह तरह की सामग्री आती है और वो सामग्री तुरंत उपयोग की नहीं होती है, पुनरुक्ति भी बहुत हो जाती है, एक ही सज्जन एक ही तरह की चीज़ें भेज रहे हैं, उसकी चिंता नहीं की जाती है। इस तरह के काम में वो सब सामग्री मेरे पास इकट्ठी रही और जब मैं अपने घर आया तो उसको मैंने उठाया और उसको संजो कर रखना मैंने शुरू किया। तो उसमें मैंने कोशिश ये की है कि प्रत्येक शब्द का एक उदाहरण भी दिया जाए, चाहे वो कहावत के रूप में हो, चाहे वो किसी वाक्य के रूप में हो। प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति देना तो बड़ा कठिन काम है और उसे मैंने अपना काम भी नहीं समझा, उस व्युत्पत्ति में मेरा ज़्यादा विश्वास भी नहीं है। मैंने कोशिश अपने उस कोश में ये की है कि एक जीता जागता चित्र बुंदेलखंड की संस्कृति का लोगों के सामने आ जाए और वास्तव में एक जनपदीय कोश होना भी ऐसा चाहिए कि वो उस स्थान के लोगों का एक सच्चा चित्र हो। जैसे कंकन बांधना है तो उसमें मैंने कंकन शब्द लिखा है और संक्षेप में लिखा है कि कंकन क्या चीज़ होती है। उसमें मैंने एक गीत की कड़ी भी दे दी कि छोरो छोरो कंकन क्या रामजू को, ऐसा कुछ गीत है जो मुझे याद। तो इस तरह से मैंने गीतों के भी उदाहरण उसमें दिए हैं और जहाँ कहीं कोई सांस्कृतिक या पूजा पर्व का शब्द आया है जैसे अक्ति है तो मैंने कोशिश की है कि अक्ति का क्या महत्व है और अक्ति क्या त्यौहार है। और ये भी मैंने कोशिश की है कि ये जो त्यौहार है सांस्कृतिक दृश्य वो संसार की प्राचीन संस्कृति से अथवा प्राचीन देशों के रीति रिवाजों से कहाँ किस जगह और किस तरह से हमको ये कर देता है, यानी कैसे एक जो विश्व मानव है कैसे इन शब्दों के जरिए से भी एक हो सकता है और एक उसको हम समझ सकते हैं। भारतीय संस्कृति की एकता को मैंने सामने रखने की कोशिश तो की ही है अपने उस कोश के जरिए से।
1: तो इस कोश के लेखन में कौन सी कृति आपके सामने आदर्श रही है? कोई देशी तो मेरा ऐसा ध्यान है इस तरह की सामने प्रकाशन में आई नहीं, कोई विदेशी कृति ही आपके ध्यान में रही होगी?
0: नहीं, तो मैंने तो आपसे कहा नहीं ना कि वो इंग्लिश डायलेक्ट डिक्शनरी जो थी वो मेरे सामने थी।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: उसका इतिहास मैंने पढ़ रखा था और उसको मैंने देखा भी, तो मैं तो उससे बहुत प्रभावित हुआ।
1: जी
0: और आपसे मैं कहूँ कि वो जब प्रकाशित हुआ तो एक सज्जन ने, एक आलोचक ने ये कहा कि संसार के किसी भी राष्ट्र के पास ऐसी चीज नहीं होगी, ऐसा महान कोश है वो। तो वो मेरा आदर्श रहा और आज भी मैं इसीलिए उसको मैं अधूरा मानता हूँ, क्योंकि आप समझिए जिस कोश के लिए 40 साल तक सामग्री इकट्ठी की गई हो और वो 6 जिल्दों में छपा हो और संसार का महान कोश माना गया हो तो

0: मैं तो उसको अपने काम को बड़ा अधूरा मानता हूँ। लोग कहते हैं और मेरी बात लोगों की समझ में नहीं आती है, लेकिन उसको मैं अनुभव करता हूँ कि मेरा काम अब भी बड़ा अधूरा है।
1: लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रकाशन यदि हो जाए उसका तो उपयोगी होगा, लोगों को दिशा
0: हाँ,
1: मिलेगी।
0: तो मैं चाहता हूँ, मेरे मित्र मुझसे कहते रहते हैं, खासकर बनारसी दास जी या श्रीनारायण जी, वो कहते हैं अंग्रेजी की एक कहावत है ना कि बेटर इज द एनिमी ऑफ गुड, कि आप जो अच्छा काम है उसको भी नहीं कर सकते हैं, बेटर की यानी उत्तम कर की धुन में। और कभी जी ने तो मेरे बारे में एक लेख लिखा, उसका हेडिंग ही उन्होंने ये दिया कि बंधवर कृष्णानंद जी गुप्त, और नीचे उन्होंने लिख दिया कि जो अच्छा लिखने की धुन में कुछ भी नहीं लिखते हैं। उनका ये विश्लेषण मुझे बड़ा पसंद है और जो मेरे ऊपर सोलो आने लागू होता है उनका ये विश्लेषण।
1: किन किन भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करने में आपकी रुचि रही है?
0: मैं तो बहुत शुरू से ही, मुझे बंगला से बड़ा प्रेम हो गया था। जब मैं एक क्लास में रहा तो बंगला का तो मैं, आप मुझे क्षमा करेंगे और आप कहेंगे भी कि मैं कैसी बात कह रहा हूँ, मुझे बंगला का कहीं बहुत अधिक अच्छा ज्ञान है। उसका कारण यह है कि बंगला में कुछ ऐसे साप्ताहिक निकलते हैं जो बहुत ही अच्छे निकलते हों और जिनको पढ़ने से आप वहाँ के साहित्यिक गतिविधि के बिल्कुल संपर्क में हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देश है, बहुत अच्छा पत्र निकलता है उस तरह का। ये खेत की बात है, हिंदी में कोई पत्र नहीं निकलता है कि जिससे आप वहाँ की साहित्य की एक हमेशा आप उसकी संपर्क में रह सकें।
1: तो बंगला के अतिरिक्त और भी भाषाओं का तो आपको?
0: हाँ, गुजराती का मुझे बहुत अच्छा अभ्यास है, मराठी का भी मैं बहुत अच्छी जानता हूँ। मराठी दक्षिण की भाषाएं मैंने सीखने की कोशिश की लेकिन मैं सीख नहीं सका। कुछ थोड़ी सी फ्रेंच का मैंने अभ्यास किया लेकिन मामूली है, उसको ये कहना चाहिए नहीं के बराबर। लेकिन यहाँ की तो भाषाएं मैं बहुत अच्छी जानता हूँ जो थोड़ी सी है।
1: लेखन कार्य का आरंभ कितनी अवस्था से आपने प्रारंभ किया होगा, क्या उम्र आपकी रही जब आपने लिखना शुरू कर दिया?
0: तो मैं जब मैं हिंदी मिडिल का विद्यार्थी था, शायद मैं उस समय 13-14 वर्ष का रहा होऊंगा, तब मेरा पहला लेख बाल सखा में छपा और एक लेख विद्यार्थी में छपा, वो शिवाजी की गुरु भक्त के नाम से जी। उनकी जीवनी कहीं मैंने पढ़ रखी थी समर्थ गुरु रामदास की, तो उसमें मैंने एक कथा पढ़ रखी थी, उसी के आधार पर विद्यार्थी में मेरा लेख छपा था। मैं समझता हूँ वो मेरा पहला लेख था छुपन का।
1: तो जो आपकी प्रारंभिक रचनाएं हैं वे क्या उपलब्ध हैं आपके पास कटिंग के रूप में या कहीं पत्रिकाओं में देखने को मिल सकती हैं?
0: कुछ तो हैं, कुछ बहुत बिखरी हुई पड़ी हैं, मुझे स्वयं नहीं मिल रही हैं। प्रभा में मेरी सबसे पहली कहानी छपी सन 1922 में मौलिकता के नाम से, अब मुझे प्रभा का अंक ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ होगी वो चीज। इस तरह न जाने कितने लेख हैं जो उस जमाने में मैंने लिखे अपने तरुण अवस्था में, और जबकि एक मन में एक उमंग और उफान होती है लिखने की तो बराबर लिखता था, वो तो सब चीजें मुझे उपलब्ध नहीं है, स्वयं मेरे पास नहीं। कहानियों के दो संग्रह जरूर छप गए जो अब वो भी नहीं मिलते हैं।
1: तो बाल्यावस्था में ही साहित्यिक रुचि कैसे जागृत हो गई आपके भीतर?
0: तो मैं स्वयं ही नहीं जानता, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि चंद्रकांता का मेरे ऊपर बड़ा असर पड़ा, बहुत ही प्रभावित हुआ। मेरे बड़े भाई साहित्यिक रुचि के थे तो वो अपने लिए सरस्वती मंगाते थे और मेरे लिए शिशु और बाल सखा मंगाया करते थे, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। सरस्वती में उस जमाने में मैत्री शरण जी की, रामचरित उपाध्याय वगैरह की कविताएं छपा करती थी, तो उन्हें देख के मेरे मन में ये होता था कि मैं भी ऐसी कविता लिखूं और आपको बताऊं। एक बड़ा रोचक प्रसंग, मैंने एक कविता लिखने की दृष्टा भी की और द्विवेदी जी महाराज की सेवा में, यानी पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी की सेवा में भेज भी दी इन शब्दों के साथ कि मैं हिंदी मिडिल का विद्यार्थी हूं और आपकी सेवा में एक कविता भेज रहा हूं, इसे कृपया छाप दीजिए। उनका तुरंत उत्तर आया कि पहले पढ़ो फिर कविता करो। वो पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित है, कह नहीं सकता वो नष्ट ना हो गया हो। मुझे आश्चर्य होता है कि आज तो संपादक लोग मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन उस दिन द्विवेदी जी ने इतने दिनों पहले मुझे ये चिट्ठी लिख भेजी कि पहले पढ़ो फिर कविता करो, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ।
1: आपके कहानी

0: संग्रह भी छपे हैं, अंकुर पुरस्कार, ये दो ही?
1: जी हाँ, दो ही संग्रह। अंकुर तो साहित्य सदन ने छापा था
0: जी,
1: उस समय 26 में छपा, उस समय मैंने कॉलेज छोड़ा ही था, यानी उसके पहले मेरी कई कहानियां छप गई थी
0: जी।
1: तो क्योंकि साहित्य सदन से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध थे
0: जी,
1: तो उन लोगों ने मेरे उस संग्रह को छाप दिया, पहले संग्रह को
0: जी। हाँ, और ये बालोपयोगी साहित्य के लिए भी तो आपने बताया कि रुचि आपकी रही। और
1: हाँ, बालोपयोगी साहित्य के लिए भी मैंने साहित्य सदन को प्रेरित किया कि इस तरह की एक सीरीज निकाली जाए जिसमें विविध विषयों की किताबें छपें
0: जी।
1: तो एक साहित्य मणिमाला के नाम से एक सीरीज निकाली भी गई, लेकिन क्योंकि उसके पीछे प्रबंध कुशलता और व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं था तो उस सीरीज में गुप्ती का झंकार नाम का काव्य संग्रह छपा, जो बहुत ही अच्छा है। मेरी भी 3 किताबें उसमें छपी, जिनमें एक बड़ी प्रमुख किताब गोरकी के एक छोटे उपन्यास का अनुवाद था जो शेलकश के नाम से छपा। उस समय वो हिंदी में गोरकी की किसी भी पुस्तक का मैं समझता हूँ पहला अनुवाद था जो छपा
0: जी। हाँ, चर्चा वो हो रही थी बालोपयोगी साहित्य की
1: जी,
0: उसमें पुस्तकें जो आपने बताई उनमें स्वास्थ्य संलाप और शायद पदार्थ परिचय, दो के बारे में आपने बताया।
1: तो स्वास्थ्य संलाप तो ये चिड़गांव से छपा साहित्य संघ से
0: जी।
1: उसके बाद मैंने प्रयाग के एक अपने मित्र को तैयार किया इस काम के लिए, वो सरस्वती प्रकाशन मंदिर वाले थे, मेरे मित्र थे शालिग्राम वर्मा
0: जी।
1: तो वहां से मेरी 4 किताबें मेरी छपी। एक तो उसका सीरीज का उद्देश्य ही बच्चों के लिए वैज्ञानिक साहित्य का प्रकाशन करना था
0: जी।
1: तो उसमें मेरी उस सीरीज में मेरी एक किताब जीव की कहानी
0: जी
1: छपी, जिसमें मैंने छोटे बच्चों को, बच्चे कैसे पैदा होते हैं आमतौर से प्रश्न कर बैठते हैं और उसका बड़ा चलतू या टाल मटूल जवाब दे दिया जाता है। उसमें एक 8 वर्ष का बच्चा है बड़े आदमी का, जिसको एक अध्यापक घर पर पढ़ाने आता है, तो उसके भाई पैदा होता है, बच्चा उसके घर में होता है, तो वो प्रश्न करता है कि मास्टर साहब बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो उस प्रश्न को लेकर ही वो किताब चलती है, जिसमें मैंने प्राणी शास्त्र के या बायोलॉजी के जो प्रारंभिक सिद्धांत होते हैं वो एक छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश की है। मेरी दृष्टि में मेरी वो किताब बड़ी अच्छी थी। दूसरी किताब थी पदार्थ परिचय, जो फिजिक्स के ऊपर, भौतिक शास्त्र के ऊपर है, जिसमें ताप क्या है, विद्युत क्या है, ये मैंने एक छोटे बच्चे को वार्तालाप के ढंग से समझाने की कोशिश की है। इसी तरह से तीसरी किताब एक नागरिक जीवन है और चौथी एक नक्षत्रों के ऊपर एक किताब, इस तरह से 4 किताबें।
0: आपका उपन्यास जो है वो केन नाम से प्रकाशित हुआ था
1: जी,
0: तो वो ऐतिहासिक उपन्यास है, क्या उसका कथानक है?
1: जी हाँ, तो ऐतिहासिक उपन्यास है। केन नदी जो अपनी है
0: जी,
1: तो मैंने बांदा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में उसके अंत में परिशिष्ट में केन नदी के नामकरण के बारे में पढ़ा कि किसी एक गांव में लोधी या कुर्मी इस तरह से रहती थी दो घर, मैं ठीक भूल रहा हूँ उसका, तो दोनों वो लड़का था कुर्मियों का और लोधी की लड़की थी शायद, दोनों में प्रेम हो गया, लेकिन वो विवाह किसी वजह से हो नहीं सकता था। तब लड़की जो थी वहाँ तालाब एक था, रात को खूब पानी बरसा तो वो तालाब में एकदम बांध फट पड़ा और लड़की उसी में डूब गई, उसी से वो नदी निकलती है, तो वो कन्या नाम पड़ गया उस नदी का और उसी से वो केन हो गया। इस तरह से उस गजेटियर में मैंने वो पढ़ा तो मुझे कथानक बड़ा अच्छा लगा, तो उस घटना को मैंने चंदेल काल में डालकर और एक छोटा सा उपन्यास लिखा, जो लोगों को उस समय बड़ा पसंद आया था मेरा वो उपन्यास
0: जी। आपके जो लेख हैं ये तो बहुत छपते भी रहे हैं और अप्रकाशित भी पड़े होंगे, तो कुछ इनके बारे में कुछ सूची पत्र बनाया गया इस प्रकार का, जिससे मालूम हो सके कुल कितने लेख आपके होंगे?
1: अब उनका कोई ठीक कैटलॉग मेरे पास नहीं है और मेरे लिए बनाना बड़ा कठिन हो गया, लेकिन सुधा में, माधुरी में, प्रभा में तमाम लेख पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि सुधा में मेरी संपादकीय टिप्पणियां तक भी तमाम पड़ी हुई हैं।

0: मेरे साथ कठिनाई ये है कि कोई इस छोटी जगह में गरोठा जैसी जगह में मुझे कोई ऐसे सज्जन नहीं मिलते हैं जो इस सब काम में मेरी सहायता कर सकें और मदद कर सकें। इतना परिश्रम तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस उम्र में।
1: अपनी कौन कौन सी कृतियां आपको विशेष प्रिय हैं?
0: मुझे अपनी प्रसाद जी के दो नाटक जो आलोचना है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है, और वो मैंने बड़े आवेग और बड़ी प्रेरणा और बहुत सत्य निष्ठा के साथ वो आलोचना मैंने लिखी थी
1: जी। उसकी चर्चा तो बहुत हुई साहित्यिक क्षेत्र में
0: जी,
1: तो कैसा मतलब कुल मिलाकर क्या उसका निष्कर्ष निकला?
0: उसको तो उस समय लोगों ने बहुत पसंद किया
1: जी।
0: द्विवेदी जी ने ये लिखा था, द्विवेदी जी ने समझा कि मैं शायद वैसे आदमी तो मैं इस तरह से रहा ही मैथिशरण जी का, लेकिन उन्होंने समझा कि मैं बिल्कुल घर का ही आदमी हूँ, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी मैथिशरण जी को कि मैं उस आलोचना को पढ़ के मुग्ध हो गया
1: जी।
0: पद्म सिंह जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। हरि सिंह जी, हरिशंकर जी शर्मा जो आर्य मित्र के संपादक रहे और हिंदी के बड़े अच्छे लेखक भी रहे, उन्होंने पूरा दो कॉलम का एक लेख उस मेरी आलोचना के बारे में लिखा
1: जी।
0: तो उस जमाने के जो इस तरह के साहित्यिक थे जो जटिल और ऊटपटांग भाषा को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मेरी आलोचना को बहुत अधिक पसंद किया, किंतु जो प्रसाद जी के साथी या उनके भक्त या उनके प्रशंसक थे और जो उनकी पुस्तकों को कहना चाहिए एक तरह से षड्यंत्र करके आगे रखना चाहते थे कि वो कोर्स में हो जाएं और बिकें, उन्होंने स्वाभाविक रूप से पसंद नहीं किया। मुझे उन्होंने बहुत गालियां भी दी, आज के जरिए मुझे बहुत अधिक गालियां मिली, यहाँ तक कि मैथिलीशरण जी को भी मेरे साथ लपेट लिया कि वो मैथिलीशरण जी ने प्रसाद जी को गिराने के लिए वो आलोचना लिखवाई। और मुझे बड़े दुख और खेद के साथ कहना पड़ता है ये जो मिथ है, ये जो कपोल कल्पना है, वो अभी तक फैली रही। अभी 5 साल पहले दिनकर जी ने राय कृष्णदास जी पर लेख लिखा और उसमें उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया, मैं ये समझा कि वो मेरी आलोचना से डरते रहे, उसको छू नहीं सके, लेकिन घुमा फिरा के ये उन्होंने लिखा कि वो आलोचना मैथिलीशरण जी ने प्रसाद जी को गिराने के लिए ईर्ष्यावश लिखवाई थी। इस तरह की चीज अब भी चलती रहती है
1: जी। तो अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रमों में आप जाते रहे हैं, तो ऐसे किन किन आयोजनों में आपने अपने विचार प्रस्तुत किए, कुछ बताने की कृपा करेंगे?
0: मैं तो बहुत कम गया हूँ
1: जी
0: इस तरह के अखिल भारतीय आयोजनों में। आपको आश्चर्य होगा, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के केवल एक अधिवेशन में मैं सम्मिलित हुआ और वो अबोहर का अधिवेशन था, और मेरे आदरणीय मित्र पंडित बनारसी दादी चतुर्वेदी मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए, अन्यथा सभा सोसाइटियों से मुझे कुछ आंतरिक विराग रहा है और मैं एकांत प्रिय बहुत रहा हूँ। मेरी मान्यता ये रही है कि काम तो आदमी ही करता है, कोई जब तक ऐसा आदमी नहीं होता जिसके मन में काम करने की लगन हो, तड़पन हो और सत्य निष्ठा हो, तब तक काम नहीं होता। संस्थाएं तो केवल उस आदमी का एक प्रतीक बन जाती हैं और उस आदमी के प्रचार का माध्यम बन जाती हैं। आप किसी भी अच्छी संस्था को ले लीजिए, उसके पीछे आप देखेंगे कि एक आदमी की आत्मा मौजूद है, और वो आत्मा जब खत्म हो जाती है तो वो संस्था भी खत्म हो जाती है।
1: लोक साहित्य पर शोध कार्य करने के लिए और विशेष रूप से बुंदेली पर आपसे मेरा ख्याल है सभी ने प्रेरणा ली है, लेकिन प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और परीक्षण परीक्षक के रूप में थीसिस के किन किन लोगों का आपने किया है, कुछ बताएंगे इसका?
0: अब ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, उसमें अपने बारे में कुछ कहना हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस जमाने में लोक साहित्य पर जिन लोगों ने भी काम किया, और मुझे कहना चाहिए कि लोक साहित्य पर काम करने की प्रेरणा लोकवार्ता से मिली। हिंदी को लोकवार्ता शब्द कहना चाहिए, मुझे वैसी बात है बहुत, लेकिन चूंकि ऐतिहासिक महत्व की है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो शब्द का जन्म टीकूगढ़ में ही हुआ फोकलोर के लिए, और वो शब्द अब चल पड़ा है। तो उस जमाने में लोकवार्ता के द्वारा लोक साहित्य पर काम करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रेरणा पाई। उदाहरण के लिए मैं डॉक्टर सत्येंद्र का नाम लूंगा, उस वक्त

0: डॉक्टर नहीं थे सत्येंद्र जी और मथुरा में थे, तो लोकवार्ता से उन्होंने बहुत प्रेरणा ली। और सामग्री संग्रह करने का जो टेक्निक है वो आज भी चलता रहता है और वो मेरी समझ में बहुत देर से आया। वो एक शिविर की स्थापना की गई, शिविर इकट्ठा किया गया वो सामग्री इकट्ठा करने के लिए। तो डॉक्टर सत्येंद्र जी ने शिविर उस जमाने में चलाया था लोक साहित्य के लिए और मुझे आमंत्रित उन्होंने किया। मैं जा तो नहीं सका था लेकिन पत्रों के द्वारा बराबर मैं लोक साहित्य के बारे में अपने विचार उनको लिखता रहा। उसके बाद मेरा ऐसा ख्याल है कि उनका जो थीसिस है वो हिंदी में लोक साहित्य पर पहला निबंध था।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, इस क्रम में डॉक्टर कृष्णानंद गुप्त से बातचीत। मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग कार्यक्रम में आज कलाकार है स्वदेश यादव। आपके साथ बेंजो पर संगत कर रहे हैं जब्बार खान, ढोलक पर मुकेश रजक, झींका पर बाबू रेगबार। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं गारी।

0: अभी आपने सुना स्वदेश यादव के स्वर में गारी। लीजिए अब सुनिए अंबेडकर जी पर आधारित ये लोकगीत। कलाकार एक बार फिर स्वदेश यादव।
1: संविधान

स्वदेश यादव के स्वर में अभी आपने सुना अंबेडकर जी पर आधारित लोकगीत। लोकरंग कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं कबीर दास जी पर आधारित लोकगीत। कलाकार एक बार फिर स्वदेश यादव।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं स्वदेश यादव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं डिमरियाई।
3: अरे भस्मा जो का कर रहा हूं

0: स्वदेश यादव के स्वर में अभी आपने सुनी डमरियाई।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: लोकरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लोक शैलीबद्ध गीत, कलाकार एक बार फिर स्वदेश यादव।
3: अरे होता ही नहीं यार।

अभी आप सुन रहे थे लोक शैलीबद्ध गीत, कलाकार थे स्वदेश यादव। इसी के साथ कार्यक्रम लोकरंग अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे स्वदेश यादव, आपके साथ बेंजो पर संगत कर रहे थे जब्बार खान, ढोलक पर मुकेश रजक और झीका पर बापू रैगबार। मीडिया वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले हम आपको बता देते हैं इस कार्यक्रम के फोन नंबर। हमारा पहला फोन नंबर है 298029 यानी 2980 29 और हमारा दूसरा फोन नंबर है 2415888 यानी 2415888। छतरपुर शहर के बाहर के श्रोताओं के लिए हमारा STD कोड है 07682। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 के मध्य की जाती है। इसी बीच हमारे श्रोता लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: नमस्ते सर जी,
0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश है। आज के हमारे पहले कॉलर है, नाम बताएं अपना।
1: जी, मैं ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से पूजा वर्मा बात कर रही हूँ सर।
0: पूजा वर्मा जी का फोन है, कैसे हैं पूजा जी आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी, आप कैसे हैं?
0: जी बढ़िया हैं। और अभी देखिए आपका 12वीं के एग्जाम हो गए है ना?
1: इस साल BA चल रही है, सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं।
0: अच्छा, BA चल रही है आपकी, इस सेमेस्टर के एग्जाम हो गए हैं, बढ़िया। बड़े होके क्या बनना चाहेंगे?
1: अभी तो सर करियर पर फोकस ही कर रही है, सोच रही है पुलिस लाइन में जाएं तो पुलिस की तैयारी कर रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस सेवा में जाएं और देश की सेवा करें। और देखिए अभी ग्रेजुएशन चल रही है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए तो समय पर देखिए आपका लक्ष्य जो है वो मिल जाएगा।
1: जी।
0: रेडियो के कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: कार्यक्रम तो बहुत अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
0: जी जी जी जी, आज कौन सा गाना सुनना है?
1: आज सुनना है, फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद रफी जी की आवाज में गीत है, अब दवा की जरूरत नहीं।
0: अब दवा की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: ये फिल्म देखी है आपने?
1: जी नहीं, फिल्म नहीं देखी, गाना ही सुना है। गाना बहुत अच्छा है और इस फिल्म के सभी गाने अच्छे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो गाने इतने बढ़िया हैं तो फिल्म देखने का मौका जरूर देखिएगा।
1: जी बिल्कुल,
0: सुनवाएं फिर पूजा जी आपको आपकी फरमाइश का ये गाना।
1: जी सर जी बिल्कुल, और ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगी अंजलि देवी को और अंजना देवी को, और सभी सुनने वालों को भी डेडिकेट है आपको।
0: सुने आपकी फरमाइश का ये गाना।
1: नमस्ते सर जी।

0: हेलो फरमाई
1: जी हाँ हेलो फरमाई कार्यक्रम
0: सर नमस्कार
1: नमस्कार
0: अनूप कुमार ग्राम प्रेता तहसील सरीला जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से बोल रहा हूँ सर।
1: अच्छा अच्छा बताइए आप पहली बार बात हो रही है आपकी हमारी लगता है।
0: हाँ पहली बार हो रही है आपसे।
1: जी हाँ क्या करते हैं अनूप जी आप।
0: कुछ नहीं खेती करते हैं हल्दी बबीती रुबई रखाने आए थे।
1: अच्छा हल्दी बबीती है।
0: हाँ
1: तो हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बताइए हल्दी कैसे बोई जाती है उसके जो पौधे हैं वो हो गए हैं कि नहीं।
0: हाँ पेड़ पौधे हो गए हैं
1: जी पौध हो गई है बड़ी बड़ी हो गई है पौधा।
0: पौध अब ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है हल्की हल्की है एक एक बीता की है।
1: जी जी जी तो जमीन के अंदर से गांठे की गांठे निकलेंगी पकने के बाद है ना।
0: हाँ
1: बढ़िया बढ़िया तो ये हल्दी आप गर्मियों की फसल में निकालते है ना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा अच्छा गर्मियों में और क्या बो लेते थे इसके पहले।
0: हल्दी है जैसे दाल आल है।
1: बढ़िया तो पानी पर्याप्त मिल जाता है आपके यहाँ पे।
0: हाँ ट्यूबवेल से अभी सींचते हैं और पानी बरसा नहीं है अभी।
1: अच्छा कितनी गहराई पे आ जाता है पानी।
0: पानी 60-70 फुट के आसपास आ जाता है।
1: तो इसका मतलब वाटर लेवल बहुत अच्छा है। गाना कौन सा सुनना है आज।
0: गाना फूल और घाटी का।
1: कौन सा गाना।
0: कोई भी सुनवा लो
1: सारे गाने अच्छे लगते
0: हैं। हाँ
1: ये फिल्म देखी है आपने।
0: हाँ देखी है कई बार देखी है।
1: क्या अच्छा लगा इस फिल्म में।
0: अजय देवगन का बहुत अच्छा रोल रहता है।
1: और गाने बहुत अच्छे हैं इसके ना।
0: हाँ हाँ
1: बिल्कुल सुनवाते हैं अनूप जी आपके फरमाइश का ये गाना।
0: कुछ दोस्तों के नाम ले सकते हैं।
1: जी हाँ
0: राजू कुमार यादव।

0: जी हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ भैया नमस्ते।
0: नमस्कार जी।
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जांगड़े।
1: हाँ जी
0: छत्तीसगढ़ से
1: जी।
0: हमारे नियमित श्रोता हैं, देखिए।

0: समय पर हमें याद कर लेते हैं किसी न किसी बहाने हैं
1: जी।
0: बताइए, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका क्षेत्र है यहाँ की कोई खास परंपरा, कोई त्योहार या लोक कला जिसका आप जिक्र करना चाहें रेडियो के माध्यम से।
1: अब छत्तीसगढ़ तो वैसे पूरा छत्तीसगढ़ लोक परंपराओं से बंधा हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी ये जैसे हरियाली का त्योहार आएगा तो वहाँ से शुरू होता है, तो वो लगातार चलते रहता है फिर होली तक।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस दौरान जो कई चीज त्योहार पड़ते हैं सब जगह, भले थोड़ा सा स्वरूप अलग हो, लेकिन जैसे हरेली, हरेली के बाद इधर रक्षाबंधन, पोला तीजा, कमर छठ, तो इन सब में कुछ न कुछ मतलब ऐसा होता है, अपने अपने पारंपरिक कह सकते हैं।
0: बढ़िया बढ़िया। कौन सा गाना सुनना है आज?
1: फिल्म सावन को आने दो मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए, बारिश का अभी तक कोई अता पता नहीं है।
0: जी हाँ, ऐसे ही हाल यहाँ हमारे छतरपुर तरफ के हैं, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है यहाँ भी।
1: जी
0: सुनते हैं आपके फरमाइश का, सावन को आने दो फिल्म का ये शीर्षक गीत।
1: जी धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
0: जय बजरंग रेडियो सोता संग बस स्टैंड बंडा विले से लक्ष्मण चाय वाले बोल रहे सर।
1: लक्ष्मण रेखवार जी का फोन है बंडा विले सागर से।
0: चाय पी लो सर।
1: बिल्कुल, आप पिए और अपने ग्राहकों को पिलाएं। बताइए कौन सा गाना सुनना है आज?
0: आज सुनवा दी एक पिक्चर है सावन का महीना पवन करे शोर।
1: पवन करे शोर सावन का महीना।
0: हाँ।
1: किस फिल्म का गाना है
0: ये? हमारे हिसाब से मिलन पिक्चर का है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बारिश शुरू हो गई आपके बंडा तरफ की? नहीं, अभी
0: बारिश अभी सवेरे से हो रही, 6 बजे से अभी होती जा रही है।
1: अच्छा, बारिश हो रही है आपकी तरफ?
0: हाँ।
1: बढ़िया है, अभी हमारे छतरपुर में तो बारिश नहीं होती है या ना के बराबर।
0: हाँ।
1: बताइए आकाशवाणी छतरपुर आप बहुत सालों से सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जो याद हो जो आपको आज भी रेडियो से जुड़ी हुई आती हो?
0: जो नम्बर नम्बर नहीं जानते थे वो लिखने लगे इंग्लिश में। आप लोग बताते थे तो पहले तो बहुत दिक्कत होती,
1: पहले बहुत दिक्कत होती थी तो फोन कैसे लगाते थे?
0: फोन तो अब कुछ दूसरों से लगवाना पड़ता, अब तो हम

0: लगा लेते हैं और सब कर लेते हैं।
1: अच्छा, आप मोबाइल आ गए तो आप लगा लेते हैं, और जब मोबाइल नहीं थे तो फिर एसटीडी पीसीओ जाते थे आपकी? नहीं,
0: हाँ एसटीडी जाते थे और उसको अधिकारी पैसे देने पड़ते थे,
1: अधिकारी पैसे देने पड़ते थे और बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, और नहीं लगा तो फिर निराश होकर वापस भी आना पड़ता था कई बार।
0: अब तो अपने करे 10-10 मोबाइल है, कोई दिक्कत नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए सुविधा हो गई है। सुनवाते हैं ये आपके फरमाइश का गीत।
0: ठीक है सर, नमस्कार।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्कार
0: सर, पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली।
1: जगदीशपुर रायबरेली।
0: जी सर।
1: पिंकी जी कैसे हैं?
0: सर हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं और आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी हाँ, हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है कि दिन

0: में तो गर्मी रहती है और कई बार बादल छाए रहते हैं सुबह शाम, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है।
1: सर बारिश ही नहीं हो रही सर, एक महीने से इतनी धूप इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, बारिश भी नहीं हो रही।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो पिंकी जी, आप कार्यक्रम सुनते हैं हमारे यहाँ के लगातार?
1: जी सर बिल्कुल सुनते रहते हैं, चैनल आपका कम पकड़ता है, बहुत सरसराहट होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सर आपका कार्यक्रम।
0: हाँ, मीडियम वेव पर आप रेडियो सेट पर सुनेंगे तो थोड़ी सी समस्या।
1: सर रेडियो पे सुनते मीडियम वेव पे। जी सर पकड़ता है लेकिन थोड़ा मतलब साफ कम सुनाई देता है सर।
0: कितने सालों से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी छतरपुर को?
1: सर हम तो सर आपके यहाँ के सर नए श्रोता, अभी सर एक साल हुआ है हम लोगों को।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, नए श्रोता हैं।
1: जी जी सर।
0: बढ़िया बढ़िया। तो अपने रायबरेली जहाँ आपका क्षेत्र है, यहाँ की कोई खास बात बताइए।
1: जी सर मेरे यहाँ की सर एक खास बात ये है कि सर मेरे यहाँ ना एक महल है राजा का, जहाँ अक्सर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है।
0: अच्छा,
1: काफी बड़ी बड़ी फिल्में की शूटिंग हो चुकी है और होती है अभी भी।
0: कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई है, थोड़ा बहुत नाम बताइए।
1: जी सर जैसे फिल्मों की बात करें तो सर बुलेट राजा हो गई, वेड मूवी हो गई और सत्यमेव जयते 2 हो गई। इसमें का जो सर सॉन्ग है मेरी जिंदगी है तू और मैनू लहंगा ले दे, सब यहीं पर सर शूटिंग हुई है। और काफी भोजपुरी फिल्मों की भी शूटिंग हुई है सर, गाने भी बनते हैं सीरियल की वगैरह भी।
0: इतना खास है वो महल?
1: खास बात है सर, मेरा गाँव सीवघर के पास में ही पड़ता है तो सर मेरे यहाँ की यही खास बात है। और सर बहुत दूर दूर के लोग घूमने भी आते
0: क्या बात है,
1: काफी अच्छी हरियाली वगैरह फूल वगैरह लगे हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है महल देखने।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
1: मेरे यहाँ 25 दिसंबर का मतलब यहाँ पे मेला भी लगता है तो मेला भी लोग घूमने आते हैं काफी दूर।
0: बढ़िया। आज कौन सा गीत सुनवा दें आपको आकाशवाणी छतरपुर से?
1: सर गीत के बोल है जब से हम तेरे आशिक बने, सर ये सॉन्ग।
0: जब से हम तेरे आशिक बने, ऐसा कुछ गाना है ना?
1: जी जी सर बिल्कुल सर, कुमार सानू की आवाज में है, अलका याग्निक शायद।
0: कुमार सानू और अलका याग्निक?
1: जी जी सर।
0: आपको मालूम है कि अलका याग्निक जी को अभी पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है?
1: नहीं एक्चुअली सर क्या होता है कि हम लोग रेडियो पे ही सर गाने सुनते रहते, देखते बहुत कम है। और जैसे मतलब रेडियो पे सुनते हैं तो सर अच्छे लगते हैं तो वही हम लोग फरमाइश भी कर देते हैं।
0: जी हाँ, अभी 23 जून को ही उनको माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है।
1: सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि उनकी आवाज बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छे गाने गाते हैं। और सर मुझे 19 सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 19 सॉन्गों की बात ही कुछ अलग होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाते हैं पिंकी जी आपके फरमाइश का गाना।
1: ठीक है सर, नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार नमस्कार, हमारे नियमित श्रोता चित्रकूट से दिनकर जी है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं थोड़ा आला की तर्ज पे अपना परिचय दे दूं सर
0: जी? हाँ बिल्कुल, और चित्रकूट बांदा तरफ की बात हो, आला ना हो कैसे हो सकता है, सुनाए।
1: बिल्कुल, जिला बांदा राहत हो और चित्रकूट है धाम, और दिनकर सिंह मेरा नाम है, और सर जी को करत प्रणाम।
0: क्या बात है, आपके गाने में देखिए बाय बाय आपके मित्र भी कर रहे थे पीछे से।
1: जी सर जी, और ये भी बता दो, मेरे पिताजी आला गायक थे, थोड़ा आलसी थे, नहीं वो रेडियो सिंगर होते, और नंबर एक हमारे यहाँ महोबा में उनको जो है एसपी ने कहा था कि इनका नंबर आना चाहिए, इतना था आला गाते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आया, पांचवा नंबर आया, लेकिन एसपी साहब को मेरे पिताजी का आला पसंद था।
0: क्या बात है, अब बताएं कौन सा गीत सुनना है आज?
1: मुझे फिल्म हीरो का गीत सुना दीजिए सर जी।
0: कौन सा गाना?
1: लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, प्यार करने वाले डरते नहीं, जो डरते हैं प्यार करते नहीं।
0: क्या बात है, बढ़िया गाना है।
1: और सर जी, प्रेमदास बाबा और फूलचंद पाल ये, और हमारे बब्बू राम वर्मा जी मेरे सामने बैठे हैं, पानी चल रहा है, इनके साथ एक गीत सुनूंगा।
0: बिल्कुल, वादा कीजिए कि रविवार को आप सब ऐसे ही तीनों लोग बैठेंगे और गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर वो हमारी नर्सरी पढ़ने वाली है धान की, इसलिए जो है तीनों लोग बैठेंगे और तीनों लोग सुनेंगे।
0: सुनते हैं आपके फरमाइश का हीरो फिल्म का ही गाना
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो नमस्ते सर
1: जी। नमस्कार,
0: मैं ग्राम पनवाड़ी से सुनीता बात कर रही हूँ सर।
1: सुनीता जी का फोन है पनवाड़ी से, जंटपुरा पनवाड़ी है ना?
0: जी सर, जंटपुरा पनवाड़ी।
1: जी हाँ, कौन सा गाना सुनना है सुनीता जी आपको?
0: पुली फिल्म का सुनना है। न तूने सिग्नल देखा, न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट।
1: कुली फिल्म का गाना है ये, अमिताभ वाली कुली है जो।
0: हाँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आम का अचार आप बना लेते हैं कि नहीं?
0: जी सर, आम का अचार तो बन गया है और रख दिया है, और उसमें भी खाने लगे हैं लड़का।
1: अच्छा, कई लोगों के हाथ का अचार ऐसा होता है कि पूरे साल भर देखो तो वो हरा का हरा बना रहता है, ऐसी क्या बात होती है उसमें?
0: हाँ नहीं, मतलब ये हरा तो बना रहता है, अच्छा बढ़िया तेल उसमें डालो पका के, और नमक भी थोड़ा ज्यादा, नमक और तेल उसमें मसाला अच्छा डाल तो बढ़िया अचार रखा रहेगा।
1: कई लोग कहते हैं कि हाथ का फर्क हो जाता है, कई लोगों का डालते ही खराब, कई लोगों का काला पड़ जाता है, और कई लोगों का हमने देखा बिल्कुल हरा का हरा रहता है।
0: हाँ हो जाता है, किसी के हाथ तक खराब हो जाता है।
1: कई बार रेसिपी का भी फर्क पड़ जाता होगा।
0: हाँ, काला भी पड़ जाता है और फफूंद से लग जाता है उसमें। हमने अभी खपाया।
1: हाँ देखिए, इसी समय आम का अचार डाला जाता है। अब देखिए, आम धीरे धीरे जा रहे हैं तो लोग अपने अचार की भी तैयारी कर रहे हैं।
0: हाँ, अचार की तैयारी कर रहे हैं। सर आपके यहाँ गर्मी कैसी है?
1: देखिए, गर्मी तो धीरे धीरे उमस में तब्दील हो रही है, क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू होने को है।
0: हाँ।
1: तो बूंदाबांदी बीच बीच में हो जाती है
0: थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी, और अभी तो थोड़ी बादल है, बादल मतलब धूप भी निकल आती है और बादल भी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी, सुनाते हैं फिर आपको आपकी फरमाइश का कुली फिल्म का ये गाना। नमस्कार जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: प्रणाम
0: जी, नमस्कार।
1: मैं कोतवा साजा से रामस्वरूप गुप्त बोल रहा हूँ।
0: कोतवा साजा?
1: हाँ भैया।
0: देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने क्षेत्र की कुछ खास बात बतानी पड़ेगी जिससे हमारे श्रोता पहचान जाएं कि कोतवा कहाँ पर।
1: ये कोतवा भैया ऐसा, इधर दूरगढ़ से आते हैं तो 54 किलोमीटर है, बेमे तरफ से आते हैं तो 22 किलोमीटर है। मेन चौक है कोतवा, इधर से अपन रायपुर भी जा सकते हैं, कोतवा से इधर गंडई पे और अपने नाम गाँव भी जा सकते हैं। कोतवा चौक पहले पत्थर का खदान था, अभी भी पत्थर खदान है, लेकिन अभी छुटपुट चलता, पहले बहुत था यहाँ का पत्थर, यानी भिलाई डोलोमाइट के लिए जाता था भैया पहले।
0: आकाशवाणी से जुड़ी हुई कोई याद जो आपको आज भी जहन में आती हो, इतने सालों से आप रेडियो सुन रहे हो?
1: आकाशवाणी से भैया यही अधिक तो जानकारी मिलता है, कई प्रकार का खेती किसानी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, तबीयत स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलते रहता है आकाशवाणी से, कई प्रकार की जानकारी मिलती रहता है भैया इसमें तो।
0: बढ़िया बढ़िया, तो ये जो जानकारी है ये आप दैनिक जीवन में उपयोग कर लेते हैं ना?
1: हाँ भैया। हाँ,
0: कौन सा गाना सुनना है आज?
1: आज भैया मेरे को सुना दो, मेरे हम सफर का है, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलना दो तो छोड़कर।
0: सुनवाते हैं आपके फरमाइश का ये गाना। नमस्कार।

0: आकाशवाणी छतरपुर।
1: जी हाँ, आकाशवाणी छतरपुर में फोन किया है, नाम बताएं।
0: पहली चक्कर सर लगाया मैंने, गोविंद जलोदिया खाते गाँव।
1: खाते गाँव महाराष्ट्र?
0: नहीं, खाते गाँव ये देवास जिले में पड़ता है।
1: खाते गाँव देवास जिले से बोल रहे हैं? बढ़िया बढ़िया, तो पहली बार फोन किया है आपने?
0: हाँ, पहली मरतबा फोन किया है मैंने
1: जी। क्या करते हैं गोविंद जी आप?
0: मैं कुछ भी नहीं करता सर, वो तो 73 साल की उम्र है मेरी। 73 साल की उम्र है, पहले लाउड स्पीकर वगैरह का ही काम करता था मैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब रेडियो सुनते रहते हैं?
0: हाँ, रेडियो सुनते रहता हूँ सर मैं आकाशवाणी में
1: जी।
0: सब दूर मतलब जो है बम्बई है, जैसे इंदौर है, भोपाल है, और आपका ये पहली मरतबा लगा।
1: क्या बात है क्या बात है, तो आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम भी सुन लेते हैं वहाँ पे?
0: हाँ सुन लेते हैं सर।
1: बढ़िया बढ़िया, कौन सा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है हमारे?
0: कब आएगी
1: ये? आएगी रविवार को सुबह 9:30 से 10:30 के मध्य।
0: रविवार को आएगी
1: जी। हाँ, कौन सा गाना सुनना है आज?
0: सर ये गाना है सर, आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये उस पिक्चर का है सर, लोफर का, मोहम्मद रफी की आवाज़
1: है। अच्छा, लोफर फिल्म का गाना सुनना है आपको? बढ़िया बढ़िया, तो किस तरह से समय व्यतीत होता है आपका?
0: बस ये तुम्हारा इसमें मनोरंजन रहता है मेरे ज्यादातर, मतलब रेडियो में ही।
1: बढ़िया,
0: रेडियो आपका साथी है। सिस्टम हो गया, मोबाइल पे आने लग गए तो सभी स्टेशन लगती है।
1: बढ़िया, तो अब सुनवाते हैं।
0: जमाना था कि भीड़ भारती आकाशवाणी लगने के लिए बरसों हो जाते थे, मतलब लगता ही नहीं था।
1: जी हाँ, सुनवाते हैं आपके फरमाइश का ही गाना।
0: ठीक है सर,
1: नमस्कार।
0: धन्यवाद सर,
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश
0: हेलो फरमाइश
1: जी हाँ हेलो फरमाइश कार्यक्रम
0: मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ मनकारी से।
1: जी हाँ, आज के कार्यक्रम का हमारा अंतिम कॉल है, फूलचंद पाल जी का फोन है मनकारी से। सबसे पहले देखिए, हम तो आपसे रेडियो से जुड़ी हुई याद साझा करवाना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत पुराने नियमित श्रोता हैं आकाशवाणी के।
0: जी जी जी जी सर, बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, याद है तो सर बहुत है, पूरा 1985 से लेके आज तक जो है रेडियो सुनता आता हूँ और बहुत सारी यादें हैं जब आप बैठ वार्ताएं करते हैं, बड़े भाई SIPS अधिकारियों से बात करते हैं और भी हम जब सुनते हैं कार्यक्रम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: और यादें तो है, तो यादें तो रेडियो की बहुत सारी हैं, कुछ कहने को भी नहीं है कि कितनी यादें बताएं आपको।
1: जी,
0: और सर कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। गाना कौन सा सुनना है आज?
0: बिल्कुल, फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियाँ। पूरे शरीर में जो है आग सी लगी है, इतनी गर्मी है जो है, तो ऐसे में बार बार याद आ रहा है ये गीत। फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियाँ। गीत के बोले कि आग लगी तन मन में जब पानी बरसे आए, और ऐसे में आ जा बेदर्दी सावन की दिन आए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी तरह के दिन आने वाले हैं, बरसात शुरू होने वाली है।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल, और अभी जो है बहुत ज्यादा ही है गर्मी, बहुत ज्यादा।
1: थोड़ा सा उमस भी बढ़ रही है गर्मी के साथ।
0: जी सर बिल्कुल सही कहा आप। ये गीत जो है सर आपको और प्रेमदास बाबा जी को डेडिकेट रहेगा, मांगीलाल चंदेल जी हो गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबको मिलकर ही सुनना है।
0: दिनकर सिंह जी है हमारे और कानपुर से पूनम जी है।
1: जरूर सुनवाते हैं आपके फरमाइश का ये।
0: जी सर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप।
1: नमस्कार जी।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की थी। मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय, प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की।

0: कार्यक्रम बहुदी सुनने वाली सभी श्रोताओं को, और राजेन जी आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: बहुत बहुत नमस्कार हमारे श्रोताओं को, और आदरणीय सर आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: देखिए आज महीने का आखिरी रविवार है, और आखिरी रविवार को देखिए हमारे श्रोता सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण।
1: 10:55 से माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का प्रसारण। माननीय प्रधानमंत्री जी देश और विदेश में हमारे भारतीय लोग जो बसे हुए हैं अपने मन की बातें साझा करते हैं, तो हमें बेसब्री से इंतजार है।
0: बिल्कुल कार्यक्रम को सुनेंगे। अभी अपन आए हैं देखिए बहुदी कार्यक्रम लेकर
1: जी,
0: और बहुदी कार्यक्रम में हमारे श्रोता भेजते हैं ईमेल और डाक से पत्र। तो एक बार बता देते हैं ईमेल का पता और डाक का पता।
1: ईमेल का पता है bhavdiyachhatarpur@gmail.com bhavdiyachhatarpur@gmail.com, और डाक का पता है कार्यक्रम भवदीय द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001।
0: अब उठाते हैं पहला पत्र, देखिए किसका है
1: ये। सर पहला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है ग्राम मिर्तला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत जी ने
0: जी।
1: आप लिखते हैं भवदीय कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्ते पहुँचे। आकाशवाणी छतरपुर से बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं आजकल, सुनकर पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। 12 जून को कार्यक्रम सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर, जो कि विशेष कार्यक्रम था। आकाशवाणी छतरपुर के पूर्व रिटायर उद्घोषक श्री राकेश खरे जी से भेंट वार्ता सुनी, अच्छी लगी। भेंट कर रहे थे श्री रविन्द्र प्रजापति, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पूछी, बहुत बढ़िया लगा। राकेश जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने पूरे जीवन काल का परिचय बखूबी रेडियो के माध्यम से दिया। आकाशवाणी आपके रोम रोम में बसी हुई है, पूरे 50 साल तक आपने एक तरफा राज किया, बाल काल से लेकर अपने रिटायरमेंट तक का सफर बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। ड्यूटी के समय ड्यूटी निभाना पड़ती है, परिस्थितियां चाहे जो भी हो। आपने बताया कि एक दिन कार्यक्रम करते हुए आपके बच्चे का सिर फूट गया, फिर भी आपने ड्यूटी निभाई, और एक दिन कार्यक्रम के दौरान बिजली गिरने की परिस्थिति में भी आपने कार्यक्रम दिया। आपने नाटकों में रोल बहुत ही अच्छे निभाए। ताल बेहट की कॉमेंट्री मैंने पूरी सुनी थी, 1996-97 की बात थी ये शायद। आप रिटायर हो गए पर आपकी आवाज आज भी उतनी ही मधुर और कर्णप्रिय है। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। 13 तारीख को कार्यक्रम सुना, जब आप गुनगुना उठे, अच्छा कार्यक्रम था। भूपेंद्र जी ने खूब पत्र शामिल किए, लेकिन हमारा पत्र शामिल नहीं किया। आपके पसंद कार्यक्रम और मनभावन दोनों कार्यक्रम अब नए अंदाज में पेश होने लगे, अच्छा लगा। यानी कि फेसबुक पेज पर आदरणीय रविन्द्र सर जी को दिल से धन्यवाद। भवदीय कार्यक्रम तो लाजवाब रहता ही है, हर हफ्ते आप दोनों का पेश करने का अंदाज एक से बढ़कर एक होता है। अगर हो सके तो बीच बीच में लेडीज आवाज को भी लाया करें और भी अच्छा होगा। एक ख्वाहिश है हमारी, अगर हो सके तो आसपास कार्यक्रम को फिर से चालू कर दें तो अति कृपा होगी। आदरणीय हर्ष पांडे की आवाज में श्री सुनील केशव जी को भी बुलाएं और श्री अरविंद सोनी जी का जीवन का सफर के बारे में बातचीत करें तो अच्छा लगेगा। और इसी के साथ ये अपने पत्र की समाप्ति करते हैं हमारे नरसिंह जी।
0: बिल्कुल, देखिए अपने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो हमारे आदरणीय राकेश खरे जी से जो बातचीत थी, जो पूरा संवाद था, आपने देखिए पूरा उत्साह के साथ सुना है, और उनके देखिए कर्तव्य कहें, अनुभव कहें, आकाशवाणी के प्रति जो उनका समर्पण था, उनके सभी अनुभव आपने आत्मीयता से सुने, और उनकी जो कमेंट्री थी, उनके अनुभव थे, वो सब आपने आनंद लिया,
1: दिलचस्पी से सभी श्रोताओं ने सुने।
0: इसके अलावा आपको जब आप गुनगुना उठे, आपके पसंद मनभावन बहुदी सभी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे हैं, देखिए आपका पत्र शामिल नहीं हुआ जब आप गुनगुना उठे में, तो देखिए इसका हमें खेद है, लेकिन कई बार क्या होता है पत्रों की संख्या हमारे पास पर्याप्त होती है और समय की सीमा है सिर्फ 30 मिनट की, तो सीमित पत्र ही जा सकते हैं, लेकिन

0: आपका पत्र अगर हमारे पास आया है तो इस शनिवार नहीं तो अगले शनिवार शामिल जरूर होता है। इसके अलावा आपने देखिए कुछ सुझाव लिखे हैं कि अन्य साथियों को भी बुलाया जाए, वरिष्ठ जो प्रसारण कर्मी हैं आकाशवाणी के। बिल्कुल धीरे धीरे आप सभी को सुनेंगे, क्रमबद्ध तरीके से आप कार्यक्रम सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है, ये मेल है, इस मेल में लिखा हुआ है और इस मेल में भगवत चौबे जी के नाम से मेल आया है लेकिन पता और नाम कहीं नहीं है, फिर भी हम पढ़ते हैं
0: जी।
1: आप लिखते हैं, आकाशवाणी छतरपुर के सभी कार्यक्रम जैसे मानस गान, महिलाओं पर आधारित प्रोग्राम, युववाणी, कृषि आधारित प्रोग्राम व मनभावन, आपके पसंद पर आधारित श्रोताओं के लिए फरमाइशी प्रोग्राम व प्रोग्रामों की समीक्षा पर प्रस्तुत भवदीय प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आकाशवाणी का श्रोताओं के प्रति प्यार उसे नई ऊंचाइयों में स्थापित कर रहा है। आकाशवाणी परिवार को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद और कुछ भी पत्र में नजर नहीं आ रहा है, हो सकता अधूरा पत्र सर हमें मिला हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आपने हमारे बहुदी कार्यक्रम के लिए पत्र लिखा, प्रयास किया, आपका देखिए पत्र पहुंचा है। लेकिन अगला पत्र जो होगा वो विस्तार से और पूरा पत्र हम तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सर ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है अम्बेडकर रेडियो श्रोता संघ मिदरवाह पोस्ट खिरिया लटकंजू तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से HR गौतम, रुद्रादित्य सिंह, आलिंद, प्रसून, यशराज और अक्षांश का
0: जी।
1: आप लिखते हैं, मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूं परंतु पिछले लगभग 10 से 12 साल से नियमित पत्र नहीं भेज पाता हूं, परंतु 18 जून को आकाशवाणी छतरपुर के पूर्व उद्घोषक आदरणीय श्री हर्ष पांडे जी से हमारे रविंद्र कुमार प्रजापति सर की भेंट वार्ता सुनी, बहुत अच्छी लगी। पांडे जी के कार्यक्रमों की याद ताजा हो गई। उनके द्वारा आसपास हेलो फरमाइश और ग्राम सभा में आना भी शानदार होता था। इसको सुनकर पत्र लिखने को मजबूर हो गया, परंतु आदरणीय श्री राकेश खरे जी की भेंट वार्ता नहीं सुन पाया, इसका मुझे बहुत दुख है। कभी समय मिले तो इसको पुनः प्रसारित करना। 20 जून का हेलो फरमाइश में मनपसंद गीत एवं शानदार बातचीत पसंद आई। इसी दिन का भव्य कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें पत्रों को पढ़ना और उनके जवाब देना अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लगभग 12 साल बाद पत्र लिख रहा हूँ, कृपया मेरा ईमेल शामिल करना। अब कोशिश करूंगा कि पत्र ईमेल महीने में एक बार तो भेज सकूं। इसी के साथ ही हमारे मित्र अपने पत्र की समाप्ति करते हैं सर।
0: बिल्कुल, देखिए कोशिश नहीं पूरा वादा करना है आपको और अपनी सहभागिता बराबर रखनी है बहुदी कार्यक्रम में। और आपने एक जो भेंट वार्ता थी श्री हर्ष पांडे जी के साथ उसको रिपीट करने की बात कही है, तो देखिए इतनी महत्वपूर्ण जो वार्ताएं भेंट वार्ताएं होती हैं वो आकाशवाणी की धरोहर संग्रह होती हैं और समय समय पर इन वार्ताओं को पुनः प्रसारित भी किया जाता है, तो आप रेडियो से जुड़े रहें
1: जी।
0: समय आने पर फिर से आप सुनेंगे। आपने लिखा है 12 साल बाद पत्र लिख रहा हूं, तो बड़ी खुशी हुई कि आप देखे लौटकर हमारे कार्यक्रमों से जुड़े। हम उम्मीद ये करते हैं कि आप लगातार सुनते तो रहे ही होंगे, भले ही पत्राचार ना हुआ हो, आपने प्रयास किया, ईमेल हम तक पहुंचा और आपका पत्र शामिल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने गौतम जी से उम्मीद करेंगे वो आगे लगातार पत्र भेजते रहें। सर अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पोस्ट गौना कोसमार थाना सौजना तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी, राम देवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल चाहना और पायल नामदेव। आप लिखते हैं, 18 जून को सुबह की सभा में संगीत सुनना अच्छा लगा, इसके बाद 9 बजे लोक संगीत का आनंद उठाया और शाम की सभा में हेलो फ्रेंड्स का आनंद लिया, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। ग्राम सभा में अटकन चटकन का आनंद लिया। 19 जून शुक्रवार को आपकी पसंद सुनकर मजा आ गया। दोपहर में महिला सभा अच्छा लगा। शाम की सभा में फिल्म संगीत के साथ मानस प्रवचन भी बहुत अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता को हमारी ओर से धन्यवाद। 20 जून को सुबह 6:35 पर खेती किसानी का आनंद लिया और इसके बाद 7:20 पर काव्य पाठ का आनंद लिया। 7:30 पर फिल्म संगीत सुनकर अच्छा लगा। 9:30 पर कार्यक्रम सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। 10:30 पर हमने आपकी पसंद कार्यक्रम सुना जो ईमेल और पत्रों पर आधारित था, बहुत अच्छा लगा। इसमें दर्शना गोस्वामी जी ने सुंदर पत्र पढ़े, बहन जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। आगे आप लिखते हैं, 9:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे सुना अच्छा अच्छा लगा, लेकिन इसमें पत्र बहन दर्शना गोस्वामी जी ने पढ़े सुंदर नहीं लगे। बहन जी ने जब आप गुनगुना उठे कार्यक्रम में पत्र पढ़ने का अनुभव इनका हमें ठीक नहीं लगा। कार्यक्रम तो सुंदर रहा, लेकिन पत्रों को जिस प्रकार से उत्सुकता से पढ़ा जाता है उस प्रकार से पत्रों को नहीं पढ़ा गया। हमारी तरफ से इतना अच्छा था, हमारी तरफ से मैं कहूँगा इतना अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम बनाने के लिए उन्हें बहुत बहुत

0: धन्यवाद। आगे अब लगते हैं शाम की सभा में। हेलो लोक रंजन, सुना अच्छा लगा, धन्यवाद। 21 जून रविवार को 9 बजे लोक संगीत का आनंद उठाया, फिर 9:30 पर श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश से सुना। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, मानो हमारे भूपेंद्र वर्मा जी ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हों। इतना अच्छा कार्यक्रम बनाने के लिए उन्हें बधाई। 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित भव्य सुना, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें हमारे आदरणीय सर जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए, पत्र भी सुंदर पढ़े गए, उन्हें बहुत बहुत बधाई। 22 जून को कार्यक्रम रमतुला सुना, बहुत अच्छा लगा। इस पर फोन कॉल्स पर नंदिनी दीदी ने अच्छी बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, उन्हें बधाई। 23 जून को ग्राम सभा में हमने शाम की सभा में ईमेल और पत्रों पर आधारित लोक मंजरी कार्यक्रम में बहुत अच्छे लोकगीत सुने, बहुत अच्छा लगा। साथ ही मन भावन भी हमने रात्रि 10 बजे सुना, बहुत अच्छा लगा। 24 जून को सुबह आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता दर्शना गोस्वामी जी को धन्यवाद। ईमेल इन्होंने शामिल नहीं किए, केवल पत्रों को शामिल किया, हमारी तरफ से इन्हें धन्यवाद। और इस पत्र में इतना ही, शेष समीक्षा जल्दी ही, अगले रविवार तक के लिए नमस्कार। और इसी के साथ हमारे मित्र अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
1: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस पत्र के लिए आप हमारे यहाँ के नियमित श्रोता है और खेती किसानी सुबह की वंदना से लेकर रात्रि के मनभावन तक के सभी कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। और जब आप गुनगुना उठे संबंधी दिखे आपने सुझाव कहे, ध्यान रखेंगे कि जो आपका वाचन शैली है श्रोताओं के पत्रों का जब आप गुनगुना उठे के लिए, वो बहुत अच्छा और उसी भाव के साथ वाचन रहे तो कार्यक्रम और अच्छा लगेगा। कुछ प्रस्तुतकर्ताओं के भी आपने नाम लिखे हैं, उन तक देखिए आपकी बधाई, आपकी शुभकामनाएं पहुंची रही हैं। ऐसा ही स्नेहिल पत्र समय समय पर हमें भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर जी का।
1: जी,
0: आप लिखते हैं, महोदय जी, योग एक प्राचीन भारतीय शैली है जो हमारे शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाती है। इसके नियमित अभ्यास से शारीरिक लचीलापन बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है, तनाव दूर होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। योग हमारे शरीर में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ योग आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और जीवन में अनुशासन तथा सकारात्मक दृष्टिकोण लाता है। आपके केंद्र से हमने दिनांक 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर जगदीश भट्ट से योग का महत्व विषय पर वार्ता सुनी, हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद लगी। इसी दिन हमने पत्रों एवं संदेशों पर आधारित कार्यक्रम भवदीय का प्रसारण सुना। इसमें शामिल सभी पत्रों की वाक्य शैली और कार्यक्रमों की समीक्षाएं सुनकर मन आनंदित उठा। जिन मनोभावों से श्रोताओं ने अपने विचार रखे, उसी भावों से उन पत्रों का जवाब सुनकर दिल खुश हो गया। इसी दिन कार्यक्रम बाल सभा में नन्हे अंकुर का प्रसारण मन को भा गया। दिनांक 20 जून को हमने कार्यक्रम बुंदेली सुगंध में कहानी गृहिणी से लेखिका सुनी, अच्छी लगी। इसी दिन हमने फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन सुना, अच्छा लगा। इसी दिन हमने श्रोताओं के संदेशों और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम जवाब गुनगुना उठी का प्रसारण सुना, जिसमें उद्घोषिका बहन दर्शना गोस्वामी जी ने कार्यक्रम की सिग्नेचर ट्यून के बिना कार्यक्रम आरंभ कर दिया, जिससे पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम आरंभ हुआ कि नहीं। इस कार्यक्रम में उद्घोषिका बहन ने इस कार्यक्रम में सिर्फ पत्रों को ही महत्व दिया, मेल देखने का उन्हें समय ही नहीं मिला। इस कार्यक्रम के लिए मेरा सुझाव ये है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अनुभवी और पारंगत उद्घोषकों को दायित्व दें जो इसमें कुशल और निपुण हों। पत्रों और ईमेल को बराबर स्थान दें ताकि इस कार्यक्रम की रोचकता बरकरार बनी रहे। इस कार्यक्रम के लिए पत्रों और संदेशों का चयन सटीक और सारगर्भित हो। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगामी इस कार्यक्रम के लिए हमें प्रशिक्षित एवं अनुभवी उद्घोषकों की आवाज सुनने को मिलेगी। इसी दिन हमने रसावतरण में आमंत्रित कवियों की स्वरचित रचनाएं सुनने को मिली, बहुत ही अच्छी लगी। दिनांक 24 जून को हमने कार्यक्रम हिंदी महक में काव्य पाठ सुना, बहुत ही अच्छा लगा। इसी दिन हमने संग्रहालय से अंतर्गत गजानन माधव मुक्ति बोध के संस्मरण हरिशंकर परसाई जी से सुने, अच्छा लगा, जो हमारे साहित्य ज्ञान कोष को और अधिक मजबूत कर गया। इसी दिन हमने युवाणी में कॉफी हाउस सुना, अच्छा लगा। इसी दिन कार्यक्रम ग्राम सभा में बुंदेली काव्य पाठ सुना, अच्छा लगा। दिनांक 25 जून को हमने कार्यक्रम बुंदेली सुगंध में बुंदेली काव्य पाठ सुना, हमें अच्छा लगा। इसी दिन हमने ग्राम सभा में एक भेंट वार्ता स्वरोजगार से जुड़ी और शासन की योजनाओं के लाभार्थी बने ये सुनी। ये भेंट वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण और जनोपयोगी लगी। उक्त सभी कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ता, सहयोगी, संकलनकर्ता, वार्ताकारों, आमंत्रित कवियों एवं उद्घोषकों को हमारा दिल से आभार और साधुवाद स्वीकार हो। शेष अगले पत्र में, तब तक के लिए आप सभी हमारा अभिवादन स्वीकार करें।
1: 30 जून से लेकर देखिए, इन्होंने 25 जून तक के कार्यक्रमों का जिक्र किया।

0: है और सभी अनुभाग के कार्यक्रमों को आपने सुना है, गुना है और इनसे क्या सीखा है और क्या महत्वपूर्ण था वार्ताओं, भेंट वार्ताओं में, ये भी आपने लिखा है और एक एक जवाब गुनगुना उठे को लेकर देखिए, आपने सुझाव कहें, शिकायत कहें, वो भी देखिए हमने सर आंखों पे है, आप सबके सुझाव रहते हैं और आगे से इस तरह की शिकायत आपको नहीं मिलेगी। और जो आपने ईमेल की बात कही है कि ईमेल नहीं लिए गए, तो इस तरह की देखिए शिकायतें हमारे पास लगातार आ रही थी राजन जी।
1: जी जी
0: और इसका देखिए हमने जो समाधान है वो इस तरह से निकाला है
1: जी
0: कि जो आप सुबह 10:30 पर आपकी पसंद कार्यक्रम सुनते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक
1: जी,
0: तो इसमें सोमवार और गुरुवार को सिर्फ ईमेल पर पत्र रहेंगे
1: जी जी,
0: मंगलवार और शुक्रवार को सिर्फ सोशल मीडिया यानी फेसबुक व्हाट्सएप अगर उपलब्ध होगा तो व्हाट्सएप
1: जी जी,
0: इन पर जो पत्र प्राप्त होंगे उनको शामिल किया जाएगा और बुधवार और शनिवार को सिर्फ डाक के पत्रों को लिया जाएगा। तो ये आपकी पसंद के लिए है, ऐसा ही राजन जी मन भवन कार्यक्रम के लिए समाधान निकाला है
1: जो रात्रि में 10 से प्रसारित होता है।
0: बिल्कुल, हम इसमें सोमवार और गुरुवार को रात्रि में 10 जो पत्र लेते हैं वो सिर्फ डाक के लेंगे, मंगलवार को सिर्फ ईमेल पर रहेगा और बुधवार को सिर्फ सोशल मीडिया यानी फेसबुक व्हाट्सएप पर रहेगा। तो इस तरह से किसी तरह की असमंजस की स्थिति भी नहीं रहेगी और एक ही माध्यम से पत्र पढ़े जाएंगे तो आप सभी श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्र भी शामिल होंगे और सुविधाजनक भी होंगे। तो इस तरह से सभी श्रोताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते रहें और हमारे नियमित श्रोता तो हैं ही और इनकी समीक्षा देखिए प्रत्येक सप्ताह में हमें प्राप्त हो ही जाती है। धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रेश जी। और सर अगला ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता। आप लिखते हैं, नमस्कार, दिनांक 24 जून को सुबह 8:30 से 9 के मध्य संग्रहालय से अंतर्गत प्रख्यात लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी से कवि आलोचक निबंधकार और कहानीकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी के जीवन से जुड़े कई मूल्यवान संस्मरण सुनने का सौभाग्य हमारी प्रिय आकाशवाणी छतरपुर ने हमें दिया। कार्यक्रम सुनकर हमने मुक्तिबोध जी की एक सबसे प्रभावशाली कविता का मूल भाव सरल और सुगम शब्दों में समझ सके। कविता का नाम ब्रह्म राक्षस था जो कि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। यहीं पर परसाई जी ने मुक्तिबोध जी की कहानी ब्रह्म राक्षस का शिष्य का केंद्रीय भाव हम श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर दिया। भेंट वार्ता के अंतिम सोपान में उनकी एक विवादित पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति से जुड़ा संस्मरण हमें ये समझने में सक्षम रहा कि पुस्तक का विरोध करने वालों का संबंध किन से था और तीव्र विरोध होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे कार्यक्रम जहां एक ओर हमारे साहित्यिक ज्ञान को व्यापक करते हैं तो दूसरी तरफ हम महान साहित्यकारों की वास्तविक आवाज सुनकर धन्य हो जाते हैं। उम्मीद है आकाशवाणी छतरपुर हमें ऐसे ही उत्कृष्ट कार्यक्रमों को सुनवाती रहेगी जो आकाशवाणी के पास अनमोल धरोहर के रूप में संरक्षित है। ये कार्यक्रम चित्त प्रसन्न करने वाले होते हैं। धन्यवाद और आभार हमारी आकाशवाणी छतरपुर को। आगे आप लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम सुनकर हमें विविध जानकारी प्राप्त होती है, जैसे 16 जून को मणिपुर की अनूठी झील लोकटक झील का विस्तार पूर्वक जानकारी मिली। इस झील में तैरते हुए दीप और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहीं पर दुर्लभ प्रजाति का नाचने वाला हिरण सांगई पाया जाता है। 23 जून को उमंग के एक नए अंक में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में डॉक्टर विष्णु वाकणकर द्वारा खोजी गई भीम बैठका की गुफाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। कार्यक्रम के अनुप्रसारण हेतु आकाशवाणी छतरपुर का हृदय से आभार। 24 जून बुधवार रात्रि 10 से 10:30 तक अनुभवी चिकित्सक पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आर एस त्रिपाठी से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जीवन उपयोगी भेंट वार्ता का प्रसारण सुना। भेंट करता भाई राजेंद्र अहिरवार जी थे। बच्चों के विकास में दादा दादी और नाना नानी की कितनी अहम भूमिका होती है और फास्ट फूड का इस्तेमाल तथा मोबाइल देखने की बुरी आदत बच्चों को मानसिक रूप से उग्र प्रवृत्ति का बना देती है। डॉक्टर त्रिपाठी जी के अनुभवी विचार और सलाह निश्चित रूप से मानने योग्य लगी। ऐसे कार्यक्रम आकाशवाणी के लिए आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले और हम श्रोताओं के स्वास्थ्य हेतु जरूरी है। डॉक्टर त्रिपाठी, राजेंद्र अहिरवार जी और आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रबंधक श्री रविन्द्र कुमार प्रजापति जी का आभार और धन्यवाद। सवाल हमारे जवाब आपके के अंक 125 के विजेता के रूप में जब कंपियर्स ने हमारे पत्र को पढ़ा तो पत्र में लिखे पहले नाम को ही पढ़ा, ये अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी अपने पत्र की समाप्ति करते

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हर रविवार को पत्र प्राप्त हो ही जाता है। बहुदी कार्यक्रम के लिए देखिए आपकी इतनी रुचि कहे और आपके जो सुझाव, आपकी जो समीक्षा रहती है बहुत ही गंभीर और मनोयोग से लिखी हुई होती है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको देखिए हमारे यहाँ के संग्रहालय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित श्रद्धांजलि कार्यक्रम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं का स्मरण साहित्य और संस्कृति विषय चर्चा और डॉक्टर बीगड़ा वाचस्पति द्वारा स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी विशेष रूप से आपको देखिए पसंद आई है। इसी प्रकार अंजुरी भर का सुख, आज की परिचर्चा, हमारा स्वास्थ्य, ग्राम सभा, ये सभी आपको सारगर्भित टिप्पणियां लगी हैं। आपके पत्र की विषय वस्तु रहती है बहुत ही सारगर्भित रहती है जी। ऐसे ही सुझाव हम तक पहुंचाते रहें और समीक्षा लिखते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए। और राजेन जी देखिए एक बार पुनः याद दिला देते हैं जी, जो हमारे फरमाइशी कार्यक्रम है वो किस तरह से जाएंगे। जो हमारा सुबह 10 बजकर आपकी पसंद कार्यक्रम है सोमवार और गुरुवार को ईमेल पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर रहेगा
1: जी,
0: उस दिन अन्य माध्यम से पत्र शामिल नहीं होंगे,
1: केवल ईमेल के पत्र ही लिए जाएंगे
0: बिल्कुल। ऐसे ही हमारा जो मंगलवार और शुक्रवार को आपकी पसंद रहेगा उसमें सोशल मीडिया यानी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र लिए जाएंगे
1: जी।
0: और जो बुधवार और शनिवार का आपकी पसंद रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ डाक के पत्रों पर रहेगा। तो हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि सिर्फ ईमेल वाला पत्र और सोशल मीडिया वाला और डाक वाला कब जाना है। ऐसे ही हमारा मनभावन कार्यक्रम है, इसमें जो ईमेल वाले पत्र हैं वो मंगलवार को ही सिर्फ जाएंगे, यानी सिर्फ ईमेल वाला एक ही दिन है मनभावन कार्यक्रम। और सोशल मीडिया यानी फेसबुक व्हाट्सएप वाला सिर्फ बुधवार को जाएगा, और सोमवार और गुरुवार को रहेगा सिर्फ और सिर्फ डाक के पत्रों पर आधारित मनभावन कार्यक्रम।
1: तो सभी श्रोताओं की फरमाइशें बिल्कुल पूरी तरीके से शामिल होंगी और असमंजस की स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी।
0: अब श्रोता सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया फेसबुक पर हम कब लिखेंगे, तो इसके लिए आपको हमारा आकाशवाणी छतरपुर का फेसबुक पेज फॉलो करना है, वहां पर आपको सूचना मिल जाएगी। सिर्फ आपको कमेंट्स में अपना नाम पता फरमाइश लिखना है और वही आपके नाम पता पढ़े जाएंगे,
1: कार्यक्रम के दौरान ही लिख सकते हैं
0: बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: उम्मीद है हमारे श्रोता समझ गए होंगे और उन्हें आसानी होगी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो राजन जी, ये तो थे हमारे पास आज के लिए प्राप्त हुए पत्र
2: जी।
1: और जाने से पहले जैसा कि हम बताते हैं भवदीय कार्यक्रम में डाक का पता और ईमेल का पता
2: जी। श्रोता नोट करें, ईमेल का पता है bhavdiyachhatarpur@gmail.com bhavdiyachhatarpur@gmail.com। और डाक का पता बिल्कुल सरल है, भवदीय कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001।
1: तो सुनते रहें कार्यक्रम
2: भवदीय
1: आकाशवाणी
2: छतरपुर।

अभी आप सुन रहे थे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की थी। मीडियम वेब पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी।

0: की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार

अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपए का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ

436 रुपये हैं, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो

ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है।

इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं
और अपना रहे।

भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों,

आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदे। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले

0: तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हां, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: जी, आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतम वर्षस्य अर्धवर्षम् प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेऽपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र आईएनएस दूनागिरि, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमानन क्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि चत्वारिंशत् संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भर भारतस्य च संकल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO इत्येतेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इत्येतस्य प्रक्षेपास्त्रस्य सफलं परीक्षणं कृतम्। एतत् प्रक्षेपास्त्रं DRDO इत्येतस्य संघटनस्य प्रयोगशालाः अथ भारतीयोद्योग सहभागिनः मिलित्वा निर्मितवन्तः। अर्थात् साम्प्रतं समुद्रात् आकाशपर्यन्तम् अस्माकं भारतं समधिकं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। सखायः जून मासे एकम् अपरम् आयोजनम् अभवत् यस्मिन् सम्पूर्णं विश्वं भारतस्य प्रयासैः सह संलग्नम् अभवत्। अपि च एषः कार्यक्रमः आसीत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्मिन् वर्षे विश्वस्य 500+ संख्याकेषु स्थानेषु योगस्य अनेकाः विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। अस्माकं देशे कोटिसंख्याकाः जनाः विविधस्थानेषु योग कार्यक्रमेषु सहभागं कृतवन्तः।

0: एकः अपि बिन्दुः अस्माभिः रक्षणीयः। कैच द रेन इति अभियाने शैथिल्यं न कदापि आनेतव्यम्। अतः मम विशेषः आग्रहः अस्ति यत् वर्षाजलस्य बिन्दुं बिन्दुं संरक्षामः। बहुधन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 12 बजे हैं। ये समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, और आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। लिखने वाले हैं अनिल कवचाले, नेहा फणसे, सीमा, कमल, पूजा, सुषमा, स्मिता। इन्होंने ये चिट्ठी हमें लिख भेजी है गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये खत हमें लिख भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला नगमा ये रहा। गीत और बाकी की जानकारी इस नगमे के बाद।

अनजान की बोलों को अभी आपने सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार की। राजेश रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी और फिल्म का नाम था याराना। और आपकी फरमाइश में अब हम शामिल करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। अगली चिट्ठी आई है मनमोहन राजावत, जिन्होंने ये खत लिख भेजा है, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। साथ में है मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और इनका पूरा परिवार। ये गीत सुनना चाह रहे हैं बेटी फिल्म का। आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। शकील बदायूनी ने इस गीत को शब्द दिए हैं और धुन है सोनिक ओमी की।

और अब अगला नगमा आ रहा है हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, इन्होंने ये खत लिख भेजा है भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, इन दोस्तों ने सुनना चाहा है रफी साहब को। शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन बनाई है, हसरत जयपुरी ने शब्द दिए हैं, आवाज है रफी साहब की, जो हमने आपको बता ही दिया है। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

और अब अगला गीत आ रहा है हमारे इन सभी दोस्तों की पसंद का, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा और प्रभाकर।

जोंगले आरती जोंगले, इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है गौतमनगर जिला नांदेड़ से। इन दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया हुआ वो गीत जिसे शब्द दिए हैं आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं रफी साहब का गाया हुआ वो गीत जिसकी धुन बनाई है मदन मोहन ने, राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को शब्द दिए हैं दुल्हन एक रात की। इस फिल्म का ये गीत है और हम आपको ये बता ही चुके हैं कि इस गीत को आवाज दी है रफी साहब ने। आइए सुनते हैं।

रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार एवं पूरा माखीजा कुटुंब इस गीत को सुनना चाहता है, चाहते हैं, जो गीत हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, और औरंगाबाद से ये चिट्ठी आई है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और साक्षी राजेश की।

0: और इस गीत को सुनवाने के लिए कुछ और चिट्ठियां आई थी जिनमें शामिल हैं बत्ता परिवार लिखने वाले हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू और निहारिका, साथ में है वंश बत्ता, प्रवीण शिमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज शिमाली ने ये चिट्ठी लिख भेजी थी कंवर कॉलोनी बड़वाह से। और इन्हीं दोस्तों की इस फरमाइश के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न हुआ। आप सभी को शिवम का नमस्कार।
1: सुनो ना।
2: हाँ।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उसे

0: मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

ये समय है कार्यक्रम संग्रहालय से का। इसमें आप इन दिनों सुन रहे हैं श्रृंखला भुवन मोहिनी। आज उसकी 10वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है, आइए सुनते हैं।

0: अब तक धारावाहिक भुवन मोहिनी में आपने सुना निर्वासित नर्तकी भुवन मोहिनी को खोजते हुए राजकुमार विजय श्रवा इंद्रप्रस्थ पहुंचा, जहां राजा आदित्य सेन के यहां भुवन मोहिनी ने आश्रय लिया था। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से करना चाहते थे, परंतु चंद्रहासिनी के प्रति आकर्षण के बावजूद विजय श्रवा के मन में भुवन मोहिनी ही बसी थी। ये सब जानकर भी चंद्रहासिनी विवाह करने को तैयार थी। इसी बीच संपूर्ण खंड राज्यों के सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा के दरबार में विजय श्रवा ने हूण सेनापति के अपमानजनक पत्र को पढ़ा और आमात्य ऋषभ देव ने युद्ध के स्थान पर अपमानजनक संधि करने की वकालत की। भुवन मोहिनी ये न सुन सकी और उसने आमात्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। भुवन मोहिनी सुंदरता की देवी तो थी ही, अब वो राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक भी बन गई। हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। इन दोनों को सुखमय जीवन की शुभकामनाएं देकर भुवन मोहिनी दूर चली गई। 5 वर्ष बाद जब वो आई तो चंद्रहासिनी ने अपने कटु शब्दों से उसका अपमान किया। दंड स्वरूप विजय श्रवा ने उसे महल छोड़ने का आदेश दे दिया। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 10वीं कड़ी में।
1: मैं इस अंतापुर की संरक्षिका को आदेश देता हूँ कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतापुर का परित्याग कर दे।

बेटी, मेरा एकमात्र पुत्र ही आज भारत का सम्राट है। जब उसके पिता ने भुवन मोहिनी को निर्वासित किया था और मैंने भी पुत्र को अपमानित किया था, तब उसने राज सिंहासन और राजैश्वर्य का मोह छोड़कर भुवन मोहिनी के लिए सबसे नाता तोड़ लिया था। दूसरे भुवन मोहिनी ने स्वयं तुम्हारे लिए जो किया वो अन्य किसी स्त्री से आशा नहीं की जा सकती थी। अंत में स्वयं सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया था। आगे चलकर उसी भुवन मोहिनी ने अपने को नर्तकी के स्थान पर वीरांगना सिद्ध कर दिखाया। वो सहस्त्रों लक्षों भारतीय महिलाओं के सतीत्व को अक्षुण्य रखने के यश की भागनी बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने स्वयं तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का मार्ग खोल दिया था। बेटी, तुमसे अपराध हुआ है, किंतु चलो मैं सम्राट से तुम्हारे अपराधों की क्षमा याचना करूंगी। चलो। भारत के सम्राट

0: राजमाता,
1: आज तुम्हारी माता भी तुम्हारे सम्राट पद की महत्ता के समक्ष नतमस्तक। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी वृद्धा माता पुत्रवधु के होते हुए कष्ट झेले?
0: नहीं माँ, क्या मैंने कोई कष्ट दिया आपको?
1: नहीं मेरे पुत्र।
0: तो फिर
1: क्या कहूं, तुमने पुत्र वधु को निर्वासित किया है, मेरी गोद से मेरा पौत्र छीनना चाहा है, जो इस राज सिंहासन का श्रृंगार है। जानते हो, चंद्रहासिनी सर्वथा मेरी सेवा में तत्पर रही है। अपने पौत्र का मुख चुंबन करके मैंने वृद्धावस्था के कष्टों को भुलाने की चेष्टा की है। आज सम्राट का आदेश, मेरी गोद से मेरा पौत्र और मेरी दृष्टि से प्रेम की मूर्ति पुत्रवधु को छीन रहा है। विडंबना है कि वो आदेश देने वाला सम्राट मेरा ही हृदय पिंड है। मैं अब जीना नहीं चाहती। तुम्हारे पिता को भी इस प्रकार पौत्र और पुत्रवधु के वियोग के कारण अपार कष्ट झेलना पड़ेगा। मेरे लाल, मेरी आज्ञा है कि हम दोनों बूढ़ों के जीवन काल तक ना तो हमारी पुत्रवधु हमारी दृष्टि से बाहर होगी और ना ही मेरा फूल सा कोमल पौत्र ही हमारी गोद से छीना जाएगा।
0: अच्छा, ऐसा ही होगा माँ, किंतु मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।
1: क्या?
0: राजकुमारी चंद्रहासिनी मेरी दृष्टि के सम्मुख नहीं आएंगी।
1: क्या?
0: अब वो मेरे स्थान पर सत्ता और शक्ति की पुजारिणी बन चुकी हैं।
1: मेरी लाल, तुम मेरी दृष्टि के बाहर भारत के सम्राट हो, किंतु मेरे अपने घर में मेरे एकमात्र पुत्र, मेरे जीवन के एकमात्र सहारे हो। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ कि चंद्रहासिनी क्या मुख लेकर महाराजा आदित्य सेन के पास जाएगी? उसकी वहां पर आवश्यकता ही क्या है? उसके सर्वस्व तो तुम ही बन चुके हो मेरे पुत्र। लाख अपराध करने पर भी वो भारत सम्राट की साम्राज्ञी घोषित हो चुकी है। वो मृत्यु के पश्चात ही साम्राज्ञी पद से अपदस्थ होगी। पुत्र, तुमने एक दिन अग्नि, सूर्य, चंद्र और माता पिता तुल्य गुरुजनों के समक्ष अपनी प्रियतमा जीवन संगनी के रूप में चंद्रहासिनी को स्वीकार किया था, उसके बड़े बड़े अपराध क्षमा करने का वचन दान भी दिया था। आज उसके अधिकारों के संरक्षण की मैं दुहाई देती हूँ मेरे पुत्र। मेरे हृदय के टुकड़े इस कोमल फूल सी नारी को अपनी क्रोधाग्नि में झुलसने से बचा लो पुत्र।
2: नाथ, मेरे अपराध क्षमा हो। मैंने भुवन मोनी के द्वेष के कारण आपको भी अपमानित किया है। मुझे क्षमा करिए स्वामी, मुझे क्षमा करिए।
0: राजकुमारी, मेरे पाँव में गिरना तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरा परित्याग करो और जाओ सत्ता और शक्ति की पूजा करो। तुम पर स्वयं राजमाता प्रसन्न है, ऐसी अवस्था में मेरे आदेशों का क्या मूल्य है? माता की आज्ञा और आग्रह पर मैं अपने आदेशों को वापस लेता हूं। किंतु ध्यान रहे, अब हमारा तुम्हारा पार्थिव संबंध क्षीण भिन्न हो चुका है। मां, मैं एकांत चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने सूने राजमहल में एक रात और विश्राम कर लूं। यदि चंद्रहासिनी का रहना यहां अनिवार्य है तो मैं ही चला जाऊंगा। यह राज सिंहासन भी मेरा नहीं रहा अब, इस पर चंद्रहासिनी के पुत्र का अधिकार है। मैं सर्वस्व उस उत्तराधिकारी के लिए चंद्रहासिनी के संरक्षण में छोड़कर जाऊंगा। आज से मैं सम्राट नहीं, केवल चंद्रहासिनी साम्राज्ञी हैं। मैं राज सिंहासन के प्रति अपना कर्तव्य केवल उदासीन भाव से तब तक करता रहूंगा जब तक

0: कि चंद्रहासिनी का पुत्र योग्य नहीं बन जाता। इसके पश्चात मेरा जीवन उचित नहीं कि भारत की साम्राज्ञी मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य के चरणों में निरीह अबला की भांति पड़ी रहे। शक्ति और सत्ता की उपासिका अपना साम्राज्य संभालें।
1: ये तो और भी बुरा हुआ। हे प्रभु, मेरे पुत्र के ऐसे संकल्पों को शिथिल कर दो नाथ। मैं अपनी वृद्धावस्था दुखिया पुत्र वधु को देखते हुए नहीं बिताना चाहती। उठो पुत्री, ना चाहते हुए भी अब मुझे भुवन मोहिनी की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जो कार्य मैं नहीं कर सकी वो अवश्य कर लेगी।
2: एक राजकन्या और अपूर्व सुंदरी होकर भी मैं अपने पति पर उतना प्रभाव क्यों नहीं डाल सकी जितना इस भुवन मोहिनी ने डाल रखा है।

0: हे प्रभु, मुझसे ऐसा कोई काम मत कराना जिससे इस साम्राज्य का भविष्य धूमिल होता दिखाई पड़े। मैं क्या करूं कि सम्राट विजयश्रवा का हृदय भी शांत रहे और चंद्रहासिनी भी संतुष्ट रहे। देखती हूं कि राजमाता ने मुझे क्यों बुलाया है। कहीं सम्राट ने कोई अनिच्छित घटना तो नहीं घटा दी।
1: तुम ही बोलो भुवन मोहिनी, मैं बड़े असमंजस में पड़ गई हूं। यदि राजकुमार को मैं सम्राट के रूप में ना मानूं, तो भी समस्या का समाधान नहीं होता। वो सम्राट पद पर आसीन नहीं रहना चाहता। उसने समस्त शक्ति और सत्ता स्वेच्छा से त्याग कर राजप्रासाद से बाहर रहने की प्रतिज्ञा कर ली है। किंतु मैं सोचती हूं कि चंद्रहासिनी सत्ता और शक्ति को लेकर करेगी क्या? जिसकी प्रियता प्राप्त किए रहने पर सत्ता और शक्ति चंद्रहासिनी का चरण चुंबन करती, वो तो उससे पूर्णतः रुष्ट है। उसका आदेश है कि चंद्रहासिनी उसकी दृष्टि के सामने ना आए। पति के रूठे रहने पर सत्ता और शक्ति चंद्रहासिनी के जीवन को सुखी नहीं बना सकेंगी। ये तो वास्तव में चंद्रहासिनी का सौभाग्य था कि तुम्हारी कृपा के द्वारा वो राजकुमार की जीवन संगनी बनने का अधिकार प्राप्त कर सकी। किंतु चंद्रहासिनी यह अनुमान नहीं लगा सकी थी कि मेरे इकलौते राजकुमार के जीवन पर तुम्हारा कैसा प्रभाव है।
0: मैं निवेदन करती हूँ कि राजमाता अपने पवित्र मुख से मुझ नर्तकी के प्रभाव का यशोगान न करें। मैं सेवा में प्रस्तुत हूँ। मुझे आदेश प्राप्त होना चाहिए कि मुझे करना क्या होगा।
1: करना क्या होगा, यही तो विकट पहेली है जिसे मुझे नहीं तुम्हें सुलझाना होगा। जन्म जन्मांतरों के न जाने किन संचित पुण्यों ने सम्राट के हृदय सिंहासन पर तुम्हें प्रतिष्ठित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस कठिन समस्या को तुम्हें सुलझा सकती हो। देखो देखो इस बेचारी को, क्या यही दिन दिखाने के लिए महाराज आदित्य सेन ने मेरे बेटे के साथ इसका विवाह किया था?
2: मैं अपनी दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी को क्या कहूं। वास्तव में मैंने तुम्हारे प्रति जिस अकृतज्ञता पूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन किया है, उसी ने सम्राट को रुष्ट कर दिया है। मैं क्या कर सकती हूँ? यदि एक बार मुझ पर और दया करो तो मैं आज जन्म ऐसी भूल नहीं करूंगी।
0: साम्राज्ञी, सम्राट के निर्णयों को पलटने या परिवर्तन कराने की क्षमता मुझ में नहीं है। फिर भी आपकी ये दशा मैं नहीं देख सकती। राजमाता, मैं उनकी सेवा में उपस्थित होने जा रही हूँ। नहीं जानती कि मेरी उपस्थिति

0: शक्ति से रुष्ट होंगे या प्रसन्न, किंतु एकाध घड़ी पश्चात साम्राज्ञी वहां अवश्य पधारें।
1: मैं?
0: हाँ।
1: नहीं नहीं, मुझे उनकी दृष्टि के सम्मुख आने का आदेश नहीं है। वो संभवतः आज एकांतवास करेंगे और राजप्रासाद से कहीं दूर रहेंगे मेरे ही कारण।
0: कुछ भी हो साम्राज्ञी, वहां पर आप अवश्य आए।
1: लेकिन
2: ठीक ही तो है भुवन मोहिनी, मेरे रूठे राजकुमार को मना लेने की क्षमता रखती है पुत्री।
1: जो आज्ञा राजमाता।
0: देव, अपराध क्षमा हो। मैं ये जानते हुए भी कि अभी देव इस स्थल में एकाकी रहना चाहते थे, दुस्साहस पूर्वक चली आई हूं।
3: आओ भुवन मोहिनी, तुम्हें मेरे समीप आने में किसी क्षण कोई विचार नहीं लाना चाहिए। विजय श्रवा का एकांत जीवन तुम्हारी एकांत चिंतना का ही मंदिर है। तुम्हें मेरे समीप आने में किसी बाधा का अनुभव नहीं करना चाहिए।
0: नाथ, मैं एक तुच्छ नारी हूं। भारत सम्राट की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। फिर भी आज की बातें मुझे अधिक पीड़ित कर रही हैं।
3: क्यों?
0: इसलिए कि मैं ही वास्तव में चंद्रहासिनी के नारीत्व के अधिकार का अपहरण करती पाई गई हूं। यदि साम्राज्ञी को मुझ पर असाधारण क्रोध उत्पन्न भी हुआ था, तब भी देव को मेरा पक्ष लेकर उन्हें दंडित करना उचित नहीं था। संपूर्ण अपराधों की पृष्ठभूमि तो मैं ही हूं।
3: नहीं, विजय श्रवा तुम्हें अपमानित होते नहीं देख सकता। जब मेरे जीवन में चंद्रहासिनी का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी तुम्हारी प्रतिमा मेरे अंतःस्थल में प्रतिष्ठित थी। मैंने चंद्रहासिनी को छुपाकर तुमसे प्रेम नहीं किया। मैंने वैवाहिक संबंधों पर होने वाली चर्चा के समय ही सारी परिस्थिति स्पष्ट कर दी थी। चंद्रहासिनी स्वयं जब अपने पितृग्रह में थी, तभी उन्हें सभी बातें ज्ञात हो चुकी थीं। फिर भी आज साम्राज्ञी ने जो व्यवहार किया, उसका किसी न किसी रूप में दंड तो भोगना ही पड़ेगा।
0: यदि एक बार पुनः सम्राट मेरी स्थिति पर विचार कर साम्राज्ञी को क्षमा कर दे, तो मैं कलंक भाजन बनने से बच जाऊंगी। अन्यथा मुझे विचार करना पड़ेगा कि मेरे जीवित रहने की आवश्यकता है भी या नहीं।
3: ये क्या बात हुई? चंद्रहासिनी को पश्चाताप होना चाहिए, न कि तुम्हें। आओ प्रिय, ये बातें यहीं छोड़ें। अब अपने और मेरे बीच चंद्रहासिनी का प्रश्न ना खड़ा करो। मैं एक बार तुम्हारे प्रेम मंदिर में आत्मविस्मृत होकर जीवन को पुरस्कृत करना चाहता हूं। जीवन के प्रत्येक बहुमूल्य क्षण केवल आत्मदाह की नारकी यंत्रणा में छटपटाने के लिए नहीं व्यतीत हो रहे हैं।
0: आह स्वामी, सचमुच में आपके जीवन में एक छलना मात्र सिद्ध हो रही हूं। आज कितने वर्षों से मेरे प्रियतम आह्वान करते आए हैं कि वो मिलन की एक पुलक भरी घड़ी बिता लें, किंतु न जाने मैं आज तक क्यों प्रियतम के मिलन से भय खाती रही। जिनके चरणों में कभी समर्पित हो चुकी थी।
3: क्या सोचने लगी?
0: मेरी प्रियतम सम्राट, न जाने विधि विधान के किन कुअंकों में जन्म जन्मांतर का अभिशाप छिपा था कि मैं आग के दहकते हुए गोले की भांति अपना हृदय पिंड भस्म करती रही। फिर भी संभवतः अभी वो दिन कुछ दूर है जब जलन का अंतिम क्षण समाप्त होकर चिर शांति प्रदान करेगा।
3: ये चिर शांति तुम्हारे लिए व्यंग सिद्ध होगी भुवन मोहिनी। मैं कटुभाषी भले हूं, किंतु असत्य नहीं कह रहा।
0: जानती हूं सम्राट, किंतु चंद्रहासिनी की आकांक्षाओं के नंदन कानन में आग की लपटें क्यों जलाऊं?

0: जैसे चंद्रहास ने तुम्हारा संसार नष्ट किया, चाहो तो तुम भी वही कर सकती हो।
1: तब मुझ जैसी तुच्छ नारी और चंद्रहासनी के बीच अंतर ही क्या रह जाएगा?
0: आवश्यकता ही क्या है ऐसे अंतर को स्थापित रखने की?
1: चंद्रहासनी के स्वत्वों की सुरक्षा ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझ जैसी नारकीय यंत्रणा भोगने वाली नारियां लक्ष लक्ष मिलकर भी चंद्रहासनी जैसी निर्मल और निष्कलंक रमणी की तुलना नहीं कर सकती। एक बार सम्राट मेरे निवेदन पर पुनः विचार करें, चंद्रहासनी को क्षमा द्वारा अभय प्रदान करें और उनकी सेवाओं को ग्रहण कर उनके नारित्व को सफल और धन्य हो लेने दे।
0: यही तो कांटा है भुवन मोहिनी, क्या मेरी बातों को साधारण मनुष्यों की भांति नहीं समझ सकती? क्या मुझे ये अधिकार नहीं कि जो मेरा तिरस्कार करे उसका तिरस्कार मैं भी कर सकूं?
1: नहीं सम्राट, जैसे को तैसा व्यवहार करना महान पुरुषों के लक्षण नहीं। जो बड़े हैं, पूज्य हैं, वे सर्वदा क्षमादान द्वारा अपनी आत्मा का महान उपकार करते हैं, किंतु जो छोटे हैं वो अपराध करने की प्रवृत्ति से बाध्य रहते हैं। मेरे सम्राट, मैं आपके चरणों में गिरकर निवेदन करती हूं कि एक बार मेरे निवेदन के प्रति सदैव बनकर साम्राज्ञी को अवश्य क्षमा करें।
0: उठो भुवन मोहिनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम निरापराध हो, मेरे चरणों में गिरकर मुझे ही अपराधी बना रही हो। तुम्हें अब चंद्रहासनी से क्या प्रयोजन है? अभी आज के व्यवहार को क्या तुम भूल गई?
1: नहीं मेरे सम्राट, भूली नहीं हूं, किंतु अप्रसन्न भी नहीं हूं। मैं उसी व्यवहार की योग्य थी, आज तो मैं कभी भी चंद्रहासिनी पर रुष्ट ना होऊंगी। सम्राट।
0: ओ, आइए साम्राज्ञी, देखिए इसे देखिए, जिसे पग पग पर आप ठुकराती रही हैं, वही आपके पक्ष में मुझसे निवेदन किए जा रही है। भुवन मोहिनी उठो, विजय श्रवा तुम्हारे आंसुओं को देखने का अभ्यस्त नहीं है। जाओ, मैंने सारी बातें मान ली, किंतु ध्यान रहे साम्राज्ञी अब अधिक कष्ट न उठाएं, आनंद पूर्वक अपने राज प्रासाद में ही रहें।
1: और सम्राट?
0: अब मैं सम्राट नहीं हूं साम्राज्ञी, मुझे सम्राट कहके उस महान पद को अपमानित न करें।
2: क्या मुझसे इतना भयानक अपराध बन पड़ा है जो क्षमा नहीं किया जा सकता? क्या मैं उन दिनों की स्नेह को भूल सकती हूँ जब मुझे सम्राट के नेत्रों की पुतली होने का गर्व हुआ करता था? क्या मुझे दर्शन देना भी पाप होगा? सम्राट, मेरे लिए सारे सुख त्याग कर मुझे क्यों नरक गामनी बना रहे हैं? मैं आपके युगल चरणों की सेवा पर त्याग करने के पश्चात सत्ता और शक्ति द्वारा अपने को सजाकर क्या पाऊंगी मेरे सर्वस्व?
0: अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, परंतु याद रहे तुम्हारे कारण नहीं अपितु इन देवी के आंसुओं के कारण।
2: तुम भी मुझे क्षमा कर दो बहन, अब मुझसे ऐसा अपराध नहीं होगा।
1: साम्राज्ञी, आप सर्वदा मेरे अपराधों को क्षमा करती रहीं, मुझसे क्षमा याचना करना ही अपराध है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं सम्राट। बहन चंद्रहासनी के इन कोमल हाथों को थामिए, इनका कभी परित्याग मत करिएगा। देव, अब मैं शांतिपूर्वक अपने काम में पुनः लग सकती हूं ना? विदा सम्राट, विदा साम्राज्ञी, विदा। भुवन मोहिनी, तेरा जीवन तो उस कटी पतंग की तरह हो चुका है जो नियति के झोंकों को झेलती हुई इधर उधर

और लहराती रहती है। सम्राट को क्या मालूम कि मैं मात्र उनके और चंद्रहासिनी के मध्य आने से बचने के लिए भ्रमण तीर्थाटन आदि कार्यों में अनवरत संलग्न रहती हूं। निराधार निरुद्देश्य 5 वर्ष बीत गए। इन 5 वर्षों के भीतर सम्राट मुझे अब विस्मरित कर चुके होंगे। चंद्रहासिनी अपने पति को अपने वश में कर चुकी होंगी। यदि ऐसा हो चुका होगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी और स्थिर होकर धारा नगरी में ही अनासक्त भाव से रहने का प्रयास करूंगी। अब मैं थक चुकी हूं इस भटकन से, मुझे विश्राम चाहिए, विश्राम।

0: संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने भुवन मोहिनी की 10वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 12:58 होने को हैं। आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया और इस प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंट बनाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़े हैं। इस तरह से सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों ने तेल की बचत करने और कार पूल करने की उनकी अपील को पुरजोर समर्थन दिया है। जो लोग एक ही दिशा में अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ साथ जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाया करती हैं। सेशल्स की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हारमनी के साथ सेशल्स के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का दौरा किया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी SCRB द्वारा IECJS विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया और गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है। वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 1:01 हैं।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। पेड़ लगाएंगे हम तभी बचेंगे हम। बहनों, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संदेश है। विशेष रूप से वन महोत्सव सप्ताह जो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। बहनों, पेड़ प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। वे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वायु को शुद्ध बनाते हैं। वे वर्षा लाने में सहायक होते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। बहनों, आज दुनिया सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रही है, वह है पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण और वनों की अंधाधुंध कटाई ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, भीषण गर्मी और अनेक प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। यदि हम समय रहते नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरियाली देखने को भी नहीं मिलेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम केवल पेड़ों के महत्व को समझे ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करें। बहनों, वन महोत्सव सप्ताह का उद्देश्य लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस सप्ताह के दौरान देश भर में लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है। उनकी नियमित देखभाल करना, उन्हें पानी देना, सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें बड़ा होने तक संरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जन्मदिन, राष्ट्रीय पर्वों, पारिवारिक उत्सवों तथा अन्य विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष केवल एक भी पेड़ लगाता है और उसकी देखभाल करे तो हमारा देश पुनः हरा भरा बन सकता है। महापुरुषों ने कहा है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। यह कथन वृक्षों के महत्व को स्पष्ट करता है। पेड़ केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाते हैं। वे मानव जीवन के सच्चे मित्र हैं, इसलिए हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। आइए वन महोत्सव सप्ताह के इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे, वनों की कटाई का विरोध करेंगे, पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। हर आंगन में पेड़ लगाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। पेड़ बचेंगे, वन बचेंगे, तभी सुरक्षित हम रहेंगे। पेड़ लगाएंगे हम, तभी बचेंगे हम।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं धरती पर ईश्वर का दूसरा नाम डॉक्टर, इनका सम्मान करें के विषय में। बहनों, यह विषय केवल एक कथन नहीं बल्कि मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टरों के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। बहनों, हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिन उन सभी चिकित्सकों को समर्पित है जो दिन रात मानव जीवन की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। डॉक्टर केवल एक पेशा नहीं है बल्कि सेवा, त्याग, करुणा और समर्पण का दूसरा नाम है। जब कोई व्यक्ति बीमारी, दर्द या संकट से घिर जाता है तब उसके परिवार की सबसे बड़ी आशा एक डॉक्टर ही होता है। जिस प्रकार ईश्वर हमें जीवन देता है उसी प्रकार डॉक्टर उस जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता है कि धरती पर ईश्वर का दूसरा नाम डॉक्टर है। एक डॉक्टर वर्षों तक कठिन अध्ययन, प्रशिक्षण और अथक परिश्रम करता है। वह अपनी व्यक्तिगत खुशियों और आराम को पीछे छोड़कर मरीजों की सेवा में लगा रहता है, चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, त्योहार हो या अवकाश। डॉक्टर सदैव अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहते हैं। हमने यह समर्पण विशेष रूप से कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा। जब पूरी दुनिया भय और अनिश्चितता से जूझ रही थी तब डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों लोगों की सेवा की। अनेक डॉक्टर स्वयं संक्रमित हुए, कई ने अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए, लेकिन उन्होंने मानवता की रक्षा का संकल्प नहीं छोड़ा। उनका यह योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। बहनों, डॉक्टर केवल दवाइयां ही नहीं देते बल्कि मरीज को आशा, आत्मविश्वास और जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। उनकी एक मुस्कान, उनका एक सकारात्मक शब्द और उनका संवेदनशील व्यवहार मरीज के मनोबल को बढ़ा देता है। यही कारण है कि समाज में डॉक्टरों का स्थान अत्यंत सम्माननीय माना जाता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि डॉक्टर भी इंसान हैं, वे भी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें, उनके प्रति विश्वास रखें और उनके कार्यों की सराहना करें। किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें संयम बनाए रखना चाहिए और चिकित्सा कर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बहनों, डॉक्टर्स डे हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम उन सभी डॉक्टरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से अनगिनत जीवनों को बचाया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ समाज के निर्माण में डॉक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो दर्द को समझे, जो जीवन को बचाए।

जो हर संकट में उम्मीद बनाए वही सच्चा मानवता का रखवाला है। धरती पर डॉक्टर ही ईश्वर का दूसरा नाम कहलाता है। बहनों, जब बात डॉक्टर्स की चल ही रही

0: हमने सोच रखा है आज हम बहनों की तरफ से आपसे
1: जी बिल्कुल
0: करेंगे।
1: बिल्कुल
0: और सबसे पहला प्रश्न तो यही है, बहनों का सबसे प्रिय विषय होता है अपनी सुंदरता। ऐसा क्या करें हमारी बहनें खासकर जो उनकी सुंदरता में और निखार आए और वो दिन ब दिन बढ़े बनी रहे।
1: जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आंख होना, अपनी टेंशन जो है वो एक तरफ रखेंगे, अच्छी हेल्दी लाइफ रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे चेहरे पे निखार आएगा। तो उसके लिए हमें हेल्दी माइंड होना बहुत जरूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है वो होता है वाटर इंटेक। हमें पर डे एटलीस्ट 2 to 3 liters पर डे पानी का इंटेक रखना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर अच्छा हम पानी का क्वांटिटी अच्छा रखते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं वो हमारी किडनी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा पानी इंटेक अच्छा होगा, स्वेटिंग अच्छी होगी, तो उसके थ्रू भी जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर आएंगे। तो पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, माइंड अच्छा होना चाहिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना। अगर हम टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, उससे भी हमारी स्किन पे अच्छा ग्लो आता है। आजकल मोबाइल के टाइम में लोग, फीमेल्स को भी आजकल मोबाइल्स का बहुत हैबिट हो गया है कि रात में मोबाइल से लेट सो रहे हैं, इससे उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। फिर वो पिंपल्स के लिए स्किन ट्रीटमेंट लेना है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहीं मोबाइल से देख लिया वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से और हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है, पर डे 10 मिनट या 15 मिनट हमको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज पे भी देना है, योगा पे देना है। इन सब चीजों से अगर हम करते हैं तो हमारी स्किन पे काफी चेंजेस आते
0: बहुत ही
1: हैं।
0: आपने इतनी अच्छी तरह बहनों को सभी कुछ बता दिया, हमारी बहनों को जरूर अच्छा लगा होगा ये। अब हम ये जानना चाहेंगे शिखा जी, मैं चाहती हूँ हम जो आज बातचीत कर रहे हैं हमारी हर एज ग्रुप की जो बहनें हैं वो सुन रही हैं, तो सभी को लाभ हो, सभी की जो भी समस्याएं हैं वो उसके बारे में उनका निदान हो जाए। हम बात करेंगे एज ग्रुप के बारे में जो हमारी महिलाएं हैं जो शादी अभी नहीं हुई है और उनकी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो कई बार मन में उनके कई तरह की भ्रांतियां भी होती हैं चीजों को लेके। तो आप इस तरह की सिचुएशन में किस तरह की मानसिकता उन लोगों की होती है?
1: देखिए, जब लड़की की शादी होने वाली होती है वो जो स्टेज होती है, वो जो फेज आती है, वो होती है हमारी एडोलेसेंट एज ग्रुप। इस ग्रुप में क्या होता है, लड़कियों की शादियां होनी है, हार्मोन्स भी काफी चेंजेस हो रखे होते हैं, तो जिस वजह से स्ट्रेस होने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं, इरेगुलर साइकिल्स आने लगती हैं। तो आपके पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है उसमें अगर अप टू 7 डेज का वेरिएशन है तो उसको हम बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, वो हम वैसे ही नॉर्मल मेडिटेशन से, इन सब चीजों से हम उसको ठीक कर सकते हैं। आपकी शादी जैसे प्लान होने वाली है तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे HIV है, थैलेसीमिया है, ये कुछ ब्लड टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है जिनको आपको अपना शादी करने से पहले कराना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता होगा आपके पार्टनर में भी ये सब चीजें पॉजिटिव हैं, आप अपने पार्टनर का भी करा सकते हैं, तो जिसके करवाने से आपका जो शादी के बाद की जो लाइफ है वो आप और स्मूथली रन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो हमारी ये बहनें समझ गई, अब हम ये बात जरूर समझ गई हैं वो कि उनको क्या कुछ इस समय इस फेज में कर लेना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए शादी के बाद उनको बेबी प्लान करना है, तो बेबी प्लान करने के लिए भी कई तरह की उनको समस्याएं भी आती हैं या कई तरह की प्रॉब्लम्स भी वहां एक कपल को फेस करनी पड़ सकती है, तो किस तरह की समस्याएं आप अक्सर देखती हैं कि कपल के बीच आती हैं?
1: जब शादी होती है, शादी के बाद कई तरह के न्यूली मैरिड कपल्स को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम।

0: है, कह लो एक ये टेंडेंसी हो गई है, कई कपल्स में देखते हैं खासकर यंग जनरेशन में कि ये बेबी नहीं करना है, यानी बच्चे पैदा ना करने की टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में आजकल देखने को मिल रही है। यानी वो अपनी इनकम को तो अच्छा खासा डबल करना चाहते हैं, तो उसके साथ वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो बेबी का ये कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो लेना नहीं चाहते हैं। तो इससे हमारी समाज की दशा और दिशा आगे जाके होगी वो तो होगी ही, साथ साथ इससे जो हमारी महिला है उसके स्वास्थ्य पर आगे जाकर क्या असर पड़ सकता है।
1: ये आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया, क्योंकि आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि लड़कियों की शादी भी लेट होती है, फिर वो प्लान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, जो एक ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो हमारे इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन फीमेल का कैंसर है, उसका भी मोस्ट कॉमन कारण है वो यही है कि लेट मैरिज और मैरिज के बाद बच्चे प्लान नहीं करना। तो ये तो हमको अगर फीमेल बनाया है तो बच्चे तो फीमेल ने करने तो है ही, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये फीमेल का खुद की बॉडी के लिए भी उसके लिए बहुत एडवांटेजियस होता है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। आप अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, फिर आपने ये प्रेगनेंसी बाद में प्लान की, अगर आपने ये प्रेगनेंसी बाद में प्लान की तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम 35 की एज के बाद होता है, इसकी वजह से आपके बच्चों को सफर होगा, तो जिसकी कॉम्प्लिकेशंस आपको भी झेलनी पड़ेंगी। एंड्रोमेट्रोसिस, ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो उन फीमेल्स को होती हैं जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है तो उसने जो जो चीजें दी हैं तो वो करना भी जरूरी है। यानी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है हमको, प्रकृति के अगर साथ रहेंगी तो हम महिलाओं का स्वास्थ्य और सुंदरता सब कुछ बरकरार रहेगी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी लेडी का बेबी होता है, अब बेबी होने के बाद में जब हमारा बेबी होता है तो घर परिवार में सभी लोग अच्छा ख्याल रखते हैं और बेबी के स्वास्थ्य की सब लोग बहुत चिंता करते हैं कि बेबी को ये देना है, वो देना है, वो नहीं देना है, लेकिन महिला के स्वास्थ्य के बारे में अक्सर कोई बहुत ज्यादा विचार या बातचीत नहीं की जाती है। तो महिला अपना स्वयं का ख्याल अच्छे से रख सके तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा?
1: मैं फीमेल्स को बोलूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी डाइट में प्रोटीन इनटेक। यूजुअली हम लोग खाना खाते हैं उसमें अगर हम देखें, स्पेशली जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, तो उनको अपनी डाइट में प्रोटीन का इनटेक अच्छा रखना चाहिए, जिसके लिए पनीर है, टोफू है और बाकी दूध है, चना है, दालें हैं, ये सारी चीजें अगर आप लेंगे तो आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा होगा। प्रोटीन की कमी की वजह से चिड़चिड़ापन आना, काम में मन नहीं लगना, आजकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद 30 की फीमेल्स अगर हो गई हैं तो उनको अपनी डाइट में कैल्शियम बढ़ाना है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें का भी हमको ध्यान रखना है
0: जी। और इसके बाद में जैसे जैसे हम महिलाओं की एज बढ़ती जाती है, जीवन की आपाधापी में भाग दौड़ में लगी रहती है, और इस बीच क्या होता है अपना स्वास्थ्य ही कहीं पीछे छूटने लगता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, 40 क्रॉस करते करते तक मेनोपॉज के पास पहुंचते पहुंचते तक इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसका क्या बचाव, क्या किया जा सकता है उसके लिए?
1: ये जो फेज होती है प्री मेनोपॉज फेज होती है, ये हमारी 45 तक चलती है, 45-46 के बाद हमारी मेनोपॉज की फेज शुरू हो जाती है। तो बहुत सी महिलाएं हैं जिनको इस फेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ महिलाएं हैं जिनको बहुत ज्यादा होती है, जैसे हॉट फ्लशेज होना, एकदम बैठे हुए हैं, बहुत तेज गर्मी लगेगी कि हमें हवा में कहीं निकलना है, खुद की धड़कनें सुनाई देना जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं, किसी किसी को बीपी आना शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये सारी प्रॉब्लम जो है हमारी प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज की फेज में आती है। इसके लिए भी हमको क्या करना है, योगा, मेडिटेशन, डाइट में हमारा कैल्शियम का इनटेक हमको इंक्रीज करना है, इन सब चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना है।
0: कभी ये सिम्टम्स जो होते हैं, कभी लोग घर में ये भी समझते हैं कि ये सिम्टम मेनोपॉज की वजह से भी हो सकते हैं, प्री मेनोपॉज की वजह से, और ये सच में भी किसी बीमारी के भी सिम्टम हो सकते हैं, तो इसके लिए कब स्थिति आए कि हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: जब आपको लगे कि आपका ये जो हॉट फ्लशेज है, पाल्पिटेशन है, ये आपको लगता है कि आपका मेनोपॉज के बाद 2-3-4-6 महीने तक इतना है कि आप इसको बियर कर पा रहे हैं, आपने पानी का इनटेक बढ़ाया, आपने डाइट में चेंजेस किया, प्रोटीन बढ़ाया, आपको लगता है कि ठीक है, तो आप इसको अपने घर पर रहकर भी ठीक कर सकते हैं, बट आपको लगता है कि ये प्रोलॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपकी जो डेली की जो एक्टिविटीज हैं, जो वर्क है, आप उसको नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके लिए इसका जो रीजन है वो है हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो अगर ये हमारे नॉर्मल डाइट से या इन सब चीजों से इंप्रूव नहीं हो रहा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल से, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, जिसके लिए बाजार में हमारे पास मेडिसिन भी होती हैं, वो स्टार्ट करके इन सब चीजों को कुछ समय के लिए हम इनको कम कर सकते हैं।
0: इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसको?
1: ये अपने आप जैसे जैसे हमारी बॉडी में जैसे ये चेंजेस हैं, ये कुछ साल के लिए रहते हैं, 1 or 2 years के लिए, इसके बाद ये अपने आप सबसाइड हो जाते हैं और हमारी लाइफ होती है वो नॉर्मल की तरह आ जाती है।
0: अच्छा, कब मानना चाहिए डॉक्टर के मेनोपॉज हो चुका है?
1: इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे, FSH करके एक ब्लड टेस्ट होता है।

0: उसकी वैल्यू हमारे पास, हम अगर हमारी वैल्यू उसकी बड़ी हुई है तो हम ये मान के चलते हैं कि अब मेनोपॉज हो गया है।
1: अच्छा, मेनोपॉज के दौरान कई एक समस्या और आती है, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को बहुत ब्लीडिंग होती है महावारी के दौरान, उनको बहुत
0: जी
1: परेशानी होती है, बहुत पेन भी होता है, और किसी किसी को देखने को आता है कि ये चीज बहुत कम हो जाती है, तो क्या ज्यादा ब्लीडिंग आना भी नॉर्मल है किसी
0: मैंने
1: किसी
0: आपको
1: में?
0: बताया जैसे कि अप टू 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर तक हम वॉच कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि जो नॉर्मल जो पैटर्न होता है पीरियड्स का वो ये होता है कि 3 मंथ्स तक मेंसेस नहीं आएंगे, अब चूंकि 3 मंथ्स तक नहीं आए हैं तो जो आए हैं वो हैवी आएंगे, तो अगर इस तरह का पैटर्न आपका चल रहा है 4, 5, 6 मंथ तक, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, एनीमिया के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट आपको लगता है बहुत ज्यादा है, बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि प्री मेनोपॉजल जो ये कंडीशन होती है इसमें आपको अगर लगता है तो आपको गायने के पास जाना है। हम अल्ट्रासाउंड करा के ये देख सकते हैं कि हम सोच रहे हैं कि ये हमारे प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स है, और पता चला बच्चेदानी में गठान है, बच्चेदानी की झिल्ली बड़ी हुई है, तो ये सब चीजें इग्नोर ना हो तो बेटर तो यही रहेगा कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली जाइए। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड होगा जिससे आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हमारा जो सब कुछ चल रहा है बॉडी में ठीक है, वो तो आपको
1: बिल्कुल।
0: जाना ही चाहिए एक बार
1: तो
0: गायने के
1: बहनों को
0: पास।
1: हम तो यही सलाह देना चाहेंगे, और डॉक्टर भी यही कह रही हैं कि अपने जो भी सिम्टम्स हों उनको, या बॉडी में जो भी चीजें हो रही होती हैं उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि क्या होता है इग्नोर करती ही हैं महिलाएं अक्सर, क्या होता है कि टालने की प्रवृत्ति हो जाती है कि ये
0: जी
1: चीज हो रही है, अरे होने दो, फिर वो सहन, जब तक सहन कर सकती तब तक करती हैं, जब बहुत असहनीय होता तब जाती हैं, और जबकि होना क्या चाहिए कि थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि अगर
0: जी
1: जल्दी
0: जी
1: जाने से
0: जी
1: क्या होता है, जैसे कोई भी बड़ी बीमारी अगर है समय पे अगर वो पता चल जाती है तो उसका फिर उपचार होना संभव
0: स्पेशली
1: है।
0: वो फीमेल्स जिनकी हेल्थ बहुत ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको अगर पीरियड्स के समय पर ये समस्याएं ज्यादा हो रही हैं कि मेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी वाली जो पेशेंट होते हैं इनको बच्चेदानी का कैंसर होने के चांसेस नॉर्मल महिलाओं से ज्यादा होते
1: जी,
0: हैं, तो इनको अपनी जांच तो अवश्य रूप से करवानी चाहिए।
1: और जांच तो अगर ऐसा, इन जांच की अगर बात करें हम महिलाओं को, नॉर्मली एक नॉर्मल महिला को जो स्वस्थ भी है, क्या उनको भी नियमित जांच करानी चाहिए?
0: डेफिनेटली मैं तो यही बोलूंगी कि हमारा ये एक, जैसे हमारा बर्थडे आता है हम प्लान कर लें कि हम साल में एक बार, हमारी 30 की एज हुई है, साल में एक बार हमारे बर्थडे के दिन बजाय हम इधर उधर जाने के, अपना पैसा वेस्ट करने के, सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन एक अल्ट्रासाउंड बेसिक करवा लेंगे 30 की एज के बाद, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ हमारी बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है।
1: जी
0: काफी सारी बीमारियां ऐसी जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, वो केवल जांचों से ही पता चल सकता है कि कोई बीमारी है या नहीं,
1: बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं,
0: ना
1: प्रॉब्लम्स
0: नहीं
1: हैं
0: आ रहे
1: तभी
0: हैं तो
1: जाना
0: कोई
1: है,
0: बीमारी नहीं होगी।
1: जी तभी
0: कुछ
1: भी जाना है जब
0: बीमारियां
1: आप
0: ऐसी है जो
1: स्वस्थ हैं।
0: बहुत लास्ट स्टेज पे पता चलते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर है, वो तभी पता चलता है जब वो स्टेज 4 में आ गया है,
1: जी
0: तो डेफिनेटली अगर हम टाइम से जाएंगे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो हम उसको टाइम से ट्रीट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: जी
1: डॉक्टर, अब हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमने बात की महावारी की भी की और मेनोपॉज की, मेनोपॉजल में प्री मेनोपॉज की तो अक्सर बात करते हैं, पोस्ट मेनोपॉज खासकर 55 के बाद में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं को, तो उसके लिए आप क्या
0: जैसे
1: बताएंगी?
0: पोस्ट मेनोपॉजल में जो बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलती है वो होती है वजाइनल ड्राइनेस। पेशेंट बोलता है कि उसको वजाइना में इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, तो इसके लिए भी मैं बोलूंगी वाटर इनटेक बढ़ाएं, ज्यादा हो रहा है तो आप गायने को जरूर दिखाएं, जैसे कि हम जांच करा के ये देख सकते हैं कि अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है।
1: तो हमने आज बहुत सारी विस्तार से बहनों के बारे में बात की, और मुझे लगता है मैंने अपनी बहनों की तरफ से, अपनी तरफ से लगभग सभी बातें पूछी, और हमारी जो सुनने वाली बहनें बहुत लाभ उठाएंगी। और डॉक्टर शिखा जैन, आज आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू प्रतिज्ञा जी, थैंक यू सो मच।
2: बहनों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता जिसका विषय था महिला की बात महिला डॉक्टर के साथ। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर शिखा जैन, जिनसे भेंट कर रही थी श्रीमती प्रतिज्ञा देवेंद्र स्वामी। बहनों, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो चलिए आज खाना खजाना में बनाते हैं बच्चों के टिफिन के लिए कुछ स्वादिष्ट, पौष्टिक और आसानी से बनने वाली रेसिपी। सबसे पहले हम बनाते हैं वेजिटेबल चीला रोल। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, बारीक कटी सब्जियां जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, यहाँ पर हमने शिमला मिर्च और प्याज लिया है, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 चुटकी, अजवाइन 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1/4 चम्मच, काली मिर्च स्वाद अनुसार, बारीक कटा हरा धनिया। बेसन में सभी सब्जियां मिलाएं और पानी डालकर घोल तैयार करें। तवे पर पतला सा चीला बनाएं और इसे धीमी आंच पर उलट पलट कर सेक लें। आप चाहें तो तेल लगाएं या फिर घी। हल्का ठंडा होने पर रोल बनाएं और सॉस के साथ टिफिन में रखकर सर्व करें। बहनों, आजकल बच्चों की फेवरेट है चीज, तो चलिए बनाते हैं चीज कॉर्न सैंडविच। इसके लिए हमें

0: चाहिए आधा कटोरी स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च आधी बारीक कटी हुई, एक प्याज बारीक कटा हुआ, चीज स्लाइस दो, आधा चम्मच पिज्जा सीजनिंग, चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स, बारीक कटा धनिया, चौथाई चम्मच ऑरिगेनो। एक बर्तन में स्वीट कॉर्न को उबालकर ले लें। इसमें प्याज, शिमला मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया मिला दें। अब सभी मसाले मिलाएं और आधा चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर चीज भी मिला दें। अब इन सभी को हमें ब्रेड के स्लाइस पर फैलाकर ऊपर से एक बर्तन से ढककर धीमी आंच पर इसको, जब तक चीज मेल्ट हो रहा है तो हमें इसको रोस्ट करना है।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

शिवपुरी केंद्र से हमें प्राप्त हुआ है और कलाकार हैं पुरुषोत्तम तिवारी। इनसे आप सुनेंगे कुछ लोक रचनाएं। कार्यक्रम का आरंभ इस निर्गुण भक्ति रचना से।

पुरुषोत्तम तिवारी के स्वर में अभी आप सुन रहे हैं ये लोक भजन, और इस लोक भजन के बाद आप सुनेंगे देवी गीत। कलाकार एक बार पुनः पुरुषोत्तम तिवारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने पुरुषोत्तम तिवारी के गाए हुए कुछ भजनों और लोकगीतों का आनंद लिया। अभी ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से हमें प्राप्त हुआ था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:45 हुए हैं। ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में भी आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति। कलाकार हैं नरेंद्र शर्मा। इनसे सुनिए कार्यक्रम की ये पहली भेंट। ये भजन है डॉक्टर उपेंद्र विश्वास का लिखा हुआ।

0: और इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम हमें आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्राप्त हुआ था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:57 हुए हैं हम अभी हाजिर हुए इस अंतराल के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दो बज चुके हैं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा। ये रहा

बी पार्क को अभी इस वक्त आपने सुना, इसका एफोर्स फिल्म का नाम था। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था, तनिष्क बागची ने संगीत तैयार किया था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: शावा फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म हुआ। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:10 होने जा रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया है और इस प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंट बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाया करती हैं, जिससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा हुआ करती है।
2: गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले अभी से सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है कि आपके घर या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से

0: बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइने के बीच इस समय द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइने की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बैतूल जिले के कुकरू में स्थानीय ग्रामीणों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा को संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान किया करता है। डॉक्टर यादव ने एक अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बैतूल में बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाकर उनके स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के संकल्प को सशक्त किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस जल्दी जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम की जाएगी, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। इन संशोधनों से कारोबार सुगमता बढ़ेगी और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरण समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर 3 बजे भोपाल से प्रदेश स्तरीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करेंगे। 28 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में 5 साल तक के लगभग 1,07,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश भर में अब धीरे धीरे बारिश का दौर प्रारंभ हो चुका है। राजधानी भोपाल में कल रात गरज चमक के साथ बारिश हुई। वहीं शिवपुरी में मानसून की पहली तेज बारिश हुई। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरे पाए गए। उधर रतलाम में बारिश के कारण सड़कें और अंडरब्रिज जलमग्न हो गए। झाबुआ में भी जोरदार बारिश दर्ज की गई। विदिशा में दिनभर की उमस और गर्मी के बाद शाम को हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी और खंडवा सहित प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले के ग्राम मेलवार में जल जीवन मिशन के तहत जल अर्पण दिवस का आयोजन किया गया। रायसेन, झाबुआ और छतरपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। और शिवपुरी जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा नस्ल आधारित ब्रीडर एसोसिएशन गठित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम

ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

0: एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया

0: से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000

0: 52,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती और मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। जय हिंद बाल साथियों। आसानी से मिलने वाली हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहती, जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। इसी प्रेरक सुविचार के साथ बाल मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज एक बार फिर आपके साथ हूँ मैं, आपकी मधु दीदी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये दोहा बाल मित्रों आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा। ये कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है जो हमें समय के मूल्य और समय के महत्व को बताता है। हम कल यानी 29 जून को संत कबीरदास जी की जयंती मनाएंगे। वैसे इनके जन्म के बारे में एक मत नहीं है। इनका जन्म वर्ष 1398 में लहतार काशी में हुआ था। आपको एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने अपनी संतान की तरह पाला पोसा। आपका जन्म ऐसे समय हुआ जबकि हमारे देश में चारों तरफ अशांति और अव्यवस्था का बोलबाला था। आर्थिक दशा बड़ी दयनीय थी। ऐसे कठिन समय में जन्म लेकर इस युग दृष्टा महान संत ने देश की जनता को एक नया ज्ञान का ज्योतिर्गमय मार्ग दिखाया। बाल मित्रों संत कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे, फिर भी भारतीय इतिहास के महान कवि थे। उन्होंने भक्ति काल में जन्म लिया और कई रचनाएं लिखी और हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी रचनाओं में सभी भाषाओं की झांकी मिलती है। यही कारण है कि उनकी भाषा को सदुकड़ी व खिचड़ी कहा जाता है, परंतु हिंदी, अवध, ब्रज, भोजपुरी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ है।

उन्होंने अपना सारा जीवन ज्ञान साधु संगति से प्राप्त किया और अपने अनुभवों को मौखिक रूप से कविता में पिरोकर लोगों को सुनाया। बाल साथियों, क्या आप जानते हैं कि इन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, इनके शिष्य धर्मदास ने उनके बोलों को संग्रहित करके बीजक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके तीन भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। सुख निधन, होली आगम आदि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बलमित्रो, अशिक्षित होते हुए भी उन्होंने जनता पर जितना गहरा प्रभाव डाला उतना बड़े बड़े विद्वान भी नहीं डाल सके। वे सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। कबीरदास जी द्वारा लिखित भजन और दोहे आज भी लोगों के घरों में गूंजते हैं। वे वाकई एक महान कवि थे जिसकी तुलना शायद ही किसी से की जा सके। ऐसे महान कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास जी को उनकी जयंती पर हमारा शत शत नमन। और बाल साथियों, कल यानी 29 जून के दिन ही हम महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि भी मनाएंगे, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। वे सिख साम्राज्य के संस्थापक और पहले महाराजा थे। उनका जन्म 13 नवंबर वर्ष 1780 को गुजरावाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। बलमित्रो, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म एक जाट सिख परिवार में हुआ था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी और 12 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। वर्ष 1799 में उन्होंने अफगानों से लाहौर पर कब्जा कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। वर्ष 1801 में उन्हें पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। बल साथियों, रणजीत सिंह ने वर्ष 1799 से वर्ष 1839 तक शासन किया और इस दौरान पंजाब को एकजुट किया और एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। उनके साम्राज्य में लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर, जम्मू, श्रीनगर, रावलपिंडी और सियालकोट जैसे प्रमुख शहर शामिल थे। उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और यूरोपीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया। उनके शासनकाल में सिख एक मजबूत और एकजुट राजनीतिक इकाई के रूप में उभरे। उन्होंने धर्म, जाति और पंथ के बावजूद सभी लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया, जिससे उनके राज्य में शांति और समृद्धि आई। इस तरह बाल साथियों, महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब पर कई सालों तक राज किया। उनकी दहाड़ से दुश्मन थर्रा जाते थे। उन्होंने अपने जीते जी कभी पंजाब के आसपास दुश्मनों को भटकने तक नहीं दिया। बाल मित्रों, जून वर्ष 1839 को 58 वर्ष की आयु में लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। बाल साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा महाराजा रणजीत सिंह पुण्यतिथि पर। इस चर्चा के बाद बाल साथियों, अब आपको लिए चलते हैं नन्हे अंकुर क्रम की ओर। और नन्हे अंकुर क्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाते हैं आयु पांडे और आयुषी पांडे के स्वर में ये प्यारा सा भजन।

बाल साथियों, अभी आपने नन्हे अंकुर क्रम के अंतर्गत सुना आयु पांडे और आयुषी पांडे के स्वर में ये प्यारा सा भजन। बाल साथियों, हम आगामी 30 जून यानी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को गुरु हरगोविंद सिंह जी की जयंती मनाएंगे। आपका जन्म गुरु अर्जुन देव जी के घर अमृतसर के बडाली गांव में बस 1595 में हुआ था। मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में आपको गुरु की उपाधि मिल गई थी। सिखों के गुरु के रूप में उनका कार्यकाल सबसे अधिक था। उन्होंने 37 साल 9 महीने और 3 दिनों तक ये जिम्मेदारी संभाली थी। गुरु जी को सिख धर्म में वीरता की नई मिसाल करने के लिए भी जाना जाता है। आपने ही सिख समुदाय को सेना के रूप में संगठित करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने अपना अधिकतर समय युद्ध प्रशिक्षण एवं युद्ध कला में लगाया। वे एक कुशल तलवारबाज, कुश्ती एवं घुड़सवारी में माहिर थे। साथ ही उनका जीवन दर्शन जन साधारण के कल्याण से जुड़ा था। बाल साथियों, गुरु हरगोविंद सिंह जी सदैव मीरी तथा पीरी नाम की दो तलवारें धारण करते थे। एक तलवार धर्म के लिए तथा दूसरी धर्म की रक्षा के लिए। मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर जब गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई, तब हरगोविंद सिंह जी ने सिखों का नेतृत्व किया। बाल मित्रों, गुरु जी ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। उन्होंने अमृतसर के निकट एक किला बनवाया जिसका नाम लोहगढ़ रखा। मीरी पीरी तथा कीरतपुर साहिब की स्थापनाएं भी उन्होंने की। उन्होंने रोहिल्या की लड़ाई, कीरतपुर की लड़ाई, हरगोविंदपुर, करतारपुर, गुरुसर तथा अमृतसर लड़ाइयों में प्रमुखता से भागीदारी निभाई थी। वे युद्ध में शामिल होने वाले पहले गुरु थे। उन्होंने सिखों को युद्ध कलाएं सिखाने तथा सैन्य प्रशिक्षण के लिए भी प्रेरित किया था। बाल साथियों, वर्ष 1627 में हुई जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगलों के नए बादशाह शाहजहां ने सिखों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। तब अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्हें आगे आना पड़ा और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे अपनी तलवार उठाकर भी अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। बाल मित्रों, सिखों द्वारा बगावत किए जाने के बाद मुगल शासक जहांगीर ने उन्हें कैद में डाल दिया। गुरुजी अपने 52 राजाओं समेत ग्वालियर के किले में बंदी बनाए गए थे। उन्हें बंदी बनाने के बाद जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। तब किसी फकीर ने उन्हें सलाह दी कि गुरुजी को तत्काल रिहा कर दें। जब गुरु हरगोविंद सिंह जी को रिहा किया जाने लगा तो वे अपने साथ कैद 52 राजाओं को भी रिहा करने के लिए अड़ गए, किंतु जहांगीर एक साथ सभी राजाओं को रिहा करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने एक कूटनीति बनाई कि जितने राजा गुरुजी का दामन थाम कर बाहर आ सकेंगे वे रिहा कर दिए जाएंगे। इसके बाद एक युक्ति निकाली गई कि जेल से रिहा होने पर नया कपड़ा पहनने के नाम पर 52 कलियों का अंगरखा सिलवाया जाए। गुरुजी ने इस अंगरखे को पहना और हर कली

के छोर को बाबन राजाओं ने थाम लिया और इस तरह सभी राजा रिहा हो गए। बालमित्रों, गुरु हरगोबिंद सिंह जी की सूझबूझ की वजह से उन्हें दाताबंदी छोड़ नाम से बुलाया जाने लगा। बाद में उस स्थान पर एक गुरुद्वारा बनवाया गया जिसे गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ के नाम से जाना जाने लगा। बाल साथियों, गुरु जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में कीर्तन, दरबार, अखंड पाठ के साथ साथ अटूट लंगर का भी आयोजन किया जाता है। बाल साथियों, ये तो थी एक छोटी सी चर्चा गुरु हरगोबिंद सिंह जी की जयंती पर। और बाल साथियों, एक बार फिर चलते हैं नन्हे अंकुर क्रम की ओर और एक बार फिर सुनते हैं आयु पांडे और आयुषी पांडे के स्वर में ये प्यारा सा भजन।

बाल साथियों, अभी आपने नन्हे अंकुर क्रम के अंतर्गत सुना आयु पांडे और आयुषी पांडे के स्वर में ये प्यारा सा भजन। बाल मित्रों, पढ़ाई और खेल में संतुलन बनाना एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। पढ़ाई से जहां ज्ञान और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, वहीं खेल शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सतर्कता और समय प्रबंधन को बेहतर करते हैं। दोनों के बीच सही तालमेल तनाव को दूर कर जीवन में अनुशासन लाता है। बाल साथियों, खेल और शिक्षा के बीच सही संतुलन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जैसे पहला काम होगा टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई और खेल दोनों के लिए बाल मित्रों अलग अलग समय तय करें। इससे किसी एक चीज पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही छोटे छोटे ब्रेक लें। लगातार पढ़ने से भी थकान होती है, इसलिए पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और ताजगी महसूस होती है। इसके अलावा बाल मित्रों, शारीरिक गतिविधियों को अपनाएं। रोजाना कम से कम 1 घंटा किसी भी खेल या आउटडोर एक्टिविटी में जरूर बिताएं।

और सबसे जरूरी बात साथियों, अपना स्क्रीन टाइम सीमित करें। टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर गेम्स की बजाय मैदानी खेलों पर ध्यान दें। बाल में तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जीवन में सफलता की कुंजी हैं। ये आपको अनुशासित और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती हैं। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके आप बच्चे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई और खेल कूद दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और यही कारण है कि किसी एक पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे को नजरअंदाज करने के बजाय दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। बाल साथियों, हमने आपसे बात की पढ़ाई और खेलों में संतुलन विषय पर, तो चलिए क्यों ना हम भी खेलें एक पारंपरिक खेल छुपा छुपी इस गीत के माध्यम से।

0: आती है ये दीदी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने?
1: नहीं तो।

बाल साथियों, अभी आपने ड्रीम गर्ल फिल्म का ये प्यारा सा गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बाल मित्रों, मछलियों का संसार बड़ा विचित्र और रोमांचक है। जल की रानी या जल परी भी मछलियों को कहा जाता है। पानी में ही जन्म लेने और विचरण करने वाली ये मछलियाँ अनमोल हैं। आइए कुछ ऐसे ही अजब गजब मछलियों से आपका परिचय करवाते हैं इस रोचक जानकारी के माध्यम से। वैज्ञानिकों के अनुसार बाल साथियों, पूरी दुनिया में लगभग 32,000 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं और उनके शरीर का तापमान बाहरी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। आपको पता है बाल मित्रों, मछली भी पानी में डूब सकती है। हम इंसानों की तरह उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और यदि पानी गंदा हो तो वे सांस नहीं ले पाती हैं और डूब जाती हैं। बहुत सारी मछलियों के शरीर पर तो स्वाद तंत्रिकाएं होती हैं जो उन्हें स्वाद का अनुभव कराती हैं। क्या आप जानते हैं बाल मित्रों कि सबसे अधिक मछलियां अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। कुछ मछलियों की त्वचा पर तो कांटे होते हैं और शार्क जैसी मछली की चमड़ी रेतमाल जैसी होती है। ये मछली अपने शरीर का तापमान बढ़ा भी सकती है, इससे वो बहुत ठंडे पानी में भी रह सकती है। एक शार्क मछली 100 फीट की दूरी तक देख सकती है और 1000 फीट की दूरी तक आवाजों को सुन भी सकती है। बाल मित्रों, एक नीली वेल मछली 6 महीनों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकती है। दुनिया की सबसे लंबी वेल मछली 60 फीट की, वजन करीब 25 टन और 4000 दांतों के साथ पाई जाती है। वेल मछली सोते समय भी तैरती रहती है। ये मछली सांस लेते समय पानी में लगभग 2000 बुलबुले उठा लेती है। समुद्री घोड़ा मछली अपनी दोनों आंखों को अलग अलग घुमा सकती है। वो एक ही समय में एक आंख से दाईं ओर तो दूसरी आंख से बाईं ओर देख सकती है। है ना बाल मित्रों ये चमत्कार। और ये वातावरण के अनुसार अपना रंग भी बदल सकती है। ये सबसे धीमे चलने वाली मछली है। ये 5 फुट तक चलने में 1 घंटा लगाएगी। इसके विपरीत सेलफिश नामक मछली सबसे तेज मछली है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी में चलती है। बाल साथियों, कुछ रेगिस्तानी मछलियां ऐसी होती हैं जो बहुत गर्म जगह भी रह सकती हैं। ये डेजर्ट फिश 113 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी जीवित रहती हैं। इलेक्ट्रिक ईल नाम की मछली में इतना करंट होता है कि उसे छूने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। बाल साथियों, वेट फिश एक प्रकार की ऐसी मछली है जो खतरे का आभास होने पर गतिहीन हो जाती है और वो एक बहते हुए पत्ती की तरह दिखती है। सालमन मछलियां पानी के बहाव की विपरीत दिशा में भी तैर सकती हैं। इसके अलावा ये नदियों और ठंडे समुद्रों में भी आसानी से रह सकती हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक मछली डीमन फिश है। ये मछली अमेरिका की कांगो नदी में मिलती है। मुडस्कीपर नाम की मछली के पंख होते हैं जिसकी मदद से ये उड़ भी सकती है और कुछ देर तक पानी के बाहर भी रह सकती है। इसी तरह बाल मित्रों, गोल्ड फिश सिर्फ 3 सेकंड तक ही किसी चीज को याद रख सकती है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित भी रह सकती है। तो बाल साथियों, ऐसा है मछलियों का रोचक संसार। रोचक जानकारी में आज इतना ही। बाल मित्रों, जून का महीना अब समाप्ति की ओर है और हम सभी को इंतजार है झमाझम बारिश का, किंतु गर्मी अभी भी अपने तीव्र रूप में है। ऐसे में स्वयं का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो बीमार होने का खतरा है। इस समय तेज धूप और उमस काफी बढ़ गई है। गर्म हवा और लू के थपेड़ों से बचने के लिए यदि जरूरी ना हो तो घर पर ही रहें और यदि बाहर जा ही रहे हैं तो सावधानी के साथ जाएं। शरीर को पूरा ढककर ही घर से निकलें। कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि आपका मुंह, हाथ और सिर पूरी तरह से ढका हुआ हो। बाल साथियों, इस मौसम में पसीना भी अधिक आता है जिसके कारण पानी की कमी हमारे शरीर में हो सकती है, तो तरल पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करें।

ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। खूब पानी पिएं, छाछ, गन्ने का रस, नारियल पानी, बेल का शरबत, पना आदि को अपनी डाइट में शामिल करें। साथ ही अधिक पानी वाले फल जैसे तरबूज, खीरा, खरबूज, मौसमी आदि को अपनी नियमित डाइट में शामिल करें। इसके अलावा बाल साथियों कभी भी तेज धूप से आकर फौरन ठंडा पानी न पिएं और बाहर धूप में जाते वक्त भी खाली पेट न जाएं। इन दिनों हल्का भोजन करें, घर का बना हुआ ताजा और सुपाच्य भोजन करें। बाहर मिलने वाले स्ट्रीट फूड को तो बिल्कुल भी ना खाएं। इस तरह बाल साथियों यदि हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो इस मौसम में भी स्वस्थ रह सकेंगे। इसके अलावा बाल साथियों गर्मी में हम इंसान ही नहीं परिंदे भी प्यासे हैं। एक बर्तन पानी का अनमोल जिंदगी का। अपने आंगन, छत या बालकनी में एक बर्तन पानी भर कर रखें, साथ ही थोड़ा सा अनाज भी रखें ताकि गर्मी से व्याकुल पक्षियों की भूख प्यास शांत हो सके। थोड़ा सा दाना पानी बहुत पुण्य का काम। आइए एक नेक आदत अपनाएं, प्यासे परिंदों की प्यास बुझाएं। इसी प्यारी सी सीख के साथ बाल साथियों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय हो गया है तो अनुमति दीजिए अपनी मधु दीदी को। जय हिंद बाल साथियों। अभी बच्चे अपना कार्यक्रम बाल सभा सुन रहे थे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती और मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से।

0: दोस्तों के घिनौना काम किया, लानत है तुझ पर। प्रिया
1: यार आदि।

शिव पुरी केंद्र का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है शाम 6 बजे से, और 6:30 बजे आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 3:02 होने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर ही आप हमारे प्रसारण को शाम 5 बजे से पुनः सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ दर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इस समय 5 बजने को है। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में न्यूज हेडलाइन हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के तहत प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंटें बनाए जाने का उल्लेख किया है और उनकी सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने द्विपक्षीय वार्ता की है। इससे पहले सेशल्स ने प्रधानमंत्री मोदी को सतत विकास, हरित विकास और जलवायु अनुकूल विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। इस अवसर पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशल्स के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव साझा करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्री राम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। शाम 7 बजे से खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत की दरकार रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण आज की आवश्यकता विषय पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा नियमित एवं संयमित जीवन शैली, बेहतर स्वास्थ्य का राज। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं, और वार्ताकार है कुमारी इशिता गौड़। साथियों, साथ ही हम क्रम जीवन आलोक में चर्चा करेंगे खेल हमारे जीवन में अनुशासन सिखाते हैं विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं क्रम आज की बात में हमारे आज के विषय पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण आज की आवश्यकता पर। दोस्तों, ऊर्जा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। आज के आधुनिक युग में उद्योगों, परिवहन, कृषि, शिक्षा और घरेलू कार्यों के लिए ऊर्जा का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। ऊर्जा के प्रमुख पारंपरिक स्रोतों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और लकड़ी आदि शामिल हैं। ये स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक बन गया है। दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित होते हैं, जिन्हें पुनः शीघ्र प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण भी पड़ता है। कोयले और पेट्रोलियम के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के लिए कई उपाय अपनाए जाने चाहिए। सबसे पहले, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद रखना चाहिए। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ईंधन की बचत करना महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग, कारपूलिंग और साइकिल चलाने जैसी आदतें पेट्रोल और डीजल की खपत को कम कर सकती हैं। दोस्तों, उद्योगों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ऊर्जा की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके साथ ही वैकल्पिक और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोगैस जैसे स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं और लंबे समय तक उपलब्ध रह सकते हैं। यदि इन स्रोतों का व्यापक उपयोग किया जाए तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी और उनका संरक्षण संभव हो सकेगा। सरकार और समाज दोनों की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में ऊर्जा संरक्षण का महत्व पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी इस विषय के प्रति संवेदनशील बने। प्रत्येक नागरिक का भी यह कर्तव्य है कि वह ऊर्जा की बचत करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। इनका संरक्षण केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी आवश्यक है। ऊर्जा की बचत, वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग तथा जन जागरूकता के माध्यम से हम इन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण आज की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय नियमित एवं संयमित जीवन शैली, बेहतर स्वास्थ्य का राज पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है, स्वास्थ्य ही धन है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह अपने जीवन के सभी कार्यों को उत्साह और दक्षता के साथ कर सकता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो धन, पद और सुख सुविधाएं निरर्थक लगने लगती हैं। अच्छे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य नियमित एवं संयमित जीवन शैली में छिपा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, संतुलन और संयम को अपनाते हैं, वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, नियमित जीवन शैली का अर्थ है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को निश्चित समय पर करे। समय पर उठना, भोजन करना, व्यायाम करना, अध्ययन

0: करना या पर्याप्त नींद लेना नियमित जीवन का आधार है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से करता है तो उसके शरीर की जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। इससे पाचन तंत्र मजबूत रहता है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत अनियमित दिनचर्या व्यक्ति को अनेक बीमारियों का शिकार बना सकती है। दोस्तों, संयमित जीवन शैली का अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, जैसे भोजन, मनोरंजन, कार्य और आराम, सभी में संयम आवश्यक है। आज के समय में लोग स्वाद के चक्कर में जंक फूड, तेलीय भोजन और शीतल पेयों का अत्यधिक सेवन करते हैं, जिससे मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसलिए भोजन में हरी सब्जियां, फल, दूध, दालें और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल करना आवश्यक है। साथियों, नियमित व्यायाम और योग भी स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रतिदिन कुछ समय व्यायाम और योग को देना चाहिए, जिससे शरीर में चुस्ती और तंदुरुस्ती बनी रहती है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और मानसिक तनाव कम होता है। दोस्तों, योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि मन को भी शांत और एकाग्रता प्रदान करता है। यही कारण है आज विश्वभर में योग को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जा रहा है। साथियों, पर्याप्त नींद भी नियमित एवं संयमित जीवन शैली का एक आवश्यक भाग है। नींद शरीर और मस्तिष्क को आराम प्रदान करती है। यदि व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता तो उसे थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य है। नियमित एवं संयमित जीवन शैली व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच, अच्छे विचार, आत्मसंयम तथा तनाव प्रबंधन जीवन को सुखद बनाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और नकारात्मक भावनाएं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव प्रसन्न रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता और आनंदमय जीवन की कुंजी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नियमित एवं संयमित जीवन शैली अपनाकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में हमारे आज के विषय वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं पर आपको वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है इशिता गौड़।
1: मित्रों, हम जानते हैं कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें से केवल पृथ्वी ग्रह पर ही ज्ञात जीवन है। पृथ्वी पर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटक हवा और पानी हैं। यदि हम देखें तो पाते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवधारियों के लिए जल और वायु का होना अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों के अभाव में जीवन की कल्पना करना असंभव है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो आवरण है, जो पर्यावरण है, उसमें हवा, पानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने हमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया है, चाहे वो जंगल हो, जमीन हो, जल हो, परंतु मनुष्य की महत्वाकांक्षी होने से, सुविधाभोगी होने से, विकास की ओर अग्रसर होने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हवा का, पानी का, जमीन का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। कारण एक ही है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा के लिए कारण होने वाला विनाश। हम अपने मकान बनाने, कारखाने लगाने, उद्योग लगाने, भोजन के लिए, खेती बढ़ाने के लिए वृक्षों को काट रहे हैं। जंगल की जमीनों पर, नदियों पर, नालों पर और समुद्र तटों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और वहां पर नवीन निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे वृक्षों की संख्या निरंतर घट रही है। विभिन्न प्रकार के जीवों की खाद्य श्रृंखला घट रही है। जीवों के प्राकृतिक रहवास कम हो रहे हैं। प्रदूषण एवं अतिक्रमण के कारण उनके व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विभिन्न पर्यावरण संस्थानों के अनुसार पर्यावरण को संतुलित रहने के लिए न्यूनतम 33% जंगल का होना चाहिए, परंतु हम देख रहे हैं कि निवास के लिए हम जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं, चाहे रोड बनाना हो।

हाईवे बनाना हो, रेल लाइन बिछानी हो, बांध बनाना हो या उद्योग स्थापित करना हो, इन सब के लिए जंगलों की बलि चढ़ रही है। हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें वहाँ पर हरी भरी घाटियाँ मिलेंगी या फिर बर्फ से ढके हुए पहाड़ मिलेंगे, परंतु कुछ हिल स्टेशनों पर देखते हैं कि वहाँ मानव निर्मित संरचना नजर आ रही है, जैसे कि होटल, इमारतें आदि। भारत का मशहूर पर्यटन स्थल मसूरी अपनी विशेष वनस्पति और झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजों ने मसूरी में बसाहट की तो वहाँ की हरी भरी वादियों ने उन्हें आकर्षित किया था, परंतु अब हम देखते हैं कि पहाड़ियों से झाड़ियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और वहाँ पर कंक्रीट का जंगल बन गया है। इसके कारण मसूरी की जलवायु भी बदल गई है, जो ठंडा स्थान था अब वह थोड़ा सा गर्म हो गया है और पर्यटक भी जो पहले शुद्ध हवा पानी के लिए घूमने जाते थे वो भी अब कम हो गए हैं। वैज्ञानिक एवं प्रकृति शास्त्री मानते हैं कि देश की वन संपदा उसके वायुमंडल और ऋतु चक्र को प्रभावित करती है। वनों के अविवेकपूर्ण दोहन का कुपरिणाम देश के सामने उपस्थित हो रहा है, जहां एक ओर जीवन के उपयोगी वन पदार्थ धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश का प्राकृतिक संतुलन भी गड़बड़ा गया है। वर्षा, गर्मी और जाड़ा अनिश्चित रूप ले रहे हैं। वृक्षों में वर्षा के अतिरिक्त जल को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। वनों के विनाश के कारण आजकल भयंकर बाढ़ आ रही है। भूमि के क्षरण के कारण धरातल का गठन परिवर्तन हो रहा है। अगर इसी गति से वन विनाश जारी रहा तो आगामी कुछ वर्षों में देश की वन संपदा भी समाप्त हो जाएगी और समाज का ये आत्मघाती प्रयास इसे संकट में डाल देगा। वृक्ष मानव का चिर साथी है, वह अपना सर्वस्व मानव की सेवा में अर्पित कर देता है, किंतु मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसे काट डालने से नहीं चूकता। वृक्षों के प्रति मनुष्य की इसी कृतज्ञता को गोविंद माथुर ने व्यक्त किया है। जिस आदमी को अपना सर्वस्व देते हैं पेड़, वही आदमी पृथ्वी से अलग कर देता है पेड़। वृक्ष मनुष्य को अपने उपकारों की याद दिलाता हुआ स्वयं को ना काटने का अनुरोध करता है। मैं तुम्हारा चिर मित्र वृक्ष हूँ, मुझे मत काटो। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं हमारा अंधाधुंध विकास तो हमारे लिए विनाश का कारण नहीं बनता जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि विकास को तो हम नहीं रोक सकते, वर्तमान परिस्थितियों में विकास के कारण हम अपना जीवन आराम से जी रहे हैं। निवास के लिए, दैनिक उपयोग के लिए, वर्तमान जीवन शैली के लिए हम वृक्षों की विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं और इसको बंद भी नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। अगर मैं आम नागरिक बनकर अपने स्तर की बात करूं, तो हमें वृक्षों को लगाना चाहिए, पौधरोपण करना चाहिए। प्रकृति ने हमें लाखों तरह की वनस्पति दी है। कुछ मिलीमीटर से लेकर मीटरों तक के वृक्ष हमारी धरती पर उपलब्ध हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार पौधरोपण कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड तक भी जीवित नहीं रह सकते। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन या प्राणवायु ही प्राणों का आधार है और यह आधार हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश एवं पानी से वृक्ष अपना भोजन बनाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन गैस को वातावरण में छोड़ते हैं। वृक्ष जीवित प्राणियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन उपलब्ध है वह हमें एकमात्र स्रोत वनस्पति से ही प्राप्त होती है, यानी वृक्ष ही हमें प्राणवायु देते हैं। भारतीय संस्कृति में, धर्म में, साहित्य में, लोक संस्कृति में वृक्षों का बहुत महत्व है। वृक्षों की तो पूजा की जाती है, वृक्षों को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। पीपल, तुलसी, आंवला, बरगद, बेलपत्र आदि वृक्षों की तो हमारे यहाँ पूजा करने का रिवाज है। इसके

अलावा नीम, गिलोय, एलोवेरा, जामुन, अर्जुन आदि वृक्षों को तो सीधे ही औषधियों का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म के आदि ग्रंथ वेदों में आयुर्वेद में तो वनस्पति के माध्यम से रोग निदान और स्वस्थ रहने का वर्णन है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति मानव जीवन को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। महाग्रंथ महाभारत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं पीपल वृक्ष हूँ, यानी वृक्ष स्वयं ईश्वर का अवतार है। पुराणों में वर्णन है कि वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है, यानी कि वृक्षों की महिमा का वर्णन पुरातन साहित्य में भी किया गया है। वृक्ष न केवल वायु बल्कि मानव जीवन का आधार हैं, सहचर्य हैं, ना कि आवास के लकड़ी फर्नीचर के लिए। लकड़ी खाना बनाने के लिए, अंतिम संस्कार में लकड़ी का उपयोग और विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए हम लकड़ी पर निर्भर हैं। लकड़ी से हमें लिखने वाला कागज मिलता है। मित्रों, आजकल टिश्यू पेपर का चलन बढ़ रहा है और वो भी वृक्षों से ही बनता है। झाड़ू, डलिया, छप्पर, कूलर की टटियां और न जाने हजारों लाखों वस्तुएं ऐसे ही पेड़ों से बनती हैं। हमारे भोजन के लिए सैकड़ों खाने की सामग्री हमें खेती वाले पौधों से नहीं बल्कि जंगलों से मिलती हैं, जैसे शहद, गोंद, बेर, करौंदे, ककोरे आदि वनों से मिलने वाले वनोपज हैं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार होने के बावजूद भी हम वृक्षों के महत्व को अनदेखा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि घने जंगलों में बारिश ज्यादा होती है, रेगिस्तानों में कम वर्षा होती है। उसका कारण वृक्षों का ना होना ही है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि पृथ्वी पर वर्षा का कारण जंगलों में पेड़ों का होना ही है। अगर हम शिवपुरी जिले की बात करें तो यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वृक्षों से आच्छादित है।

0: बात बताऊं कि यहाँ के जंगल प्राकृतिक रूप से लगे हैं। चट्टानों में वृक्ष लगाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमें इन वृक्षों की रक्षा करना चाहिए। आवश्यकता होने पर हम वृक्षों की टहनियों का उपयोग करें, उसके तने और जड़ों को लगा रहने दें, जिससे वह दोबारा पनप सके। हमारे यहाँ की जलवायु देखते हुए हमें नीम, आंवला, चिरौल, कनेर, पीपल, जामुन, आम आदि के वृक्ष लगाने चाहिए। आज लोग विदेशी प्रजाति के पेड़ लगाते हैं, जो सुंदरता तो देते हैं किंतु उसका उपयोग नहीं है। इसीलिए हमें अपने जिले स्थान के अनुशीलता के अनुसार पौधे लगाने चाहिए। अगर स्थान की कमी हो तो घर में ही तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट आदि फूलों के पौधे लगाना चाहिए। शासन द्वारा भी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिवर्ष वन महोत्सव सप्ताह भी मनाया जाता है। आइए मित्रों, हम ये संकल्प लें कि इस बार वर्षा काल में हम कम से कम 5 वृक्ष अवश्य लगाएंगे, और न केवल स्वयं वृक्ष लगाएं बल्कि दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर ही अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो आइए वृक्ष लगाएं और पर्यावरण बचाएं।
1: साथियों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं पर, वार्ताकार थी कुमारी इशिता गौड़। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय खेल हमारे जीवन में अनुशासन सिखाते हैं पर चर्चा करने का। दोस्तों खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि हमारे शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों के माध्यम से व्यक्ति अनेक गुण सीखता है जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन जीवन को व्यवस्थित सफल और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। दोस्तों खेलों में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी कुछ नियमों और निर्देशों का पालन करता है। बिना नियमों के कोई भी खेल सफलतापूर्वक नहीं खेला जा सकता। चाहे वह क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या अन्य कोई खेल, सभी में निर्धारित नियम होते हैं। खिलाड़ियों को समय पर मैदान में पहुंचना, अभ्यास करना, प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करना और खेल भावना बनाए रखना पड़ता है। इन सभी बातों से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का विकास होता है। दोस्तों खेल हमें समय का महत्व भी सिखाते हैं। एक खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास करना सीखता है। यदि वह समय का पालन नहीं करता तो वह अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाता। नियमित अभ्यास से व्यक्ति में समय प्रबंधन की आदत विकसित होती है। यह आदत आगे चलकर पढ़ाई, नौकरी और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाती है। साथियों खेलों के माध्यम से व्यक्ति आत्मसंयम सीखता है। खेल के दौरान जीत हार दोनों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छा खिलाड़ी जीत मिलने पर घमंड नहीं करता और हार मिलने पर निराश नहीं होता। वह अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। यह आत्मसंयम अनुशासन का ही एक रूप है जो व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। खेलों से टीम भावना और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। दोस्तों खेलों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो अपने कार्यों को अधिक अनुशासन और एकाग्रता के साथ कर सकता है। खेल तनाव को कम करते हैं और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। साथियों आज के युग में जब लोग मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में अधिक समय बिताते हैं तब खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। खेल न केवल शारीरिक सक्रियता बनाए रखते हैं बल्कि युवाओं को अनुशासित और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी खेल को अवश्य शामिल करना चाहिए। दोस्तों खेल हमारे जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं। वे हमें समय का सदुपयोग, नियमों का पालन, आत्मसंयम, जिम्मेदारी और टीम भावना सिखाते हैं। इन गुणों के कारण व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए और इसके माध्यम से अनुशासित और सफल जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों अब

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

सुन रहे थे अश किंग की आवाज में ओ माई गॉड फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था समीर अंजान ने, संगीत था हिमेश रेशमिया का। आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी से। आवाज है केके और सुनिधि चौहान की। गीत लिखा है लव रंजन ने, संगीत है हितेश सोनिक का।

आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा और सुनिधि चौहान की आवाज में। गीत है पंछे जालौनवी का, गीत को संगीतबद्ध किया है गौरव दास गुप्ता ने और फिल्म है बॉस तो बॉस है।

आइए आप सुनते हैं शॉर्टकट फिल्म का ये गीत। आवाज है हिमेश रेशमिया और विनीत सिंह की। गीत लिखा है समीर रंजन ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

अभी आप सुन रहे थे शॉर्टकट रोमियो में हिमेश रेशमिया और विनीत सिंह को। गीत लिखा था समीर रंजन ने, संगीत था हिमेश रेशमिया का। इसके साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारी सभा की शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए हमारी सभा की शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 6 बजे आप भजन संध्या में सुनेंगे अनुराधा पोडवाल को। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा के कलाकार होंगी सहुद्रा कुशवाहा। 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा में सुनेंगे धारावाहिक चिट्ठियां देवर भौजाई की। इसके अलावा हर्ष गुप्ता की वार्ता का विषय होगा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बांस मिशन की खेती अनुदान एवं विपणन की जानकारी। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 8 बजे। आज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोप और 10 बजे अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा। ये थे हमारी सभा के शेष कार्यक्रम। लीजिए सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर हिंदी महक क्रम में आप सुनेंगे केवल प्रसाद द्विवेदी से उनका काव्य पाठ। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा 7:30 पर।

0: शाम 5:40 पर और रात्रि 8:15 पर। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में 8:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत। 9 बजे लोकरंग के कलाकार होंगे उमाशंकर नामदेव। एक ही संगीतकार इस कार्यक्रम में आनंद मिलन के संगीतबद्ध किए कुछ गीत सुनिए 9:30 पर। मिश्रित संगीत कार्यक्रम सबरंग में हम आपको सुनवाएंगे 10:05 पर और 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कल हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे 11 बजे भोपाल से फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 बजे आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से, 1 बजे स्वास्थ्य दर्पण, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। कल शाम 5 बजे युवा साथी कार्यक्रम युवाणी में सुनेंगे सवाल हमारे जवाब आपके अंक 126 रीना चतुर्वेदी की वार्ता का विषय होगा वीरांगना रानी दुर्गावती और रोजगार सूचना। कल हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे शाम 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर लोकधारा के कलाकार होंगे पवन यादव। कल शाम 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा में सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल पर और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतुला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। विनीत कुमार जायसवाल की वार्ता का विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आज की सीख में आप सुनेंगे जस खरस चंदन लादे मारा परिमल बास न जान गमारा विषय पर जानकारी। कल रात 8 बजे हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में आकाशवाणी की भोपाल केंद्र से ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे। कल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर पब्लिक स्पीक। कल रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के डाक पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के तहत प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंटें बनाए जाने की चर्चा की और सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइने ने द्विपक्षीय वार्ता की है। इससे पहले सेशल्स ने प्रधानमंत्री मोदी को सतत विकास, हरित विकास और जलवायु अनुकूल विकास के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल से राज्य स्तरीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश भर में 0 से 5 साल तक के लगभग 1,07,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू स्थित श्रीराम मंदिर आधार

शिविर में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। शाम 7 बजे से खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत की दरकार रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या। इसमें आज कलाकार हैं अनुराधा पोडवाल। आइए अनुराधा पोडवाल से सुनते हैं ये भजन।

भजन संध्या में आप सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल को। आइए सुनते हैं अगला भजन। रचना नंदलाल पाठक की है और संगीत अरुण पौडवाल का।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: आकाशवाणी छतरपुर से आप सुन रहे हैं भजन संध्या। इसमें आज की कलाकार हैं अनुराधा पोडवाल। अनुराधा पोडवाल से आप नंदलाल पाठक के लिखे और अरुण पोडवाल के संगीतबद्ध किए भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं ये अगला भजन।

0: इसी के साथ भजन संध्या का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। इसमें आज की कलाकार थी अनुराधा पोडवाल। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज की कलाकार हैं सहोद्रा कुशवाहा। आइए सहोद्रा कुशवाहा से सबसे पहले सुनते हैं विवाह गारी। ढोलक पर संगत कर रहे हैं मुकेश रजक, बेंजो पर जब्बार खान और झीका पर हैं बाबू रेखवार।
1: हाँ, अपनी नगरी में राज

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम है, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
3: अच्छा
2: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
5: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

बहुद्रा कुशवाहा से अभी आप पारंपरिक गारी सुन रहे थे। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और पारंपरिक गारी सहोद्रा कुशवाहा से।

सहुद्रा कुशवाहा से अभी आप पारंपरिक गारी सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में राम महिमा गारी। ढोलक पर संगत कर रहे हैं मुकेश रजक, बैंजो पर हैं जब्बार खान और झीका पर हैं बाबू रेखवार।

सहोद्रा कुशवाहा की राम महिमा गारी के साथ कार्यक्रम लोकधारा समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

लीजिए सुनिए, खोए हुए व्यक्ति के बारे में सोचना। गुमशुदा का नाम है श्रीमती साबरीन, पत्नी आरिफ। निवासी उदनपुरा कालपी, पोस्ट कालपी, जनपद जालौन। उम्र 27 वर्ष, एकहरा वदन, चेहरा गोल, रंग सावला, ऊंचाई 5 फुट, माथे पर तिल का निशान है, काले बाल हैं, सलवार कुर्ता पहने हुए। 4 जून 2026 को उड़नपुरा कालपी से लापता हैं। जिस किसी को जानकारी प्राप्त हो वे प्रभारी निरीक्षक थाना कालपी जनपद जालौन के इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें 9454403596, 9454403596। क्षेत्राधिकारी थाना कालपी जनपद जालौन के मोबाइल नंबर 9454401429, 9454401429 दोनों। प्रभारी टर्नगंज थाना कालपी जनपद जालौन का मोबाइल नंबर 8090985421, 8090985421। सूचना समाप्त हुई।

प्लीज नहीं खोए हुए व्यक्ति के बारे में एक और सूचना। गुमशुदा का नाम है सुजाता शिवहरे, पुत्री स्वर्गीय सुनील शिवहरे, निवासी नया पाठकपुरा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन। इनकी उम्र तकरीबन 18 वर्ष 2 माह है, ऊंचाई करीब 5 फुट, दुबला पतला वजन, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, गुलाबी रंग का टॉप व कुर्ता पहने हुए हैं। ये 1 जून 2025 को दिन में 12 बजे से नया पाठकपुरा मोहल्ला से लापता हैं। जिस किसी को जानकारी प्राप्त हो वे पुलिस अधीक्षक जालौन के मोबाइल नंबर 9454400279, 9454400279, क्षेत्राधिकारी वरी के मोबाइल नंबर 9454401427, 9454401427, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई के मोबाइल नंबर 9454403599, 9454403599। इन मोबाइल नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
1: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना।

0: बुद्धू सुधर जा।
1: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
1: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित, दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। और प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के बीच आज राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सतत विकास, हरित विकास और जलवायु अनुकूल विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। एक संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स हिंद महासागर को साझा विरासत मानते हैं और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशल्स के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव साझा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं, इससे हमारी नदियों, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा हुआ करती है। श्री मोदी ने आज मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान का भी जिक्र किया।
5: मुझे मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है।
4: जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट हॉक आई के तहत प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तैनात की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीनी शासन को और सशक्त बनाने तथा ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे कहा,
6: उजड़ते हुए गांव को फिर से बसाया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने। मैं जानता हूं ऐसे गांव जहां सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते से ट्रक जाते नहीं था, गांव में बीमार को खटिया पे धर के लाना पड़ता था। एक नहीं अनेकों जो निष्पक्ष विश्लेषण हुए उनमें कहा है, कई राज्यों की कई बेस्ट प्रैक्टिस है, कल समय मिला तो मंत्रियों के सामने जिक्र करूंगा। उन राज्यों को एप्रिसिएट करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सड़कों में उसका कितना बेहतर उपयोग हो सकता है। और वैसे ही दीनदयाल कौशल योजना, मुझे लगता है इसके स्वरूप को और व्यापक बनाने की जरूरत है।

0: जरूरत के हिसाब से अभी संख्या कम है और अलग अलग चीजें कैसे जोड़ सकते हैं कम समय में ट्रेनिंग देके प्रशिक्षण देके स्किल्ड करने का।
1: केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरिस्का में कभी बाघ पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे लेकिन वहां अब 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बैतूल जिले के कुकुरु में एक कार्यक्रम में स्वसहायता समूहों की महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के प्रयासों आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान एक कृषि सखी विनीता ने अपनी बात रखी।
3: मेरे द्वारा 4 गांवों में 250 किसानों के साथ 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है और हमारे समूह में 82 भी मिली है जिसमें हम जैविक उत्पाद बना रहे हैं। जीवामृत, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, बीजामृत ये बना के हम हमारे स्थान से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं जिससे हमारी दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है और आत्मनिर्भर भी बन रही है हमारी बहनें SHG के माध्यम से।
1: ग्राम कुकरू में ही आयोजित ग्राम चौपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गांव से दूध, फल और सब्जी आदि का दोपहिया से परिवहन करने वाले किसानों और स्वसहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
4: एक अभियान हमने चलाया हुआ है कि हमारे भाई बहन जो खास करके गांव से दूध, फल, सब्जी मोटरसाइकिल से लेके जाते हैं, ऐसे में कई सारे किसान भाई बहनों की दुर्घटना में मृत्यु या घटना घायल हो जाते हैं, तो हमने हेलमेट सबको लगाना चाहिए, इसलिए हम जा रहा अभियान चला रहा है कि सबको हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस जल्दी जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम की जाएगी जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाले अभियान में 1,07,00,000 बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। उधर इंदौर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कलेक्टर शिवम वर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान एक जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं सतना जिले में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिला चिकित्सालय से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश के नर्मदापुरम, धार, झाबुआ और आगरमालवा सहित सभी जिलों में 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो दवा का सेवन कराया जाएगा। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून के अगले 3 से 4 दिनों के भीतर आगे बढ़ने की संभावना है। अभी तक मानसून प्रदेश के 15 जिलों तक पहुंच चुका है। आज भोपाल सहित प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग सहित प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून अभी भी नहीं पहुंचा है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भोपाल में आज पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण प्रहरी अभियान का शुभारंभ किया गया। छिंदवाड़ा में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं नशा तस्करी निरोधक दिवस पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों के प्रकार, मादक पदार्थों से संबंधित कानून तथा नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी गई। और राजगढ़ में हिंदू साम्राज्य दिवस के अवसर पर कल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज और भारत माता की आकर्षक झांकियां शामिल हुई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।

और प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है
1: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब
3: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा सुनबे बारे सबई भैया बहनन खां किस्सु भैया।
1: और रघु भैया की
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम राम रघु भैया। और सुनाओ का है हाल चाल। देखो उमस तो बिकट पर रही।
1: और भैया अपने सभी पंच भैया बोनी के इंतजार में इंद्र देवता की तरफ देख
0: बिल्कुल
1: रहे हैं।
0: बिल्कुल भैया, उनको जो ध्यान है ना वो बादर कूद लगुआ है कि कब है पानी झमाझम की वर्षा हो जाए, वो हमारे खेतन में हम अपनो काम शुरू कर दिए क्या नहीं।
1: बिल्कुल भैया। और देखो पंच भैया खेती किसानी तो करते ही हैं,
0: बिल्कुल
1: संगे संगे भैया कृषि बांध की भी अपनाएं
0: बिल्कुल बहुत
1: तो का
0: जरूरी
1: होत
0: है।
1: के एक साथ पंच भैया का दो फायदा होता है।
0: बिल्कुल
1: एक तो भैया अपन जैसे कृषि वानिकी में अपनी फसल में भूमि के साथ साथ पशुपालन
0: बिल्कुल
1: भी अपना सकते हैं। इसे कहा होत के ये देखो वैज्ञानिक तरीके से जो फसल अपन जब उगाऊ है तो टिकाऊ और भूमि प्रबंधन प्रणाली अपना सकत है।
0: बिल्कुल। अच्छा ये मैं कहा होते कि जैसे मान लो कौन तरीका से अगर मान लो फसल में नुकसान हो रहा हो तो हमारे पंचना पशुपालन में लाभ हो जाता, अगर कौन प्रकार से पशुपालन में नुकसान हो रहा तो भैया फसल में लाभ हो जाए। मतलब भी एक ही के भरोसे नहीं बने रात के अभी को
1: साथ में
0: मतलब।
1: भैया देखो पारंपरिक खेती से हटकर पर्यावरण का भी सुरक्षित जी रखत है
0: बिल्कुल
1: और किसानों की आय का भी दुगनो करत है।
0: बिल्कुल। और देखो भारत जोन सन 2014 में अपनी राष्ट्रीय कृषि बांध की नीति लागू कर वे बालो दुनिया को सबसे पहलो देश बनो।
1: बिल्कुल भैया कृषि वानिकी अपनावे से आय को अतिरिक्त स्रोत पंचभिन्न का प्राप्त होता है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है
0: बिल्कुल
1: और जब यह मिट्टी कटाव और बाढ़ का भी कम करता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और देखो भैया घरेलू जो आवश्यकता में है किसानन का अपनी खेत में ईंधन लकड़िया और इमारती लकड़िया को भी और संगे संगे फल संगे संगे पशुअन के लाने चारों बंदों को भी इंतजाम हो जात के नहीं।
1: बिल्कुल भैया देखो जैसे अपन चर्चा कर रहे थे कि पानी नहीं बरस रहा है और पंच भैया इंतजार कर रहे हैं
0: बिल्कुल
1: तो भैया अपन देखा थे कि जब पानी बरसा तो बहुत सो पानी अपन संचय नहीं कर पाऊ थे
0: बिल्कुल
1: और आगे चल के देखो अगर अपन संचय कर ले हैं तो खेती किसानी में भी लाभ हुई है।
0: बिल्कुल। रघु भैया कितनी उम्दा बात करी है अपन ने कि पानी बचाओ बहुत जरूरी है। अब जैसे बरसात हो रही तो हमारे पंच भैया का कहने अगर खेतन में जौन खुले हैं तो उनमें मेड़बंदी कर लेवे तो पानी खेत में बनो रहा। और जांगन तांगन ऐसी भैया बेहर हैं कछु ऐसी बावड़ी हैं जौन डरी हैं जिनको संरक्षण नहीं भाओ तो हमारे पंच भैया पानी इकट्ठो कर भी किलाने उनके उनको भी साफ सुथरो कर लेवे। ऐसे क्यों तरीका है पानी बचावे किलाने के
1: और
0: ने।
1: भैया जैसे पंच भैया जो घर को पानी है जब पानी बरसो तो छत से भी सीधे
0: बिल्कुल
1: नालियन में बहा जाते तो पंच भैया घर में अपने सूखता जरूर बनाए
0: बिल्कुल
1: जिसे घर को जितो भी पानी है बरसात को भी निस्तार को पानी है उमें जय है तो
0: बिल्कुल
1: भैया अपने घर के आसपास वाटर को लेवल भी ठीक रहे।
0: बिल्कुल कितनी उम्दा बात करी है। और देखो तन तन अगर पानी बचाओ जो है तो जो हमारे आवे वाली पीढ़ी के लाने बहुत लाभ दे है के
1: और
0: नहीं।
1: भैया एक बात और है कि पृथ्वी पृथ्वी पे मीठे पानी की मात्रा बहुत सीमित
0: बहुत
1: है
0: ही कम है। बिल्कुल
1: इसलिए
0: सही कही
1: भैया जल संकट से बचने के सभी पंच भैया का सामूहिक प्रयास कर वो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और एक चीज और को हमारे पंचना ध्यान रखने है कि जैसे घरेलू काम पे ला रहे जो पानी तो केव जने का कह रहे थे कि नल अगर खुलो है तो ध्यान ही भूल जात, चालू है नल
1: वो
0: तो।
1: बस

0: भैया टाइम टाइम से
1: कर रहा है, नल चल
0: हाँ
1: रहा
0: नल
1: है।
0: चल रहा हो तो भैया ऐसो ना हमारे पंच करें, अपनो जितो उन्हें पानी की आवश्यकता हो उतना पानी ले लेवे और उनको उपयोग करें।
1: और भैया बाल्टी को उपयोग करें, बाल्टी में
0: बिल्कुल
1: पानी भर लें जितनी जरूरत है तो उपयोग करें एक बार।
0: बिल्कुल। और आजकल तो देखो रघु भैया RO फिल्टर क्यों तरीका के संसाधन
1: हाँ।
0: पैदा हो गए हैं, बन गए हैं और लोग उनको इस्तेमाल करें, तो उनको भी दुरुपयोग ना करें कि
1: और भैया
0: नहीं।
1: जो RO से पानी निकल है तो ना पंच भैया सीना बहा दें, उसमें बर्तन धोवे में, पोछा लगावे या पीड़न में डालवे के लाने प्रयोग करें।
0: बिल्कुल। तो रघु भैया तनक अपन रोक ना लेते।
1: बिल्कुल भैया, अब रोकते हैं और सुनाते हैं संदेश।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स।
0: रघु भैया
1: हाँ
0: देखो
1: भैया,
0: पंचन को विराम की बात कराते हैं अपन स्वागत कार्यक्रम में।
1: और भैया पंच भैया जो भी छोटे बच्चा हैं उन्हें टीकाकरण जरूर कराएं।
0: बिल्कुल रघु भैया, एक टाइम है तो जब व्यक्ति जागरूक ना हो तो अपन देखते बिना टीकाकरण के कारण केव की संख्या में मौत हो जाती,
1: और कई जानलेवा
0: कई
1: बीमारियां हो
0: जानलेवा
1: जाती हैं,
0: बीमारियां।
1: जैसे
0: बिल्कुल
1: भैया डिप्थीरिया है, टिटनेस है, काली खांसी, पोलियो, खसरा,
0: बिल्कुल
1: हेपेटाइटिस बी, निमोनिया जैसे खतरनाक
0: बिल्कुल
1: रोगों से टीकाकरण बहुत सुरक्षा करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: रघु भैया। और देखो जब सरकार ने अपन के लाने बचाव के लाने व्यवस्था करी है तो अपन टेम टाम से टीकाकरण जरूर करवाएं।
1: बिल्कुल
0: अब
1: भैया,
0: इसे देखो भैया रघु भैया, कैंसर की रोकथाम हो कछु आधुनिक टीका हैं जैसे HBV,
1: हेपेटाइटिस बी,
0: हेपेटाइटिस और कैंसर के खतरा को जौन है उसे रोक हो जाती है नहीं।
1: बिल्कुल भैया। और अगर पंच भैया बच्चन को समय से टीकाकरण कराना है तो निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे भैया, और
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ देखो भैया आज स्वस्थ बालक ही देश की
0: शान
1: भविष्य
0: है,
1: है।
0: भविष्य है बिल्कुल। और देखो हर व्यक्ति चाहत के हमारे बाल गोपाल जौन है वो स्वस्थ हो गए और कितना तो प्रयास करत है
1: और
0: कि नहीं।
1: टीकाकरण से भैया कोनो नुकसान नहीं है,
0: बिल्कुल
1: टीकाकरण
0: कौन
1: से काहू एंटीबॉडी बना जिससे भैया पंच भैया इनको इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत हो।
0: बिल्कुल। और देखो बाल गोपालन खा तो लगता ही है और संगे संगे गर्भवती महिलाएं जो है उन्हें सो ध्यान देने
1: बिल्कुल
0: कैसे।
1: भैया।
0: देखो अगर बेटीकाकरण नहीं करवाती तो आगे भविष्य में खतरा पैदा हो सकत के नहीं।
1: और भैया देखो जब अपन ने चर्चा करी गर्भवती महिलाओं की, तो अपनी जब घरेलू महिलाएं हैं वे का है अपने पौष्टिक आहार पर ध्यान नहीं देती हैं, वो घर में
0: बिल्कुल
1: जो कछु बचो बोले हम खा ले हैं, तो ऐसा नहीं है
0: ऐसा
1: भैया।
0: नहीं बिल्कुल
1: और हरी सब्जियां, अच्छे फल खाएं और जो
0: बिल्कुल
1: विटामिन वाली चीजें हैं उनको भी उपयोग करें।
0: बिल्कुल। और टेम टेम से खाना खाएं। क्यों महिलाएं क्या करती हैं भैया रघु भैया के काम में जुट जुट जाती और भी जुटी रहती 12-1 बजे रो उन्हें खावे पीवे को ध्यान नहीं रहा। तो हमारे पंचन से कहू है कि भैया भी अपनी खावे पीवे को ध्यान जरूर रखें।
1: बिल्कुल भैया। और किशु भैया अब देखो आज है रविवार
0: बिल्कुल
1: और पंचे है इंतजार कर रही है धारावाहिक चिट्ठिया देवर भौजाई की, तो पंचन का सुनवा रहे हैं धारावाहिक चिट्ठिया देवर भौजाई की भाग 3,
0: बिल्कुल। और वाचन है प्रीति पित्रेजू को
1: और प्रस्तुति है समुदयाल अहरवार जी की, तो
0: तो
1: पंच सुने
0: अपन सुने
1: अपन
0: और
1: सुने।
0: पंच सुने।

राम राम। इतने सब अच्छी तरह से हैं और आशा करत हैं तुम भी मजे में हुई हो। तुम्हारी चिट्ठिया पढ़ी, बहुत ही नोनी लगी। अरे मजे में तो आदमी रह ही जब अपनी जिम्मेदारी सही तरीका से निभा है। आदमी का हमें भगवान ने बनाओ, जब भगवान ने बनाओ तो सही चलो भी। असल में का है लाला, उपदेश देवो तो सरल है, अकेले उन पे चलबो भी जरूरी है। बातन के गोलगप्पा तो सबको खा ले, लेकिन चलत अपने मन की है। इंसान के चाल चलन पे जो दुनिया टिकी है, कई जने मौके तो इतने मीठे हो कि कछु न कहो। बोलत मैं तो उनके मलाई सी टपकत, कहूं उनके जीवन चरित्र की किताब को पन्ना खोलो जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। स्वार्थ तो उनकी जहन में है, दूसरे की बुराई करबो तो सरल है, अकेले अपने भीतर की बुराई देखबो बड़ो कठिन है। भाई कहावत नहीं है, चिकनी चुपरी बातन में कितो मजा।

राउत और कऊ को तुमसे काय उल्टी सीधी, तो देखो बेला से दलकात पहाड़ धरन लगत मूड़ पे। अरे भगवान ने ऊपर से भेजो सो अच्छे कर्म करो, अकेले धरती पे आके काय बिडारे पारन लगत। अरे भैया जात पात ऊंच नीच भेदभाव सब इतई बनत जे। लाला जाना कहियो कि भौजे काय बेदक गई, प्रवचन देन लगी का? सुन नहीं लाला, सबके दुख सुख में साथ दे वो भी जरूरी है। अब छुआ छूत खाई ले लो बेनैया अपने ते के सरजू माते, बातें तो इतनी लंबी चौरी कि गठरिया बन जाए बातन की। अकेले कर्म देखो सो भगवान ही मालिक है, लगत कि जा छुआ छूत इनके घर से बनी हुए, उनके दोरे के चौतरा पे बस उनके मन के आदमी बैठ सकत। कहूं छोटो हल्को पत्रो आदमी बैठ गओ फिर देखो बुरे चिल्ल्यात। असल में का है बेकरत साहूकारी, सो सबई को काम परत उनसे, सबई खा उनकी सुनने रात। एक दिना काब हो अपने ते को बनी या मगना, बेचारो अपने घर के दरवाजे लो बैठो राय सुसरियानो सो ओई बखत हम उते से कड़े। सो हमने देखो कि वो ऐसो बेचारो बैठो है जैसे चार दिना से उखर रोटी खाबे ना मिली हुए। अब का करे बेचारो गरीब आदमी, हमने उसे पूछी काय मगना कक्का, काया बैठे आज मन मारे। सो एक बेरा तो वे कछु नहीं बोले, फिर हमने दुसरियाओ फिर से ठाड़े होके पूछी, सो उनकी आंखन में तलैया सी भरी आई, फुस फुस करके रोन लगो। मैंने कही काय कक्का आखिर बात तो बताओ, ऐसे काय बैठे? सो कन लगे का बताएं बसंती बहू, ना पूछो तो ठीक है। हमने कही का होगा ऐसो जोन बतावे में तुम हिचक रहे? अरे साफ साफ बोलो बात को, गुड़ियाओ ना मुइया ना उमेठो, बिल्कुल बेहिचक होके बतियाओ। पहला जे असुआ पोछो और ज्यादा होए सो मौत हो लो, हम जे बैठे लो तुम्हारे चौतरा पे। तो बोलो आ हाँ बसंती बहू रुको, ऐसे निरखरारे चौतरा पे ना बैठो, हम चटाई उठा लियाओ सो आराम से बैठ जाइयो, फिर हम अपनी आप बीती बताएं। हमने कही हाउ ठीक है जी, में तुम्हें संतोष मिले हम तो वो ही काम कर हैं। लियो जे बैठ गए चटाई पे, मनसा पूरी हो गई तुम्हारी? अच्छा लियो अब बताओ का बात है? सो कान लगो बसंती बहू, ना पूछो तो अच्छो रहे है। हमने कही आ हाँ हिचको ना, सब देखी जे है, का बात है जा बताओ पहला। सो बोलो कि अपने ते के जोन बेनिया सरजू माते जिनको चौंगना में घर है, का भाव हमें चाहने थे बिटिया के ब्याह के लाने पैसा। हमने कही हाँ हाँ पैसा चाहने तो इमें का हो गई, सबको जरूरत पड़त पैसा की, कबों कबों मौका पर जात, घर में पैसा ढीला नहीं हुए तो कैसे काम चले। सो उधार लेने आउत, और जब उधार लेने तो फिर तो उन लोग जाने ही आउत, आज नहीं तो कल तो देने पड़ता ही है उधार, इमें गुड़ियाबे की का बात है? अरे हाँ हाँ का भाव कि मैं उनके चौतरा पे बैठ गऊ। फिर का माते जू ऐसे उखड़े जैसे पेड़ नहीं उखड़ जा कोनो कोनो, पहला तो भी मुझे गरियान लगे फिर मार भी खंदोरे। हमने मगन कक्का से कही काय चौतरा पे बैठ जावे से का होत, कौन उनको चौतरा अशुद्ध होगा, बड़े आए निपोची गाँव के, बड़े आदमी हुई है सो अपने लाने अपने घर में, इमें का है? छोटो न हुई है तो बड़े को का मोल, और बड़ो न हुई है तो छोटे की का कीमत, दो ही एक सिक्का के पहलू हैं। हाँ हमने लाला मगन कक्का से कही आगे बताओ, जा तो भाई बड़े हल्के की बात। फिर फुस फुस के रोन लगे मगन कक्का। मैंने उन्हें पुचकारो कि खुल के बताओ, रोए डीपे से कछु नहीं हूं, जब लो बात को उत्तर न मिल है तो हम का कर सकत। सुबे बोले कि बसंती बहू जैसे ही हम उनके चौतरा पे बैठे सो उनने लाख सुनाई।

चरबदियाव करू। बे तो बे उनके घर से मातैन ने करी आई, सो चखलियाव सुन के सो बतबड़ियाव करन लगी। कहन लगी, कायरे मगन, तोरी हिम्मत कैसे परी चोतरा पे बैठ बेगी। अरे अपनी औकात से राव, मूड पे ना बैठो, जैसे जमाने से चले आए उसे ही रहो। जाने काका कही उनने, ए राम, वो बताऊं लगो कि माते तो माते बे दो ही आदमी बेला जैसे बमकन लगे। बे माते तो मार ही देते अगर कहूं टेम पे नथु नन्ना ना आ गए होते। नथु नन्ना ने उन्हें समझाई कि तनक सी बात को इत्तो तूल ना दे। अरे मगन भैया, तन्नक देर खा चौतरा पे बैठ गए तो चौतरा कौन अपवित्र होगा। अरे आहा लाला, हमने ये अन्याय पे इते कही कि मगन कक्का, तुम्हारी जगह को हम होते तो हम तो उखड़ पाते। हमने कही, फिर भी हमने कही कि चलो हमारे संग थान, जो हम उनको भूत ना उतार देवे छुआछूत को सरजू माते को तो नाव नहीं हमा। बेचारो गरीब आदमी मगन कक्का, हमने उन्हें हिम्मत दिवाई कि हम तो हैं, जो हमारी नेतागिरी कबे काम आ है, जो हमने इत्तो काय खा पढ़ो लिखो काऊ के काम नहीं आए तो का। लाला तुम तो मानो झूठी, हमें चढ़े आई सो चढ़े आई। हमने तो निछोर होके कही मगन कक्का से कि चलो चलो हमारे संगे थाने, हम देखें सरजू माथे खा, उनकी पूरी घर में आई ना उतारी तो हम बसंती भौजी गाय के। अब जा हैरानी मगन कक्का तो डरावे, घर को घुसे जावे उल्टी। हमने तनक गरम होके कही, कक्का डराओ ना, हम तो हैं तुम्हारे संगे, चलो हमारे संगे। बड़ी मुश्किल में हमारे संगे भी चल भी खा तैयार भय। हम आगे आगे बे पाछे पाछे चलत आखिर पहुंच गए थाने। दरोगा जी से हमने बात करी सो पहला तो वे बोले कि गांव के चार आदमी जोड़ लो, गांवई की लड़ाई है, गांवई में शांत हो जावे तो ज्यादा ठीक है, और नहीं अगर हमने छुआछूत की कार्रवाई कर दई तो देखो लेबे के देबे पर जे हैं, फिर तुम जानियो गांव की दुश्मनी होत खराब, जाने कबे मौका पर जावे। हमने कही कि अन्याय तो सहन कर, वो भी अपराध की श्रेणी में आउत। अरे डराओ ना, हम तो हैं सरजू माते की नाक नेची, हमने ना करवाई तो हम ही काए के। अरे छुआछूत एक कुरीति है, एक बुराई है समाज में, ना को छोटो है ना को बड़ो, सब बराबर है। आजकल के जमाने में मानव मानव बराबर है। जब भगवान राम ने निषाद खां अपनी छाती से लगाओ, उनने तो छुआछूत नहीं करी, फिर जो मानुष का अभिशाप खां बढ़ावा दे रो। लाला तुम कहो कि भौजी का करन लगे, जा रही थी कऊ कहां पहुंच गई। तुम कहो कि फिर का भाव, अरे भाव का हमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। फिर का दरोगा जी ने एक सिपाही पहुंचा गए, सरजू माते का बुला लाओ। राम थई जब सरजू माते आए थाने तो उनको मुंह देख भी लाया खतो। बे तो हमारे ताई ऐसे ही खुरिया के हेरे और गुस्सा के बोले, का हाल है बसंती बहू, बड़ी नेतागिरी करन लगे, बड़े बूढ़न को नेचे दिखाऊन लगे। हमने कही, माते जू हमारे हालचाल तो ठीक है, पे बिचारे मगन कक्का पे गाच परी है। काकई काकई उसे ही तिल मिला से गए माते, आंखें तरेर के बोले, बसंती बहू गांव में रहन दे के नहीं। सो हमने कही कि हमने ऐसो का कर दो। सो बोले, आजकल की औलाद ने मर्यादा तो कोने में धर दई, इज्जत तो बात बहुत दूर की बात है, थाने को मुंह दिखा दो। हमने कही, आहा बिल्कुल गलत, आओ मगन कक्का जा डरी कुर्सी ई पे बैठो इज्जत से। सो मगन कक्का ठहरे पुराने जमाने के, कान लगे, रान दो बहू रान दो, हम ऐसे ही ठाड़े ठीक है। सो हमने तो कह दई कि तुम ना बैठो कुर्सी पे तो हम भी ठाड़े रहे। सो मातेजू बोले, बसंती बहू आड़ मर्यादा बिल्कुल ताक पे धर दई का। हमने कही, मातेजू मर्यादा की भी एक हद हो, एक सीमा हो, जमानो अब बदल रहो, आजकल सब बराबर है, ना को छोटो ना को बड़ो।

छुआ छूत अब गई, इज्जत दे हो तो इज्जत पाहो। हे राम, माते जू तो कुड़क परे। बोले दरोगा जी, ईके लाने बुलाओ तो हमें, हमारी इज्जत माटी में बिलावे के लाने। सो लाला, दरोगा जी तो कछु तो सक पकाने, पे हम काय खा, हमने लठिया सी टोरी। हमने कही आज फैसला हो ही जाए, पुराने जमाने की रूढ़ियां अच्छी हती कि आजकल की शिक्षा, समानता के अधिकार। मातेजू तुमने केबेर कोशिश करी गांव के सरपंच बनने की, काय सफल नहीं भय, अरे बन के दिखाओते। देखत देखत बुढ़ापे लो आ गए। मातेजू बोले, बसंती बहू ओने पोने न बोलो, अरे धनवारे हुई हैं तो अपने लाने। हम भी यही गांव में रात, हमें सब पतो, सबकी तरी हम जानत, पढ़बो लिखबो अपनी जगह पे, मर्यादा भी अपनी जगह पे को की बेइज्जती करबो ठीक नहीं है। तुम्हें पतो है तुमने एक नागरिक की बेइज्जती करी है। मगन कक्का हल्के आदमी हैं तो का भाई, आखिर है तो नागरिक, और हर नागरिक हर महिला को बराबर को अधिकार है समाज में। सो कुड़ियान लगे, कन लगे, बसंती बहू कान खोल के सुन लो, हमारी बहुत ऊंची पहुंच है, हमाओ को कछु नहीं बिगाड़ सकत। अरे हमारी बेइज्जती भाई तो हम भी न छोड़ है, एक और एक 11, तुम्हें करके नहीं जानती, काल के पैदा भय जे मोड़ा मोड़ी का सोचन लगे। आड़ मर्यादा तो कोने में धर दई, नेतागिरी होन लगी। हम तो नहीं बन पाए सरपंच, तुम बन जाओ, अपने घर में बिठा ले अरे खेरे नत्थु खेरे। अबे हरो हरो लग रहो, जब मूड पे बीते जब समझ में आ है, ठीक कही नहीं हमने लाला, सरफून की गांठ खोलबो को नहीं जानत। दरोगा जी से हमने कही कि एक रिपोर्ट लिखो, FIR दर्ज करो कि माते जू ने मगन कक्का से जाति सूचक शब्द बोले, गारी दई, फिर देखो लाला बनना गए माते। चेहरा पे हम काजा की 12 भजन लगी। बोले एक बेर फिर सोच लो, समझ लो बसंती बहू, कहू तुमने FIR दर्ज कराई तो ठीक ना हुई है, जौन की तोन होके रह है। कायरे मगन, तोए करवाने रिपोर्ट दर्ज, बता। सुमगन कक्का बोले, जैसी बसंती बहू काय। हमने मन में सोची ठीक रहे, अब हम बखिया उदेर लेत। सो हमने एक और तुरप चाल खेली, हमने कही मगन कक्का डराबे की बात नहीं है, हम तो हैं। इतने में मातेजू की मातोन आ गई, आके बोली, काय बसंती बहू, हमाई मिले तुम्हें नेतागिरी दिखावे, हमाई मूड पे मिलो होरा भूंजबे। अरे इज्जतदार आदमियन की तनक मनक तो राखो, हम कह दे दो टू कि अगर को ऊंच नीच भई माते की तो जो न जानियो कि लेबे के देवे परजे हैं। हमारे दामाद सोई पुलिस में है, जाने कहां कहां से फोन पटकवा दे हैं दरोगा जी को। उड़ा देखे बसंती बहू तुम्हारी चुनरिया, नेतागिरी कर वो भूल जे है, कोपरा में उचाटे न लगाओ। हमारी समझ से गांव की बात गांव ही में राय तो अच्छो है। अब दरोगा जी टकटकी लगाए हमारे मोतरे हेरे। हमने कही तो देखो अब निपटक पंचायत, आज से मातेजू अपनी चुटैया में गांठ लगा लो कि हम ऊंच नीच को व्यवहार गांव में काऊ से न कर है, छोटे बड़े को भेद न बना है, हम सबको राने ही गांव में, सो लड़ाई भिड़ाई अच्छी नहीं होती। चलो ठीक है मातेजू, आप अपने घरे जाओ और हम और मगन कक्का अपने घरे जा रहे हैं। हम हमेशा हल्के के संगे हैं, अन्याय ना हम कर हैं और ना हम देख सकत, सबकी इज्जत है। चिट्ठिया लिखबो अब हम बंद कर रहे लाला, अकेले का है, फिर भी हमें जब छुआ छूत पे कविता याद आ रही, सो भाभी हमने सोची कि लाला खा लिख दई जाए। तो सुनो, मानव मानव एक है, नहीं डारने फूट, ना रह है जा एकता, तो जय है बा टूट, तो जय है बा टूट टूट के कैसे रहो, अपनी अपनी गैल अलग करके पछते हो। लाल सबई को खून है, देह सबई की एक, फिर काहे हम लगा रहे छुआ छूत की टेक। प्रजातंत्र में आज हम सब हैं एक समान, हर नागरिक स्वतंत्र है, सबका मिले सम्मान, सबका मिले सम्मान। हमें एक बात बताने, आजादी को झंडा मिलजुल के फहराने। तो लाला अब हमारी जो चिट्ठिया आप उनका कैसी लगी सो जरूर बताइयो, बाकी सब ठीक है।

0: हाँ किशु भैया,
1: हाँ रघु भैया,
0: अब अपन सुन रहे थे धारावाहिक चिट्ठिया देवर भौजाई की भाग तीन, प्रस्तुति
1: बिल्कुल
0: है थी समुदाय अहरवाजू की।
1: बिल्कुल। और अब लेके चला था पंचन भेंट वार्ता को, सुनवाऊ थे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बांस मिशन की खेती अनुदान एवं विपणन की जानकारी। वार्ताकार हैं हर्ष गुप्ता जी। तो अपन
0: अपन सुन
1: सुनत हैं और पंच सुनत हैं।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: राम राम किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पेड़ के बारे में जो कम पानी में भी पल जात है और सालन तक अपन का आमदनी देते हैं, और सरकार खेती के लाने बढ़ावा भी दे रही है और अनुदान भी देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। तो भारत सरकार ने किसानन की आय के बढ़ावे के लाने, बांस की खेती और बांस आधारित उद्योगों का बढ़ावा देत के लाने राष्ट्रीय बांस मिशन चलाओ है। जय योजना अपन का 2006-07 में शुरू करी गई थी, ठीक है, पर बाद में इका मजबूत और बनाओ गो, और ई को मुख्य उद्देश्य जो है कि बांस उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से किसानन का जोड़ने हैं। तो बांस की खेती कौन से किसानन के लाने अपन का फायदेमंद है? तो सबसे पहले बांस एक ऐसा पेड़ है जो 30 से 40 साल तक उत्पादन दे सकत, और दूसरी फसलन के साथ में इको उपयोग भी करो जा सकत। तो अपन का बोनी को खर्चा भी हो जात है, और एक बार पेड़ लग जाए है तो उखा अपन 10 कन तक उगा सकत है। तो बांस तेजी से भी बढ़त पौधा है और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका देत है। तो अपन कौन कौन सी भूमि में बांस के पेड़ लगा सकत है? अब मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र के हिसाब से वर्षा ऋतु पर सीमित होते है, तो उस हिसाब से बांस अपन का बहुत अच्छी फसल है। जहाँ दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी, काली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, सब प्रकार की मिट्टी में हो सकत है, और बुंदेलखंड रीजन के हिसाब से कटंग बांस जो है अपने यहाँ पे विशेष रूप से सफल रहे। मध्य प्रदेश के लाने जो मुख्य रूप से प्रजातियां हैं उनमें कटंग बांस है, बंबूसा बालकुआ है, बंबूसा नोटांस है, 3-4 प्रकार की अपनी प्रजातियां हैं जो मध्य प्रदेश के लाने डेवलप करी गई हैं। अब बांस जनरली अपन का है बरसात के मौसम में रोपण करत हैं, और 60x60 सेंटीमीटर के गड्ढा खोद के 15 से 20 किलो तक उनमें खाद भरत हैं। उसके बाद 4-4 मीटर की दूरी में जनरली अपन लगा देते हैं। अब सरकार इनमें का है 50% की किसान का सहायता दे रही है सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में। तो उके लाने अपन किसान भाइयों का कछु जानकारी दे गु चाहते हैं। तो इमें सबसे पहले अपन जो अपने जिला उद्यान की विभाग है या कृषि विभाग है, ऐसी केंद्रन पे जाके अपन का पूरी योजना की जानकारी लेने, फिर अपन का कागज, जमीन के जो कागज है उकी तैयारी करने। तो उमें अपन जैसे खसरा होगा, आधार कार्ड होगा, बैंक खाता होगा, मोबाइल नंबर होगा, जो जानकारी अपन किसानन के बारे में दे सकते हैं उखा देने हैं। फिर अपन का जैसे नर्सरी से अपन का पौध के रोपण लेने, फिर परियोजना की उकी डीपीआर रिपोर्ट रहे थे, सो अपन का बावनवाने डीपीआर रिपोर्ट में कह रहे थे कि अपन को जितना खर्चा है बांस की खेती करे में, तो उकी जानकारी पहले से देने है कि हमारे लगभग इतनी जमीन में इतो बांस हम उगा सकते हैं, तब जाके अपन को बैंक से अपन का सब्सिडी या ऋण मिले है, ठीक है। इमें कहा है कि बांस की खेती में पहले 2 साल ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि इमें जैसे बांस को पेधा अपन ने लगाओ तो दो अच्छो पानी लगे उमें, ठीक है, निराई गुड़ाई हो अच्छे से, उखा पोषण मिले, तो 2 साल उके लाने बहुत महत्वपूर्ण रहे थे। और खेती जैसे अपन बांस की कर रहे, तो उ बीच में अपन उमें अतिरिक्त आमदनी के लाने अदरक हो गई, अश्वगंधा हो गयो, अरहर हो गई, इकी अपन इंटरक्रॉपिंग कर सकत है, ठीक है। अब बांस खा बेचवे के लाने बाजार की जानकारी अपन का पहले से रहो चाहिए, और अगर एक से ज्यादा किसान समूह में अगर काम करें तो इमें सबसे बढ़िया रहे थे। अब इमें अनुदान कैसे मिले अपन के किसान, तो उकिलाने का है कि सरकार ने क्रेडिट

बैंक एंड सब्सिडी की व्यवस्था करी है। अब सुनने में तो जो बहुत कठिन लगा था पर समझ में बहुत आसान है। अब जैसे मान लो अपन खेत में बांस की खेती चालू करवो चाह, तो इनमें बांस रोपण हो गओ, पौधा हो गओ, गड्ढा खुदाई हो गई, खाद सिंचाई हो गई, रख रखाव में लगभग कितो लागत आते, उनको एक अपन का अनुमान लगा लेने की लगभग 50,000 मान लो आ रहे अपन का। तो इनमें सबसे पहले अपन किसान जो है जिला उद्यानिकी विभाग में जाते है और राज्य बांस मिशन कार्यालय में आवेदन करते है। अब योजना अगर आपकी स्वीकृत हो जाती है तो उनमें 50,000 तक को आपका ऋण मिल है, जितनी आपकी अनुमान लागत है। तो किसानन का जा लागत डायरेक्ट किसानन का नहीं मिलत है, सरकार का करत है। इमें जो बैंक है संबंधित बैंक उनमें किसान के नाम के 50% अनुदान पहले जमा करत है और 50 दो साल के बाद में एक बार जब आपको परीक्षण हो जाए है कि खेती आपकी सफल हो रही कि नहीं हो रही, उसके बाद में वह 50% और देते है। तो यानी कि 50% सब्सिडी आपका गवर्नमेंट दे है और 50% आपका अपनी लागत लगाने पड़े। इस प्रकार से जा सब्सिडी में अनुदान काम करत है। अब मान लो अगर आपकी परियोजना असफल हो जाए, कई किसान का है कि भैया पहली बार बांस लगा रहे और मान लो खराब ही हो जाए बिल्कुल से, तो इमें का होता है कि बांस की खेती पूरी एकदम से तो पूरी खराब नहीं होती है कि बिल्कुल ही खराब हो जाए, कछु परसेंट खराब होते, मान लो 20% है, 30% है, तो आधो अनुदान तो सरकार ने दे ही दो है 25%, 12,500 रुपया लगभग। अब 12,500 जो बाकी बकाया है तो उनमें अपन खा किसानन के बारे में देखा था कि कितने परसेंट खेती बची, मान लो 50% बची तो 6,500 और दे है सरकार, तो वो कितनी बची है उनके हिसाब से अनुदान बाकी बकाया वालों मिला। अब मध्य प्रदेश में कहाँ से अपन बांस की नर्सरी से अपन बांस के पौधरोपण खरीदें? तो अब जैसे अपने आसपास में बुंदेलखंड रीजन में होगा वो अपनों, जैसे टीकमगढ़ में है हाईटेक नर्सरी है तो उतर से ले सकत, सतना में होगा वो तो उतर से ले सकत, तो जी का है उचित दर पे मिल जाए। और अपन का पता है कि ई किस्म की अपन की बांस है और ई किस्म की हमारे आसपास में होत है और इंडस्ट्री वगैरह या बाजार में की प्रकार की बांस की मांग है, उस हिसाब से अपन लगा सकते हैं। अब जैसे किसानन के लाने मध्य प्रदेश में का सुविधाएं हैं विपणन के लाने या शोरूम के लाने, तो कहा है किसान के लाने सबसे बड़ा सवाल रहे थे कि उत्पादन तो कर ले भी पर बेच भी कहाँ हम इखा। तो इस समस्या के लाने राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बहुत सारे बांस के शोरूम स्थापित करे गए, जैसे बुंदेलखंड में अपनो होगा, सतना होगा, रीवा होगा, ठीक है, हरदा भी आते है, और इके अलावा भोपाल, इंदौर, बालाघाट, मुकुंदपुर, इमें कहा है बांस के शोरूम संचालित हैं जिनमें घरेलू उपयोग की वस्तुएं हो गई, फर्नीचर होगा, सजावटी सामान होगा, टोकरी होगा आदि हस्तशिल्प की उत्पाद की बिक्री होती है। तो इमें कहा है कि कुटीर उद्योग के माध्यम से बांस के आधारित जो जितने अपने सामान हैं वे किसान अपन बेच सकते हैं। अब इमें बांस की खेती में लगभग आय कितनी हो जात, किसानन को सवाल जो रहे थे, तो इमें बांस का है कि एक दीर्घकालीन निवेश है, पहले दो साल तो पौधा विकसित हुए फिर चौथे पांचवें साल से जाके कटाई शुरू हो, तो इमें का है अच्छी प्रबंधन की व्यवस्था करने पड़त और नियमित आय प्राप्त कर सके 4-5 साल बाद किसान, तो ई के लाने अपन व्यवस्था करते हैं कि 30-40 साल तक लगभग बांस की खेती हो, तो जो 3-4 साल के बीच में अपन का है कि इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से कहूं अरहर लगा लो, अदरक लगा लो, अश्वगंधा लगा लो, ताकि अपन का बीच बीच में आय मिलत रहे और अपनो गुजर बसर चलत रहे। अब का है भविष्य की पेंशन फसल के रूप में ऐसा अपन कहे थे कि बांस की खेती करो तो भविष्य के लाने अपन का सुरक्षित रहे, 30-40 साल तक लगभग चलने हैं का ऐसे की वह। अब इमें 4-5 बातें अपन का ध्यान रखने हैं कि पहली बात का है कि प्रमाणित नर्सरी से अपन पौध लें, जो नहीं कि इतने की बांस काट के लगा दे, उतने की काट के लगा दे। शुरुआती सालन में सिंचाई की व्यवस्था रखें। बांस की खेती में ध्यान रखे वाली क्या बातें हैं कि अपन सबसे पहले प्रमाणित नर्सरी से अपन पौध लेवे, दूसरी बात का है शुरुआती सालन में सिंचाई की व्यवस्था करें, तीसरी बात का रखना है कि पौधन का जानवरन से बचावे, चौथी जा कि बिना बाजार की जानकारी के बहुत बड़े क्षेत्र में अपन की रोपण ना करें, पता चलो अपने आसपास कोनो बाजार ही नहीं है और अपन लगाए हैं 10-15 एकड़ में, तो कहे लंबो नुकसान हो सकत किसानन का। पांचवी बात की जिला उद्यान की अधिकारी या कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेते रहे। अब जैसे हम आपका बताइए सफलता की कहानी 2-3 ठैया, तो जैसे बेहर बालाघाट में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से किसानन ने खूब पैसा कमाई,
तो जैसे बालाघाट के जिला में बेहर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर रहो तो उमे पूरे प्रदेश में का है सफलता के उदाहरण बन गए है। बांस की कारीगर का है इमे आधुनिक मशीनन के माध्यम से प्रशिक्षण लेते रहे और पहले कच्चे बांस बेचत रहे, फिर उसके बाद फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर हो गयो, सजावटी सामान हो गयो, घरेलू उत्पाद की वस्तुएं हो गई।

0: ई माध्यम से बेचने लगे। अब जो श्री राजू बंजारा जैसे कारीगरन ने प्रशिक्षण लेके स्वयं सहायता समूह बना ले, ऐसे में समूहन के माध्यम से लगभग भी 100 परिवार तक खरोजगार दे रहे। ऐसे ही सुंदरेल खरगोन की बंजर पहाड़ियन में हरियाली की कहानी है जा। तो खरगोन जिला में सुंदरेल गांव में जिस दीपक गोयल जी रहे, तो उनने अपनी मेहनत से साबित कर दो कि यह योजना बंजर जमीन तक में सोना उगल सकत। तो उन्होंने कहा करो कि राज्य बांस मिशन की सहायता से लगभग 150 एकड़ पथरीली भूमि में वृक्षारोपण करो बांस को। अब उ भूमि पे बांस की पौधे लहरा आ रही। उन्होंने कहा करो कि अगरबत्ती निर्माण इकाई भी स्थापित करी जिसे गांव की महिलाएं हो गई तो उन्हें रोजगार मिल रहो। ऐसे में भी दर्जन परिवार का रोजगार दे रहे। अब इसे हमें का निष्कर्ष मिला था किसान भाई बहन का कि राष्ट्रीय बांस मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि किसानन की आय बढ़ावे के लाने और रोजगार पैदा करवे के लाने, पर्यावरण संरक्षण करे के लाने एक मजबूत माध्यम है। मध्य प्रदेश में जैसे हाईटेक नर्सरी हो गई, कॉमन फैसिलिटी सेंटर हो गए, बांस शोरूम हो गए, विपणन की सुविधाएं हो गई, किसान का उत्पादन से लेकर बिक्री तक के लाने पूरा सहयोग प्रदान कर रही। बांस एक ऐसी फसल है जो कम पानी में अच्छी तरह से बढ़ सकत है और कई दशक तक आय भी दे सकत। और अगर सही प्रजाति को चयन कर ले हमारे किसान तो गुणवत्ता पौध के लाने बहुत अच्छी आय दे सकत। हम अब यही आशा के संगे सभी किसान भाई बहनन से कहवो चाहत हैं कि बांस मिशन की जानकारी को लाभ उठावे और बांस की खेती कछु तो बढ़ाएं अपने मध्य प्रदेश में। अब चलो हम आपसे विदा लिए थे, धन्यवाद। जय किसान, जय मध्य प्रदेश।
1: देखो कुशु भैया,
2: हाँ रघु भैया,
1: पंचो ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बांस मिशन की खेती अनुदान एवं विपणन की जानकारी बात कर दी हर्ष गुप्ता।
2: बिल्कुल, और देखो अब चलते हैं अपन आज की सीख कूद। आज को विषय है जे ही आंगन नदिया बहे सो कैसे मिटे प्यास। इको अर्थ है कि जैसे आंगन से अगर नदिया बहा रही और अगर वो अपनी प्यास नहीं मिटा पा रहा तो केवी को मतलब है कि उनकी कमजोरी मानी जा सकत। तो अपन ध्यान रखने के हमारे पंचन अपनी भुजाओं पे
1: अपने सामर्थ्य पे विश्वास रखने,
2: अपने सामर्थ्य पे विश्वास रखने, अपनी मेहनत पे भरोसा करने और आगे लेने, दूसरे की मदद या सहारे पे नहीं चलने के भैया को मदद करे तभी हम आगे बढ़े।
1: भैया तो जाती आज की सीख अब बता जाए कल के कार्यक्रम।
2: बिल्कुल रघु भैया,
1: कल पंचों ने रमतुला कार्यक्रम प्रस्तुति हुई है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की,
2: और संगे आज की सीख को विषय हुए कि जस खरस चंदन लादे मरा परिमल बांस न जान गमारा। और अपनो तपनो बतका हुए, तब तक किलाने लेते हैं पंचन से अनुमति। पंचो राम राम, राम।

ग्रामीण भाइयों के लिए भी ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म शहीद में सुरेंद्र कौर को। गीत लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत था गुलाम हैदर का। आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म अनारकली से। आवाज लता मंगेशकर की है, राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना को संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने।

आप सुनेंगे फिल्म भाई भाई का गीत। आवाज गीता राय की है, संगीत मदन मोहन का और गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

अभी आप सुन रहे थे गीता रॉय की आवाज में फिल्म भाई भाई का ये गीत। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत था मदन मोहन का। आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म नया दौर से। आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। साहिर की शब्द रचना को संगीत से संवारा है ओपी नैयर ने।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में नया दौर फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था साहिल ने, संगीत था ओपी नैयर का। आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अनारी से। आवाज है लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी के गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ है, गीत लिखा है राजा मेहदी अली हसन अली खान ने और संगीत है ओपी नैयर का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत था ओपी नैयर का। आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म गाइड से। आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। शैलेंद्र की शब्द रचना को संगीत से संवारा है एच डी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। शैलेंद्र का गीत था, संगीत था एस टी बर्मन का। आइए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं फिल्म हमराज से। आवाज है महेंद्र कपूर की, साहिल लुधियानवी की शब्द रचना को संगीत से संवारा है रवि ने।

आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कटी पतंग से। आवाज है किशोर कुमार की, गीत लिखा है अनिल बख्शी ने, संगीत

किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था आरडी बर्मन का। आइए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, फिल्म है आपकी कसम, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के गीत की धुन बनाई है एक बार फिर आरडी बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म हम किसी से कम नहीं। आवाज है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की। गीत लिखा है मजरूर ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी।
2: साथ में सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
3: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी

0: साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
0: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
0: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
1: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब

0: उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इलेडी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है।

0: है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honoured with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
4: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो।

0: करती है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। पंडित सुधीर पांडे इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट तबला वर्चुसो। ही रिसीव्ड हिज रिगरस ट्रेनिंग फ्रॉम हिज रेवर्ड फादर एंड गुरु लेट पंडित अर्जुन पांडे एंड हिज दादा गुरु पंडित भागवत सिंह। इनहेरिटिंग द रिच ट्रेडिशंस ऑफ द बनारस डेली एंड अर्जाडा घरानास। Drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as Ladant Ka Baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs, and music lovers alike.
0: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया, पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं।
1: In tonight's program, he is accompanied on Sarangi by Ghanshyam.

Takada,

Kanda,

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard ताल तीन ताल played on tabla by Sudhir Pandey. He was accompanied on sarangi by Ghanshyam Sisodia. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: यह आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी प्रेजेंट लय विन्यासम ऑन मृदंगम बाय श्री एनएस कल्याण रामन।
2: पारंपरिक संगीत परिवार में जन्मे श्री एनएस कल्याण रामन आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध मृदंग वादक है। उन्होंने बाल्यावस्था से ही मृदंग वादन पर गहरी रुचि दिखाई और अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री M.K.R. प्रसाद से प्राप्त किया। बाद में उन्होंने विख्यात मृदंग विद्वान श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एनएस कल्याण रामन इज अ रिनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। He showed keen interest in mridangam from a very young age and received his initial training under Sri M.K.R. Prasad. He later underwent advanced training under the renowned gurus Sri Dandamodi Ramohan Rao and Sri K. Veerabhadra Rao.
2: Sri N.S. Kalyana Raman ne Dr. M. Balamurali Krishna, Sri T.V. Sankar Narayan, Sri T.N. Seshagopalan, Hyderabad Brothers aur Hyderabad Sisters jaise anek prakhyat sangeetajnyon ke saath sangat kiya. उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक अकादमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकंपनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्णा, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद सिस्टर्स एंड हैदराबाद ब्रदर्स। ही हैज परफॉर्म्ड इन प्रेस्टिजियस सभास अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग मद्रास म्यूजिक अकादमी।
2: श्री एन एस कल्याण रमन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार रहा। आपने चेन्नई और विजयवाड़ा आकाशवाणी केंद्र में 36 वर्ष की विशिष्ट सेवा प्रदान किया। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। आप कंची कामकोटि पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: He is a top-grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
4: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याण रामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
3: टुनाइट श्री एन एस कल्याण रामन बिगिन्स हिज लय विन्यासम ऑन मृदंगम विद मिश्र जाति झंपे तालम।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम

0: प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognises that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or Aabha ID.